नमस्कार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज। आज शुक्रवार है, शक संबत 1948, आषाढ़ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 जुलाई सन 2026। आज के प्रसारण में आपका स्वागत है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न

0: मीट मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 पर प्रस्तुत है खेती किसानी। आज का विषय है समेकित कीट प्रबंधन। वाचन अनीता तिर्की का।
2: समेकित कीट प्रबंधन व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास के सभी मिले जुले उपाय जिससे हानिकारक कीड़ों की संख्या आर्थिक नुकसान के स्तर से नीचे बनाए रखने के लिए एक व्यापक परिस्थिति विज्ञान से जुड़ी प्रणाली है। यह कम खर्च वाली आर्थिक रूप से युक्तिसंगत ढंग से फसल की रक्षा के लिए कायम की गई एक ऐसी प्रणाली है जो पूरे पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव डालती है और उपज बढ़ाने में मदद करती है। समेकित कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कीड़ों को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखना है। इस प्रणाली के हिस्सों में हानिकारक कीड़े, बीमारियों और खरपतवारों की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जैसे व्यवहारिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, वंशानुगत नियंत्रण, कानून के द्वारा और रासायनिक नियंत्रण। व्यवहारिक नियंत्रण का मतलब है ऐसे नियंत्रण से जिसमें परंपरागत अपनाई जाने वाली

0: कृषि प्रणालियों को थोड़ा सा परिवर्तन करके कीटों और रोगों के आक्रमण को कम किया जाए। इस नियंत्रण के अंतर्गत खेतों की गहरी जुताई गर्मी में करनी है, हरी खाद के लिए सनई, ढैंचा, मूंग आदि फसल लेना, कीट एवं रोग प्रतिरोधी जो प्रजातियां हैं उसका प्रयोग करना, फसल चक्र अपनाना, बीजों को उपचारित करना, भूमि परीक्षण एवं संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना, खेत को खरपतवार से मुक्त रखना, पौधों की रुपाई निश्चित दूरी पर करना इत्यादि शामिल हैं। यांत्रिक नियंत्रण में हम कीड़ों और उनके अंडे को एकत्रित करते हैं, जैसे कि हेलोथिस और स्टेप्टोरा, इसकी विकसित सुंडी को एकत्रित करके नष्ट किया जाता है। उसी तरह भुआ पिल्ली के अंडे जो हैं उसको भी एक जगह में एकत्रित करके नष्ट करना इस क्रिया में आता है। जैविक नियंत्रण यह नाशीजीव को नियंत्रित करने वाली विधि है, जिसमें कीटों, फफूंदों और खरपतवार इत्यादि को प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग किया जाता है। पहले प्राकृतिक शत्रु को पहचान कर उसे पालकर बढ़ाया जाता है, उसके बाद उचित रूप और माध्यम की सहायता से फसलों पर तब छोड़ा जाता है जब नाशीजीव आर्थिक क्षति स्तर से अधिक आबादी में फसलों पर लगे हों। या हम यूं कह सकते हैं कि इस विधि में कीड़ों को कीड़े के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। जैविक नियंत्रण में इसके अलावा बायोजन के अलावा जीवधारियां और पौधों से निर्मित बायो पेस्टिसाइड भी आता है। बायो एजेंट जीवित प्राकृतिक शत्रु और बैक्टीरिया, फफूंद, विषाणु ये सभी इसमें आते हैं। फफूंद कीट रोगाणु में मेटेराइजियम, बैक्टीरिया में वेसिलस, विषाणु में ग्रेनोलाइवरा, न्यूक्लियर पोलीहाइड्रेटिस वायरस इत्यादि आते हैं। वंशागुणत जो नियंत्रण है इसमें हम वैसे बीज तैयार करते हैं जिसमें कीड़ों और रोग के आक्रमण ना हो, जैसे कपास में सुंडी के नियंत्रण के लिए बीटी कपास। रासायनिक नियंत्रण में हम सभी रसायन के द्वारा रोग और कीटों का नियंत्रण करते हैं। समेकित कीट प्रबंधन जो है इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इससे पर्यावरण अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, यह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है।
1: समेकित कीट प्रबंधन आज ये विषय था खेती किसानी का, वाचन अनीता तिर्के का। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का।

इंसान की मौलिक इच्छाओं से पहली इच्छा भोजन की होती है। भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे एक ऐसा रसायन बनता है जो प्राण ऊर्जा बनकर संपूर्ण शरीर तंत्र का संचालन करता है। हमारे भोजन से ही प्राण शक्ति पैदा होती है जो शक्ति केंद्र को संचालित करती है। इसलिए भोजन का महत्व है और हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो सात्विक हो, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हो। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भोजन तीन प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक भोजन जहां मन को शुद्ध करता है, वहीं तामसिक और राजसिक भोजन मन में एक प्रकार की उत्तेजना पैदा करते हैं जिससे शरीर की ऊर्जा का अपव्यय होता है। इसलिए आहार शास्त्र में सात्विक भोजन की सिफारिश की गई है और तामसिक तथा राजसिक भोजन से बचने का आग्रह किया गया है। एक दिन पवनार आश्रम में विनोबा भावे ने उपवास की उपयोगिता पर कहा कि भगवान महावीर ने जितने दिन खाया उससे अधिक दिन नहीं खाया, तभी वे अपनी साधना में सफल हो सके। भगवान महावीर ने कहा है कि आत्मनियंत्रण में सबसे बड़ी बाधा है भोजन। भोजन सुस्ती लाता है। टॉल्स्टॉय ने कहा है कि जो भोजन का संयम नहीं करता

0: वो सुस्ती को कैसे मिटा सकेगा। जो आलस्य सुस्ती अप्रमाद को नहीं मिटा पाता वो आत्मनियंत्रण कैसे कर पाएगा। उन्होंने आगे कहा, हमारी कुछ मौलिक इच्छाएं होती हैं। यदि हम उन इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते तो इन इच्छाओं के आधार पर चलने वाली दूसरी जटिल इच्छाओं को भी कभी समाप्त नहीं कर सकते। जीने की कामना, भोजन की कामना, ये मौलिक इच्छाएं हैं। यदि उन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता तो इनके आधार पर चलने वाली अन्य जटिल इच्छाओं पर कभी नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि साधक सबसे पहले अपनी मौलिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे, उन पर नियंत्रण करे। भोजन का संयम ना हो तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। भोजन में कम खाने का महत्व है। कहा गया है कि जितने आदमी भूख से मरते हैं उससे अधिक ज्यादा खाने से मरते हैं। इसलिए संतुलन आवश्यक है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत करते हैं देशभक्ति गीत से। अनूप जलोटा की आवाज में सुनिए ये देशभक्ति गीत।

इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

वधु को अनेक प्रकार से वन संतान के आसन्न विरह में तड़पते सिर धुनते राजा दशरथ ने पुत्र वधु को अनेक प्रकार से वनगमन से विमुख करने की चेष्टा की। संकोचवश सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उनका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें पति को छोड़कर घर में रहना श्रेयस्कर नहीं लगा और न ही वनगमन भयावह लगा। कैकेयी ने तमककर मुनियों के वस्त्र माला मेखला आदि और कमंडलू राम के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम के वश में दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते। उनके पुण्य यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, वे तुम्हें वन जाने को भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की सीख श्री राम को भली लगी, किंतु राजा दशरथ को ये वचन वाण की भांति लगे और वो मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को सोच नहीं पड़ता कि वे क्या कहें। श्री राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता के सम्मुख शीश नवाकर चल पड़े। राजमहल से निकलकर वे कुलगुरु वशिष्ठ के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां ब्राह्मणों तथा याचकों की टोली को वर्षासन देकर उन्होंने दास दासियों को गुरु को सौंपा और हाथ जोड़कर

कुलगुरु से प्रार्थना की कि वे माता पिता और पालक की भांति उनकी देखरेख करें। अयोध्या वासियों से उनकी प्रार्थना थी कि वे माता पिता को किसी भांति का कष्ट न होने दें।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। एक नजर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए भेंट वार्ता, स्लिप डिस्क कारण और उपचार, भेंट वार्ताकार डॉक्टर नर्मदय, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरेली आप सुनेंगे 7:15 पर, 7:45 पर गांधी कथा संकलन गौरव शिखर राय की, प्रस्तुति गौरव कुमार की। 8 बजे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, प्रादेशिक समाचार 8:30 पर, 8:45 पर आप सुनेंगे बादल चंद्र मुर्मू और साथियों से संताली लोक गीत। रसरंजन कार्यक्रम होगा 9 बजे, शास्त्रीय संगीत 9:30 पर, कलाकार होंगे पंडित मनोज कुमार केडिया, इनसे आप सुनेंगे सरोद पर राग विलास खाने तोड़ी, आलाप और जोड़ के बाद दो गतें प्रस्तुत होंगी, मध्य लय गत छप ताल में और द्रुत लय गत तीन ताल में निबद्ध होंगे। संगत तबले पर संगत करेंगे सृजित चटर्जी। उर्दू कार्यक्रम 10 बजे, चर्चा सुनिए इसमें बढ़ती आबादी और मुस्तकबिल के चैलेंज, डिजिटल दौर में नए हुनर और नए मौके, उम्मीद जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत, अकलियतों के लिए सरकारी स्कीमें और मकाला सुनेंगे साइंस में खवातीन, इल्म सलाहियत और तरक्की की दास्तान, मकाला निगार होंगे काजमीन फातिमा, कंपियर राजदा हुसैन।

आशा गुप्ता वानो प्रस्तुति प्रभु शरण की। जोहार राजे कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद 11:30 पर। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम 12 बजे। चर्चा सुनिए, बागवानी अपनाए, तनाव दूर भगाए। भेंटवार्ता किचन गार्डन समय की मांग। जानकारी लेंगे किशोरी शक्ति योजना पर। सूत्रधार निधि वर्मा और राखी शर्मा। प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 12:30 पर। हिंदी में समाचार 1 बजे। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार 1:10 पर। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी 1:20 पर। कलाकार शिप्रा बोस, इनसे आप सुनेंगे ठुमरी और दादरा।

0: सुगम संगीत 1:45 पर कलाकार होंगे हरिहरन, इनसे आप सुनेंगे चंद गजलें। मिड डे न्यूज 2:00, 2:15 पर दोपहर समाचार और 2:30 पर आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। प्रादेशिक समाचार 2:55 पर 3:00 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेंगे। रांची मेलोडीज 3:30 पर शाम 4:00, 5:00 और 6:00 आप सुनते हैं मुख्य समाचार। उर्दू कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे 4:02 पर। युवाणी कार्यक्रम होगा 5:02 पर। चर्चा सुनिए, अनुभव का करें सम्मान और फिल्म संगीत का आनंद लेंगे। सूत्रधार होंगे स्नेहा और आद्या शक्ति, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोक कार्यक्रम होगा 5:30 पर, प्रस्तुति प्रभु शरण की। 6:02 पर खेतीबाड़ी कार्यक्रम होगा, इसमें चर्चा सुनेंगे मोटे अनाज की उपयोगिता, विशेषज्ञ होंगे डॉ सुधीर कुमार सिंह, प्रस्तुति प्रभु शरण की। प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यद् 21वीं शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत 12 वर्षेषु स्वस्य तृतीयं ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिम स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: वार्ताहरान संबोधयन प्रधानमंत्री न्यगादीत यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्याम परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जाग्रतः समाजः संभूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्र प्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 40% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्चस्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणां अथा युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासंगिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेना द्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्य चरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्य चक्रे प्रविष्टवत्। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने

0: के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अच्छी बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें सुनिए भेंट वार्ता, स्लिप डिस्क कारण और उपचार। भेंट वार्ताकार डॉक्टर नर्मदे, इनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
2: स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीमारियां अनेक तरह की हो रही हैं और सुगमतापूर्वक उसका इलाज भी किया जा रहा है। साधारणतः आजकल युवा साथी भी अनेक तरह की बीमारियों से ग्रसित होते दिखाई पड़ते हैं। ऐसी बीमारियां जो पहले बुजुर्गावस्था में होती थी, कमर में दर्द, पैरों में सुनापन, पैरों में झंझनाहट, इस तरह की बीमारियां आजकल आम हो चली हैं। ऐसे ही एक बीमारी है स्लिप डिस्क। ये रीढ़ की बीमारी है। क्यों हो जाता है, कारण क्या है और हम सावधानियां कैसे रखें कि इन बीमारियों से हम बच जाएं, और यदि स्लिप डिस्क हो जाता है तो इसका उपचार कैसे करें और कौन कौन सी बातों का हम ख्याल रखें, अपनी जीवन शैली को किस प्रकार व्यवस्थित करें कि हमें कम से कम दर्द हो और हम स्वस्थ रहें, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नर्मदे से। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर नर्मदे, आपका स्वागत है।
3: नमस्ते सर।
2: ये जो बीमारी है लो बैक पेन, बहुत कॉमन हो गया है, क्या कारण है इसका?
3: सर, अभी के समय में सबसे जो जरूरी है अपने लोगों का पोस्चर, शरीर का बनावट, दूसरा पोस्चर। सर, किसी भी काम को हम लोग अब सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्पाइन अपना लोगों का जो होता है वो बहुत सीधा होता है, उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ भी किए, भारी वजन कुछ उठा लिए, कॉमन सी बात है, हम लोग हर एक कोई करवट लेके नहीं उठते हैं, सोए डायरेक्ट सीधे उठ गए, जबकि ये तरीका नहीं हुआ अपना लोगों का। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग सोए हुए हैं तो किसी भी एक साइड, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, करवट लेके उठना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें। दूसरा हुआ भारी वजन उठाने से बचना। बहुत लोग कुछ भी किसी भी पोस्चर में हो अपना कुछ भी उठा लिए, तो उस चीज से हम लोगों को बचना चाहिए, आगे झुके कभी वजन नहीं उठाना चाहिए। यदि आपको वजन भी उठाना है तो प्रॉपर वे में थोड़ा पहले घुटने के ऊपर पहले बैठ गए हल्का सा, उसके बाद उठाए, तब वो जोर अपने स्पाइन पे ना आके और वो डायरेक्ट वो घुटने पे आ गया। तो सब इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया अपना लोगों का पोस्चर। पोस्चर सही ना रहने के कारण हम अपने लोगों को जो है मेन स्लिप डिस्क का जो प्रॉब्लम आता है वो उसके कारण से आता है।
2: एक कॉमन सा शब्द हो गया है स्लिप डिस्क, तो ये स्लिप डिस्क होता क्या है, किस तरीके से ये जो डिस्क है ये स्लिप कर जाता है, आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो?
3: अपने स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो होता है वो हल्का हल्का गैप होता है, वो पूरा एकदम सटा हुआ नहीं, कार्टिलेज भी उसमें होते हैं, फाइब्रस भी होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसमें गैप होता है। कोई भी चीज़ है तो वो अपने जगह तक जब तक है या जगह पे जब तक है तब तक कोई समस्या आपको नहीं होगी, लेकिन वो जब अपना जगह छोड़ता है तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ समस्या वो आपको उसमें आता ही है। तो स्लिप डिस्क का मेन रीज़न हुआ जो बैंडिंग होके काम किए या फिर वजन उठाए उसके कारण होता क्या है, या तो गैप स्पाइन का बढ़ गया या फिर कम हो गया। बढ़ गया फिर भी प्रॉब्लम है, घट गया फिर भी प्रॉब्लम है।
2: जो गैप है
3: हर एक गैप का अपना एक दूरी बना हुआ है, लेकिन अपना लोग के गलत तरीके के कारण या काम करने के कारण वो गैप जो है घट जाता है, और गैप घट के अपना स्पाइन जो होता है वो अपना जगह छोड़ देता है। नॉर्मली एक तरह से बोले हम लोग तो वो हो गया अपना लोग का स्लिप डिस्क, वो जो हुआ वो बीमारी हो गया। अब जो है उसमें पोजीशन चेंज हुआ, उसके पास से जो आपके नस पास किए तो कुछ नहीं तो उसको तो डैमेज करेगा ही करेगा। तो उस कंडीशन में जो अपना लोग का पैर में झिनझिनी हो गया या फिर कमर में झिनझिनी हो गया या फिर सूनापन हो गया या फिर पैर भारी लगना हो गया या फिर कभी कभार देखते हैं अपना लोग की कमर में हल्का स्वेलिंग, बहुत रियल केस में स्वेलिंग, लेकिन मेन झिनझिनी, पैर का फटना, बहुत ज़्यादा पेन होना, उसके बाद सुन हो जाना, सूनापन, मतलब उसमें यदि आप कुछ भी करते हैं तो वो आपको पता ही नहीं चलता कि मतलब ये हो क्या रहा है।
2: इससे जो व्यक्ति की दिनचर्या है, रोजमर्रा की दिनचर्या है, वो बहुत प्रभावित हो जाती है। चलना फिरना, घूमना फिरना और काम करना, ये बहुत प्रभावित कर देता है। व्यक्ति अपने आप को लाचार और असहाय महसूस करने लग जाता है। तो डॉक्टर साहब, इस तरह की स्लिप डिस्क हो गई हमारे गलत आदतों के कारण, गलत तरीके से उठने बैठने और वजन उठाने के कारण, यदि इस तरह की बीमारी हमें पता चल जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि आप स्लिप डिस्क की बीमारी से आप ग्रसित हो रहे हैं, तो क्या इलाज है डॉक्टर साहब, उपचार किस प्रकार करें?
3: सबसे पहले तो एक है कि आप डायरेक्ट फिजियो के पास जा सकते हैं, अपने नज़दीकी आसपास कहीं भी आपके अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो डायरेक्ट आप जा सकते हैं, या फिर न्यूरो और ऑर्थो, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो हुए या न्यूरो के अपने जो कोई भी डॉक्टर हैं आसपास में, तो उनसे भी सलाह लेके हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि उन लोग इस केस में फिजियो के पास रेफर करते ही करते हैं। मेन तो है इसका कि अपना पोस्चर को पहले मेंटेन करें, सबसे पहले हम लोग पोस्चर के बारे में इसके लिए बताते हैं। दूसरा हो गया एक्सरसाइज, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट इसमें IFT, SWD या फिर ट्रैक्शन का भी यूज करते हैं। ट्रैक्शन का यूज हम लोग थोड़ा कम ही करें, क्योंकि वो भी एक तरह से बोलें तो स्पाइन को बढ़ाता ही है, खींचता है और उसका भी गैप बढ़ाता है, तो ट्रैक्शन से हम लोग बचाते हैं। बैकअप पूरा एक्सरसाइज इसमें करवाते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हो गया कि हॉट वाटर बैग कंपलसरी, इसमें गर्म पानी डाल के हॉट वाटर बैग से कम सुबह में 15 मिनट और शाम में 15 मिनट पहले हम लोग सेंकें। तेल मालिश एकदम हम लोग मना करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हम लोगों को ये पता नहीं है कि हम लोग का कहाँ पे प्रॉब्लम है या कहाँ पे नस को वो दाब रहा है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसमें मसाज को बंद करवाते हैं। मसाज के जगह पे आप सेंक सकते हैं। उसके बाद हो गया बैक लोअर का जितना भी एक्सरसाइज है इसमें सारा हम लोग करवाते हैं, जैसे पैर उठाना, उसको हम लोग SLR भी बोलते हैं। उसके बाद पिलो प्रेस, एड़ी से दबाना और घुटना से दबाना, वो दोनों आ गया। उसके बाद कैट एंड कैमल पोस्चर जो बोलते हैं अपना लोग, मतलब चुकमुको, वो भी मना करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें हम लोग आगे बैंड होने के लिए हम लोग मना करते हैं,
2: मतलब झुक कर कोई भी काम नहीं
3: करें। नहीं, आगे झुक के कोई काम इसमें नहीं
2: जी,
3: और आगे झुक के वजन भी नहीं उठाना है इसमें
2: जी। डॉक्टर साहब, शुरुआती में जो चिकित्सक होते हैं वो दवाइयाँ गोलियाँ देते हैं, दर्द निवारक दवाइयों से हमें आराम महसूस हो जाता है, लेकिन ये जो दर्द की गोलियां हैं ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को कहीं ना कहीं परेशान जरूर करता है, कुछ ना कुछ प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर छोड़ जाता है। इस तरह की दवाइयों का हम सेवन ना करें, और जो बाज़ार में जैसा आपने बताया मालिश नहीं करें, तरह तरह की बाज़ार में मालिश की दवाइयाँ उपलब्ध है और लोग उसका सेवन करने लग जाते हैं, उस दवाइयों को लेकर उसको मालिश करने लग जाते हैं,

0: ऐसे लोगों को क्या कहेंगे और अपने जिंदगी को किस प्रकार व्यवस्थित करें?
1: लोग जागरूक हैं, ये भी नहीं बोल सकते कि लोग नहीं समझते या नहीं जानते। अभी के समय में लोग इतना एडवांस जरूर हो चुके हैं कि किसी भी बीमारी में उनको पता है कि हमको कहाँ पे किसके पास जाना है। यदि नस से संबंधित कोई बीमारी आया तो उनको पता है कि हमको न्यूरो के पास जाना है। यदि हड्डी से संबंधित कोई बीमारी आया तो उनको पता है कि हमको ऑर्थो के पास जाना है। हम लोगों का जो रोल होता है वो दोनों से हम लोग का बंधा हुआ है, न्यूरो से भी है, ऑर्थो से भी है। दूसरा हुआ सर इसमें पेन किलर। पेन किलर का ऐसे भी हम लोग 30 और 35, 40 के बाद हम लोग मना करते हैं। पेन किलर का साइड इफेक्ट ज़्यादा है, हार्ट में अपना लोग का बहुत ज़्यादा असर वो डालता है। अभी के समय में 650 mg, 700 mg डोलो या कोई और भी पेन किलर हो, लोग होता है कि पर डे खाते हैं, आराम से रहे, चलो भाई कम हो गया। लेकिन वो चीज़ है ज़्यादा समय के लिए आपके साथ नहीं है। जब तक उसका असर है तभी तक आप ठीक हैं। उसका असर आपका ख़त्म हुआ, आप अपने वर्क में लौटे, आप अपना दिनचर्या में लौटे, फिर आपका पेन स्टार्ट हो गया। तो इसमें सबसे बेहतरीन हम लोग फिजियो को मानते हैं। फिजियो में भी है कि मेनली कुछ कुछ एक्सरसाइज, कुछ मशीन, ट्रैक्शन हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते, बस एक स्टार्टिंग 1 वीक 2 वीक, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 वीक, मतलब 21 दिन, 21 दिन से ज़्यादा हम लोग ट्रैक्शन भी नहीं देते। एक्सरसाइज में थोड़ा सा यही है कि करने पे थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है, टाइम टेकन है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि एक्सरसाइज से आप भी फिट रहे और अंदरूनी आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम भी नहीं आया।
0: यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, पर्याप्त समय देते हैं, तो ये दर्द वाली जो बीमारी है, स्लिप डिस्क या अन्य तरह की बीमारी भी नहीं होगा, आप फिट रहेंगे और इंडिया भी फिट रहेगा।
1: एकदम सर, एकदम
0: डॉक्टर नर्मदे आज आप इस कार्यक्रम में आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
1: थैंक यू सर।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, स्लिप डिस्क कारण और उपचार। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर नर्मदे, इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली। शुरुआत करते हैं फिल्म अभिमान के इस गीत से। लता मंगेशकर की आवाज है, शब्दों में पिरोया है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है एसटी परमन ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम का अगला नगमा सुनते हैं फिल्म चिपके चिपके से। लता मंगेशकर की आवाज है, शब्द रचना अनंत बख्शी के, संगीत पथ किया एसटी बर्मन ने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम सुबह सुरीली का अगला नगमा फिल्म मिली से, आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की है। इस गीत को लिखा योगेश ने, धुन बनाई है एसटी परमन ने।

साजन बिना सुहागन, इस फिल्म से गाना सुनते हैं। आवाज येसुदास और अनुराधा पौडवाल की है, बोल इंदवर के, धुन बनाई है उषा खन्ना ने।

माफ कीजिएगा, आइए सुनते हैं फिल्म नया दौर 9211 से ये गाना, किशोर कुमार की आवाज, रचना मजरू।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म बम्बई का बाबू से। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज है, संगीत वत किया एसटी बर्मन ने, धुन बनाई है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है गांधी कथा, संकलन गौरव शिखर राय, प्रस्तुति गौरव कुमार की।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी कथा, संकलन और प्रस्तुति है गौरव शिखर राय की, वह वाचन स्वर है अवनीश कुमार सिन्हा का।

सत्याग्रह का विचार पहली बार गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ही आया था। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना, और सत्याग्रह आंदोलन का मतलब है सभी प्रकार के त्याग और कष्टों को झेलते हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना। इसमें सामने वाले को चोट पहुंचाए बिना उसके मन में न्याय की भावना जागृत करना और उनका दिल जीतना, यही सत्याग्रह का मूल उद्देश्य होता है। और ऐसे सत्याग्रह करने वालों को सत्याग्रही कहा जाता है।

गांधी जी के अनुसार यह सत्य और अहिंसा से पैदा हुआ एक नैतिक बल है। इस सत्याग्रह को मध्यम बनाकर गांधी जी ने लोगों के मन के साथ साथ कई आंदोलन जीते। प्रस्तुत है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग के अंश। स्वयं गांधी जी के शब्दों में उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से। अब गिरमिटिया प्रथा पर थोड़ा विचार कर लेने का समय आ गया है। गिरमिटिया यानी वे मजदूर जो 5 बरस या इससे कम की मजदूरी के इकरारनामे पर सही करके हिंदुस्तान के बाहर मजदूरी करने गए हों। नेटाल के ऐसे गिरमिटियों पर लगा 3 पाउंड का वार्षिक कर सन 1914 में उठा लिया गया था, पर गिरमिट की प्रथा अभी तक बंद नहीं हुई थी। सन 1916 में भारत भूषण पंडित मालवीय जी ने यह प्रश्न धारासभा में उठाया था और लॉर्ड हार्डिंग ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करके घोषणा किया था कि समय आने पर इस प्रथा को नष्ट करने का वचन मुझे सम्राट

ओर से मिला है, लेकिन मुझे तो स्पष्ट लगा कि इस प्रथा का तत्काल ही बंद करने का निर्णय हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान ने अपनी लापरवाही से वर्षों तक इस प्रथा को चलाने दिया था। मैंने माना कि अब इस प्रथा को बंद कराने जितनी जागृति लोगों में आ गई है। मैं कुछ नेताओं से मिला, कुछ समाचार पत्रों में इस विषय में लिखा और मैंने देखा कि लोकमत इस प्रथा को मिटा देने के पक्ष में है। क्या इसमें सत्याग्रह का उपयोग हो सकता है? मुझे इस विषय में कोई शंका नहीं थी, पर उसका उपयोग कैसे किया जाए सो मैं नहीं जानता था। इस बीच वायसराय ने समय आने पर शब्दों का अर्थ समझाने का अवसर खोज लिया। उन्होंने घोषित किया कि दूसरी व्यवस्था करने में जितना समय लगेगा उतने समय में यह प्रथा उठा दी जाएगी। अतएव जब सन 1917 के फरवरी महीने में भारत भूषण पंडित मालवीय जी ने गिरमिट प्रथा सदा के लिए समाप्त कर देने का कानून बड़ी धारा सभा में पेश करने की इजाजत मांगी तो वायसराय ने पैसा करने से इनकार कर दिया। अतः उस प्रश्न के संबंध में मैंने हिंदुस्तान में घूमना शुरू किया। भ्रमण आरंभ करने से पहले मुझे वायसराय से मिल लेना उचित मालूम हुआ। उन्होंने तुरंत ही मुझे मिलने की तारीख भेजी। उस समय मिस्टर मेफी अब सर जॉन मेफी के साथ मेरा अच्छा संबंध स्थापित हो गया। लॉर्ड चेम्सफर्ड के साथ संतोषजनक बातचीत हुई। उन्होंने निश्चयपूर्वक तो कुछ ना कहा, पर मुझे उनकी मदद की आशा बंधी। भ्रमण का आरंभ मैंने बंबई से किया। बंबई में सभा करने का जिम्मा मिस्टर जहांगीर पिट्टी ने अपने सिर लिया। इंपीरियल सिटीजनशिप एसोसिएशन के नाम से सभा हुई। प्रस्ताव में गिरमिट प्रथा बंद करने की विनती करनी थी। प्रश्न यह था कि वह कब बंद की जाए। तीन सुझाव थे, जितनी जल्दी हो सके, 21 जुलाई तक और तुरंत। 21 जुलाई का मेरा सुझाव था। मुझे तो निश्चित तारीख की जरूरत थी ताकि उस अवधि में कुछ न हो तो यह सोचा जा सके कि आगे क्या करना है या क्या हो सकता है। सार्वजनिक सभा में यह प्रस्ताव पेश किया गया और सर्वत्र 31 जुलाई की सीमा अंकित हुई। बंबई से श्री जयजी पिटिट के अथक परिश्रम से स्त्रियों का एक डेपुटेशन वायसराय के पास पहुंचा। उसमें लेडी ताता, स्वर्गीय दिलशाह बेगम आदि महिलाएं थीं। सब बहनों के नाम तो मुझे याद नहीं है, पर इस डेपुटेशन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था और वायसराय ने उन्हें आशाजनक उत्तर दिया था। मैं कराची, कलकत्ता आदि स्थानों पर भी हो आया था। सब जगह अच्छी सभाएं हुई थी और लोगों में सर्वत्र खूब उत्साह था। आंदोलन आरंभ करते समय मुझे यह आशा नहीं थी कि ऐसी सभाएं होंगी और उनमें लोग इतनी संख्या में उपस्थित होंगे। इन दिनों मेरी यात्रा अकेले ही होती थी, इस कारण अनोखे अनुभव प्राप्त होते थे। खुफिया पुलिस वाले तो मेरे पीछे लगे ही रहते थे, उनके साथ मेरा झगड़ा होने का कोई कारण ही ना था। मुझे तो कोई बात छिपानी नहीं थी, इससे वे मुझे परेशान नहीं करते थे और न मैं उन्हें परेशान करता था। सौभाग्य से उस समय मुझे महात्मा की छाप नहीं मिली थी, यद्यपि जहां पहचान लिया जाता था वहां इस नाम का घोष जरूर होता था। एक बार रेल में जाते हुए कई स्टेशनों पर खुफिया पुलिस वाले मेरा टिकट देखने आते और नंबर वगैरह लेते रहते थे। उनके प्रश्नों का उत्तर मैं तुरंत ही दे देता था। साथी यात्रियों ने मान लिया था कि मैं कोई सीधा साधा साधु अथवा फकीर हूं। जब 2-4 स्टेशनों तक खुफिया पुलिस वाले आए तो यात्री चिढ़ गए और उन्हें गालियां देकर धमकाया, इस बेचारे साधु को नाहक क्यों सताते हो। फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, इन बदमाशों को टिकट मत दिखाओ। मैंने इन यात्रियों से धीमी आवाज में कहा, उनके टिकट देखने से मुझे कोई परेशानी नहीं होती, वे अपना कर्तव्य करते हैं, उससे मुझे कोई कष्ट नहीं होता।
यात्रियों के गले यह बात नहीं उतरी। वे मुझ पर अधिक तरस खाने लगे और आपस में बातें करने लगे कि निर्दोष आदमियों को इस तरह तंग क्यों किया जाता है। खुफिया पुलिस वाले की तो मुझे कोई तकलीफ नहीं मालूम हुई, पर रेल की भीड़ की तकलीफ का मुझे लाहौर से दिल्ली के बीच कड़वे से कड़वे अनुभव हुआ। कराची से कलकत्ते मुझे लाहौर के रास्ते जाना था। लाहौर में ट्रेन बदलनी थी। वहां की ट्रेन में मेरी कहीं दाल गलती नहीं थी। यात्री जबरदस्ती अपना रास्ता बना लेते थे। दरवाजा बंद होता तो खिड़की में से अंदर घुस जाते थे। मुझे कलकत्ते निश्चित तारीख पर पहुंचना था। ट्रेन खो देता तो मैं कलकत्ते पहुंच न पाता। मैं जगह मिलने की आशा छोड़ बैठा था। कोई मुझे अपने डिब्बे में आने न देता था। आखिर एक मजदूर ने मुझे जगह ढूंढते देख कर कहा, मुझे 12 आने दो तो जगह दिला दूं। मैंने कहा, मुझे जगह दिला दो तो जरूर दूंगा। बेचारा मजदूर यात्रियों से गिड़गिड़ा कर कह रहा था, पर कोई मुझे लेने को तैयार न था। ट्रेन छूटने ही वाली थी कि एक डिब्बे के कुछ यात्रियों ने कहा, यहां जगह नहीं है, लेकिन इसके भीतर घुसा सकते हो तो घुसा दो, खड़ा रहना होगा। मजदूर मेरी ओर देखकर बोला, क्यों जी? मैंने हां कहा और उसने मुझे उठाकर खिड़की में अंदर डाल दिया। मैं अंदर घुसा और उस मजदूर को 12 आने कमा लिए। मेरी रात मुश्किल से बीती। दूसरे यात्री ज्यों त्यों करके बैठ गए। मैं ऊपर वाली बैठक की जंजीर पकड़कर 2 घंटे खड़ा ही रहा। इस बीच कुछ यात्री मुझे धमकाते ही रहते थे, अजी अब तक क्यों नहीं बैठते हो? मैंने बहुतेरा समझाया कि कहीं जगह नहीं है, पर उन्हें तो मेरा खड़ा रहना ही सहन नहीं हो रहा था। यद्यपि वे ऊपर की बैठकों पर आराम से लंबे होकर पड़े थे, बार बार मुझे परेशान करते थे। जितना मुझे परेशान करते थे उतना ही शांति से मैं उन्हें जवाब देता था। इससे वे कुछ शांत हुए। मेरा नाम धाम पूछा। जब मुझे नाम बतलाना पड़ा तब वे शर्माए, मुझसे माफी मांगी और मेरे लिए अपने बगल में जगह दी। सब्र का फल मीठा होता है, कहावत की मुझे याद आई। मैं बहुत थक गया था, मेरा सिर घूम रहा था। बैठने के लिए जगह की जब सचमुच जरूरत थी तब ईश्वर ने दिला दी। इस तरह मैं टकराता थक्का मुक्की बर्दाश्त करता हुआ समय पर कलकत्ते पहुंच गया। कासिम बाजार के महाराज ने मुझे अपने यहां उतरने का निमंत्रण दे रखा था। कलकत्ते की सभा के अध्यक्ष भी वहीं थे। कराची की ही तरह कलकत्ते में भी लोगों का उत्साह उमड़ा पड़ता था। कुछ अंग्रेज भी सभा में उपस्थित थे। 31 जुलाई के पहले गिरमिट की प्रथा बंद होने की सरकारी घोषणा हुई। सन 1894 में इस प्रथा का विरोध करने वाला पहला प्रार्थना पत्र मैंने तैयार किया था और यह आशा रखी थी कि किसी दिन यह अर्ध गुलामी अवश्य ही रद्द होगी। 1894 से शुरू किए गए इस प्रयत्न में बहुतों ने सहायता की, पर यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि इसके पीछे शुद्ध सत्याग्रह था।

गांधी जी का लक्ष्य गलत करने वालों के विचार में बदलाव लाना था, न कि उन्हें हराना, ताकि उनका विचार अच्छा हो जाए और वे अच्छा करें। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन में अहिंसा को सक्रिय हथियार बनाया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन और प्रस्तुति थी गौरव शिखर राय की और वाचन स्वर था अवनीश कुमार सिन्हा का।
1: आप सुन रहे थे गांधी कथा, संकलन गौरव शिखर राय, प्रस्तुति गौरव कुमार की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 पर। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मॉर्निंग न्यूज और समाचार प्रभात

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभाग के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केन्द्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी

0: निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सईद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
3: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली

0: में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: prime deal with Australia, headlines in the Star Times. Three antiquities from Tamil Nadu dating back to 11th and 12th centuries are to finally come home with Australia, writes the Indian Express. Pakistan-occupied Kashmir is on the boil, with the Joint Awami Action Committee pledging to avenge Pakistani atrocities, reports the Asian Age. India Meteorological Department is extensively quoted in dailies on the latest news on monsoon. Monsoon has covered the entire country a day later than normal, announces IMD, is the headline in the Hindu. Deficit falls to 14%, writes the Times of India. And finally, the Pioneer reports that India may soon get a common police uniform after 77 years. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia agree to operationalize their civil nuclear cooperation agreement, paving the way for uranium exports to India. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says, secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government forms seven-member committee to draft uniform civil code for the state. Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, buried in Mashhad 4 months after US-Israeli strikes killed him. France storm into semi-finals of FIFA World Cup after defeating Morocco 2-0. And in men's cricket, England beat India by 9 wickets in fourth T20 international to take 3-0 lead in five-match series. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स में झारखंड सरकार ने किए 14 महत्वपूर्ण एमओयू। राज्य में आएगा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश। केंद्र सरकार की जीरो कोल लीकेज पहल के तहत सीआईएसएफ ने झारखंड और बंगाल में चलाया विशेष अभियान। 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था के दिए कड़े निर्देश। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले का किया दौरा। मनरेगा और आवास योजनाओं की जमीनी प्रगति जांची। और 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते 4 पदक। अनाय खलको और विशाखा थापा ने हासिल किया स्वर्ण। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स ने दूसरे और आखिरी दिन झारखंड सरकार ने नई दिल्ली में 14 महत्वपूर्ण निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके जरिए राज्य में करीब 99,639 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इन निवेशों से जिंदल स्टील और गूगल क्लाउड के सहयोग द्वारा राज्य में औद्योगिक विस्तार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
3: इस विषय पर सरकार पूरी तरीके से राजहित के लक्ष्य और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके ही काम करती है और मुझे लगता है ये तो घड़े का एक बूंद जैसा है। और भी बूंद बूंद भरते हुए उस घड़े को भरेंगे और आप देखेंगे कि जो राज्य पूरे देश का पेट पालता रहा हो और खुद कई मुसीबत और झंझावतों में रहा हो। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ महीने पहले ही ये युवा राज्य बना है और अब ये चलना नहीं बल्कि दौड़ना प्रारंभ कर।
2: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने भी मुलाकात की और राज्य में विश्व स्तरीय स्किल सेंटर, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में दीर्घकालीन साझेदारी और निवेश बढ़ाने की गहरी रुचि व्यक्त की है। केंद्र सरकार की जीरो कोल लीकेज पहल के तहत सीआईएसएफ ने कोयला चोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बल ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर करीब 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद किया। इस मामले में 4 FIR दर्ज कर कई वाहन जब्त किए गए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्र ने टेबल्स ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और देवघर जिले को मिलाकर एक संयुक्त विशेष टीम बनाई गई है। डीजीपी ने

0: अवैध हथियारों की तस्करी रोकने, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच और लगातार गश्त करने पर जोर दिया है। रांची में ऐतिहासिक रथ मेला की तैयारियां जोरों पर है। इस सिलसिले में कल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर परिसर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं निश्चित करने का निर्देश दिए। यह पारंपरिक रथ यात्रा आगामी 16 जुलाई से शुरू होने जा रही है।
1: लोग साल भर इंतजार करते हैं कि रथ यात्रा आएगी और फिर 10 दिवसीय यह रथ यात्रा प्रारंभ होगी, फिर घोटी मेला होगा। इन 10 दिनों के अंदर लगभग 15 से 20 लाख लोग यहां आते हैं। उनकी सुरक्षा, उनके आवागमन, उनके लिए शौचालय, हर तरह की व्यवस्थाएं खड़ी हो।
0: रांची महिला महाविद्यालय के 76वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि डॉ. महुआ मांझी ने शिक्षा को जागरूक नागरिक और सक्षम नेतृत्व के निर्माण का माध्यम बताया। उन्होंने शिक्षा में डिग्री के साथ साथ नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया, जिसके बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सुशील प्रसाद और एमडी साहिद अलम ने जमशेदपुर स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला का दौरा किया। मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पहुंचे इन अधिकारियों ने अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और अनुसंधान कार्यों का निरीक्षण किया। दोनों राजनयिकों ने संस्थान के विश्व स्तरीय शोध और औद्योगिक नवाचार की सराहना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा, जेएसएलपीएस और आवास योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। बैठक में मानव दिवस सृजन, कूप निर्माण और लंबित भुगतानों के त्वरित निष्पादन पर चर्चा हुई। इस दौरान कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रांची के ओरमांझी अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। सांसद ने अधिकारियों को म्यूटेशन प्रमाण पत्र और अन्य राजस्व कार्यों का समय पर निष्पादन करने तथा पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।
2: जमीन दलाल हैं चाहे माफिया हैं, पदाधिकारियों से मिली भगत करके गलत तरीके से रिपोर्टिंग करा करके वो जमीन को हस्तांतरण करने का काम करते हैं, दाखिल रजिस्ट्री कराने का काम करते हैं, जिसका परिणाम देर से फिर ग्रामीण को बहुत खराब भुगतना पड़ता है। इसलिए आए थे एक अंचल पदाधिकारी से कहने के लिए कि जिनका खत्ता प्लॉट में जो त्रुटियां हैं, उस त्रुटि को जिस किसान का जिस ग्रामीण का शिकायत है उसको तुरंत ठीक करने का काम करें।
0: रांची के शौर्य सभागार में कल 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीजीपी तदाशा मिश्रा शामिल हुए। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मोनिता के ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए पासपोर्ट एक जरूरी दस्तावेज है। विभाग का लक्ष्य लोगों को बेहद सहज तरीके से पासपोर्ट उपलब्ध कराना है।
3: 2012 में विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसका मूल एम था डिजिटलाइजेशन तकनीकी कर। तो आज आप देखते हैं कि पासपोर्ट सेवा पूरी तरह डिजिटलाइज्ड है और आज 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कर।
0: रांची नगर निगम ने राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। रातू रोड से हरमू चौक तक सड़क और फुटपाथ से अवैध दुकानों और अस्थायी ढांचों को बुलडोजर से हटाया गया। निगम ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज और कल रांची सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। हालांकि अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते। रांची के नेपाल हाउस प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और एक कांस्य

में 100 से अधिक 150 अज्ञात पर प्राथमिकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स में झारखंड सरकार ने किए 14 महत्वपूर्ण एमओयू। राज्य में आएगा करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश। केंद्र सरकार की जीरो कोल लीकेज पहल के तहत सीआईएसएफ ने झारखंड और बंगाल में चलाया विशेष अभियान। 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था के दिए कड़े निर्देश। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले का किया दौरा। मनरेगा और आवास योजनाओं की जमीनी प्रगति जांची। और 14वीं राष्ट्रीय पेंचिक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते 4 पदक। अनाय खलखो और विशाखा थापा ने हासिल किया स्वर्ण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आज के प्रसारण में आपके साथ रेणु, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुनते हैं बादल चंद्र मुर्मू और साथियों से संताली लोकगीत।

आप सुन रहे थे बादल चंद्र मुर्मू और साथियों से संवाददाता है, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन। शुरुआत करते हैं फिल्म परोशन के इस गीत से, आवाजें लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की है, शब्दों में पिरोया है राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई है राहुल देव परबन ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मोहम्मद रफी की आवाज में सुनते हैं फिल्म प्यार किए जा से ये गाना। इस गीत को लिखा राजेंद्र किशन ने, संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
4: ओए होए गोरे हाथों।

0: तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
0: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: रेस्टोरेंट कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं फिल्म हरियाली और रास्ता से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा, संगीत पर किया शंकर जय किशन ने।

आइए सुनते हैं इंदिवर का लिखा हुआ ये गाना। फिल्म है हिमालय की गोद में, धुन बनाई है कल्याण जयानंद जी, आवाज लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म अभिमान से लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा, धुन बन संगीतबद्ध किया एसटी परमन ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं पंडित मनोज कुमार केडिया। प्रस्तुत है सरोद पर राग बिलास खानी में तोड़ी। आलाप और जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत होंगे, मध्य लयगत शब्दताल में और द्रुत लयगत तीन ताल में निबद्ध हैं। संगत तबले पर संगत कर रहे हैं श्रीजीत चटर्जी।

अभी अब पंडित मनोज कुमार केडिया से सरोद पर राग विलास खानी में तोड़ी आलाप और जोड़ के बाद दो कते सुन रहे थे। मध्यलय गत छपताल में अद्रुत

तुलय गत तीन ताल में निबद्ध थे। तबले पर संगत कर रहे थे सृजित चटर्जी। इसी के साथ सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। इसमें चर्चा सुनिए, बढ़ती आबादी और मुस्तकबिल के चैलेंज। कंपेयर होंगे राजदा हुसैन और शगुफ्ता बानो। प्रस्तुति प्रभु शरण की।

भी मजहब, कोई भी धर्म, धर्म में औरतों को तालीम से, तिजारत से, सियासत से, मुलाजमत से नहीं रोका गया है। यहाँ तक कि माँ का गोद बच्चों का प्राइमरी स्कूल होता है, इस बात को तस्लीम की गई है। हमारी आवाज़ को अहले इल्म, दानिश्वरान, इंटेलेक्चुअल्स की जमात ने गहराई से कबूल की और आज नतीजा दुनिया के सामने है। जिंदगी के हर शोबे में आज हम कामयाब हैं और अपने भाइयों के शाना बशाना खड़े होकर अपने मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे कारनामे सुनहरे अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि नोबल इनामात हासिल करने वालों में भी हमारा नाम दर्ज हो चुका है। साइंसी मैदान भी हमसे अछूता ना रहा। साइंस के मैदान में हम भारतीय खवातीन की हिस्सेदारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन आज भी तादादो शुमार के एतबार से हम अपने भाइयों से कम हैं। हुकूमत के साथ साथ तालीमी इदारों, फलाही जमातों और तंजीमों को इस पर मजीद गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। साथ में ये कि हम ख्वातीन, महिलाओं, औरतों को भी अपनी तालीम और तरबियत को लेकर खास तवज्जो की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके बावजूद भी अदबी तहकीक यानी लिटरेचरली रिसर्च, जिसे आप साहित्यिक अनुसंधान कह सकते हैं, या साइंसी तहकीक, इन दोनों शोबों में हमारा नुमाया किरदार है। अपने इस मकाले में मैंने साइंस में खवातीन की इल्मी सलाहियत पर रोशनी डालने की कामयाब कोशिश की है। चंद खास नाम जो अभी मेरे जहनो गुमान में आ रहा है वो ये है कि लारा बासी यूरोप की पहली खातून जो फिजिक्स की प्रोफेसर बनी, जिन्होंने बोलोनिया यूनिवर्सिटी में फलसफे की 6 मकाले लिखे। 19वीं सदी खवातीन के लिए बहुत ही अहम रहा, लेकिन खवातीन के लिए कॉलेज ने उन्हें तालीम और मुलाजमत के मौके दिए, जिसमें मारी क्यूरी जैसी साइंसदान ने तिब्बियाती यानी मेडिकल साइंस और केमिस्ट्री में नोबेल इनाम हासिल करके ये साबित कर दिया कि कुदरत ने जहानत में हमें अपने भाइयों से कमतर नहीं बनाया है। मेरी क्यूरी के बाद 2025 तक 66 खवातीन ने साइंस और अदब के मैदान में नोबल इनाम हासिल किए हैं। अमन शांति में 18 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं। अदब साहित्य में 16 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं। फिजिक्स और मेडिकल साइंस में 12 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं। केमिस्ट्री में 8 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं। फिजिक्स में 5 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं और मईशत में 1 ने नोबल इनाम हासिल किया। हाँ, यहाँ अफसोस का मकाम ये है कि भारत से बराहे रास्त कोई भी खातून मेरे इल्म के मुताबिक नोबल इनाम याफ्ता नहीं है, लेकिन मदर टेरेसा 1979 में अमन इनाम के तहत नोबल प्राइज हासिल की है, जबकि उनकी पैदाइश अल्बानीन में हुई और इसके बावजूद उनको भारत की शहरियत हासिल है और कलकत्ता से उनकी गहरी लगाव रही। भारत के चंद नोबल प्राइज याफ्ता के नाम जो मेरे जहन में आ रहा है वो मैं पेश करना चाहूंगी और वो ये हैं। पहला रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में नोबल इनाम हासिल किए। सीबी रामन 1930 फिजिक्स में नोबल इनाम से नवाजे गए। तीसरा मदर टेरेसा 1979 अमन में नोबल इनाम हासिल किए। चौथा अमर्त्या सेन ने 1998 मईशत में नोबल इनाम हासिल किया। पांचवा वेंकट रामन रामेश्वरी 2009 केमिस्ट्री में नोबल इनाम हासिल किए। कैलाश सत्यार्थी 2014 अमन में नोबल इनाम हासिल किए। सातवां हरगोबिंद खुराना को 1968 मेडिकल साइंस में नोबल इनाम से नवाजा गया। नौवां अभिजीत बनर्जी को 2019 अर्थशास्त्र में नोबल इनाम से नवाजा गया। इनके अलावा दो नाम और हैं जिनकी पैदाइश भारत में हुई, लेकिन वो ब्रिटिश नागरिक थे। और जैसा कि मैंने बताई कि हिंदुस्तानी खवातीन ने साइंस के मैदान में नुमाया किरदार अदा की है
और अपने

0: कामयाबियों की शानदार दास्तान लिखे हैं। उन्होंने खलाई तहकीक में यानी अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस से लेकर एटॉमिक एनर्जी तक हर शोबे में संगमेल कायम किए हैं। अगर मैं अपने इस मकाले में उन ख्वातीन का नाम पेश ना करूं तो नाइंसाफी होगी। तीशा सारोखा इसरो की पहली खातून साइंसदान थी, जिन्होंने 1971 में रोहिणी सैटेलाइट मिशन कलीदी किरदार अदा किया। 1971 में रोहिणी सैटेलाइट मिशन में कलीदी किरदार अदा किया। कल्पना चावला, जो हिंदुस्तानी निजात अमरीकी थी, नासा की पहली खातून अंतरिक्ष की पहली मुसाफिर थी और 2003 में कोलंबिया मिशन में शरीक हुई। इसी तरह से अगर हम बात करें हुमायूं वहाबा शिरीर की, तो ये मोहतरमा इंडिया की न्यूक्लियर बम माँ कहलाती हैं, जिन्होंने 1960 से 1970 की दिहाई में भारतीय एटम प्रोग्राम को मजबूत बनाया। तीसु जासोधनी राजा निक्सु की मिसाइल वुमेन थी, जिन्होंने अग्नि त्रिशूल और आकाश मिसाइल की तरक्की की। डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम के साथ मिसाइल की तख्लीकी अमल में नुमाया किरदार अदा किया। इसी तरह से अगर हम बात करें आरपी फिरहास की, तो वो बायोलॉजिकल साइंसदां थी, जिसे उर्दू में हयातियाती साइंसदां कहा जाता है। उनकी तहकीक भी हमारे लिए काबिले कद्र हैं। उन्होंने टीबी और मलेरिया की तहकीक की। इसी तरह से प्रोफेसर कमीला सिंह की तहकीक की अगर हम बात करें, तो उन्होंने जेनेटिक और बायोकेमिस्ट्री में ग्लोबल लेवल पर खिदमात अंजाम दिए। डॉक्टर रितु कर्णाढल को रॉकेट वुमेन कहा जाता है, जो मंगलयान चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहीं। कल्पना कलाहस्ती चंद्रयान 3 की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थीं, जो कि सैटेलाइट इमेजिंग में माहिर हैं। निगार साजी आदित्य L1 सूरज मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहीं, जिन्होंने इसरो में काम किया। रीमा घोष ने चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोरो की रोबोटिक्स डिजाइन की। निधि पोरवाल लैंडिंग मॉडल की माहिर थी। आदादो शुमारी के एतबार से अगर देखा जाए तो 16,000 मुलाजमीन में 20 से 25% खवातीन इसरो जैसी मिशनों में हैं। ये तरक्की मसावात खवातीन महिलाओं की तरफ अहम कदम है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आज के साइंसी दौर में, दौरे जदीदियत में, हम खवातीन जिंदगी के हर शोबे में बहुत ही हसास और कामयाब नजर आ रहे हैं। बस जरूरत आज भी हमें समझने और जगह देने की है। जो औरतें घरेलू गृहस्थी को बखूबी अंजाम दे सकती हैं, वो मुल्क व मिल्लत की फलाह व बहबूदगी की भी बखूबी काम आ सकती हैं। अगर आज अपने मुल्क के सबसे आला तरीन मनसब पर एक औरत जलवा अफरोज है, तो ये यूं ही नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि कुदरत ने हम खवातीन के साथ नाइंसाफी नहीं किया है। मेरी मुराद राष्ट्रपति मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा से है। हम खवातीनों के साथ दूसरी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी खुशी की बात यह है कि हर तालीमी इदारों की कुर्सियां हमसे आज पुर हैं। तालीम की अहमियत और उसकी अफादियत से हमें वाकफियत हो चुकी है। खासकर साइंसी तालीम की तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम एक खातून हैं, और आज का ये तमाम सूरत हाल देखते हुए हमारा ये नजरिया है कि आने वाले वक्त में इसरो जैसे आला साइंसी तालीमी इदारे में आज जो हम 20 या 25% हैं, हमारी फीसदी इंशाअल्लाह बढ़ेगी और कम से कम हम खवातीन 50% होंगी। तब जाकर साइंस के मैदान में खवातीन की इल्मी सलाहियत और तरक्की की दास्तान और अच्छे तरीके से लिखी जाएगी इंशाअल्लाह।
1: सामीन, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे मकाला साइंस में खवातीन, इल्म सलाहियत और तरक्की की दास्तान। मकाला निगार थी काजमीन فاطمہ رازدہ۔

0: इसके बाद एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक हमारे सामने है, उम्मीद जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत।
1: वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।
0: तो चलें इसके बारे में हम बातें करें।
1: जरूर। तो सामईन, जिंदगी नाम है एक मुसलसल जिद्दोजहद का, उतार चढ़ाव का, और इस सफर में कभी धूप मिलती है तो कभी घने साए, कभी खुशियों की बहार आती है तो कभी मुश्किलों और नाकामियों का अंधकार हमारे चारों तरफ से हमें घेर लेता है। ऐसे तारीक यानी कि अंधेरे लम्हों में जब इंसान का हौसला डगमगाने लगता है, तब एक शय ऐसी होती है जो उसे गिरने नहीं देती, उसे थाम लेती है, और उसे हम कहते हैं उम्मीद।
0: क्या बात कही है राजदा आपने। और इसी बात पे मुझे अल्लामा इकबाल का एक बड़ा ही प्यारा सा शेर याद आता है, क्या मैं सुनाऊं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंस्पिरेशन हमें मिलती है ऐसे शेर व शायरी से।
0: न हो मायूस, मायूसी जवाले इल्मो इरफा है। न हो मायूस, मायूसी जवाले इल्मो इरफा है। उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। सामीन, उम्मीद महज एक लफ्ज नहीं है, बल्कि यह इंसानी वजूद की सबसे बड़ी ताकत है। यह वो रूहानी शमा है जो घने से घने अंधेरे में भी मुस्तकबिल का रास्ता रोशन रखती है। जरा सोचो राजदा, अगर दुनिया से उम्मीद का दामन छूट जाए तो जिंदगी ठहर जाएगी। एक किसान तपती धूप में इस उम्मीद पर बीज बोता है कि कल बहार आएगी। एक साइंटिस्ट बरसों की नाकामी के बाद भी इस उम्मीद पर तजुर्बा करता है कि एक दिन कामयाबी मिलेगी। और एक मरीज तमाम तकलीफों के बावजूद इस उम्मीद पर जीता है कि आने वाली सुबह सेहत और शिफा लेकर आएगी।
1: मायूसी इंसान को जिंदा लाश बना देती है, ये इंसान की सलाहियत को घुन की तरह खा जाती है। लेकिन जैसे ही दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी किरण फूटती है, इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकराने के लिए दोबारा खड़ा हो जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी तब्दीलियां आई हैं या इंसानों ने जिन अनाम मंजिलों को फतह किया है, उन सब की बुनियाद में उम्मीद ही कार फरमा थी।
0: मेरे अजीज दोस्तों, आज का दौर बड़ा पुरआशुब है। हर शख्स किसी न किसी कश्मकश में मुब्तिला है। किसी को करियर की फिक्र है तो कोई जाती जिंदगी के मसाइल से जूझ रहा है। लेकिन याद रखिए, रात कितनी भी तवील यानी कि लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज निकलने से उसे कोई रोक नहीं सकता। मुश्किलें आरजी होती हैं, लेकिन हमारा हौसला और हमारी उम्मीद मुस्तकिल होनी चाहिए। उम्मीद हमें सब्र सिखाती है, उम्मीद हमें दोबारा उठना सिखाती है। इसलिए अपने दिल में उम्मीद के इस चिराग को कभी बुझने न दे। जब तक सांस है, तब तक आस है।
1: और इसी तरह दोस्तों, इसी उम्मीद पर हम हर साल 12 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ होप मनाते हैं, और इसका मकसद साफ है कि हमें अपनी आशा, होप और उम्मीद नहीं खोनी चाहिए।
0: राजदा, इसी के साथ हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो भी बहुत अच्छा है। अकलियतों के लिए सरकारी स्कीम यानी के हुनर से रोजगार।
1: भाई ये तो बहुत जरूरी टॉपिक है अपने दोस्तों को बताने के लिए कि सरकारी स्कीम क्या है हमारे दोस्तों के लिए।
0: सामिन, किसी भी समाज या मुल्क की हकीकी तरक्की तब तक मुमकिन नहीं है जब तक उसका हर तबका, खास तौर से अकलियत, माशरती तौर पर मजबूत और खुद कफील ना हो। आज हम बात कर रहे हैं सरकार की एक ऐसी अजीम पहल की जिसने अकलियती तबकात के नौजवानों के मुस्तकबिल को एक नई रोशनी दी है, और वो है हुनर से रोजगार का ख्वाब।
1: तालीम यकीनन बहुत जरूरी है, लेकिन आज के इस मुसाबकती दौर में महज डिग्रियां रोजगार की जमानत नहीं देती, आज कद्र है हुनर की, आपके हाथों की महारत की। और इसी मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए वजारते अकलियती उबूर की जानिब से कई ऐसे स्कीम चलाई जा रही है जो हमारे नौजवानों और ख्वातीनों को रोजगार के नए मौके फराम करा रही है। जैसे सीखो और कमाओ योजना, ये स्कीम अकलियती नौजवानों के लिए एक बेहतरीन जरिया है। इसके तहत जदीद दौर की जरूरतों के मुताबिक जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिटेल और हॉस्पिटलिटी में मुफ्त तरबियत दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान वजीफा भी मिलता है और कोर्स के बाद रोजगार की यकीनी सहूलियत भी दी जाती है। उस्ताद, हमारे अकलियती समाज में रिवायती फनून और कशीदाकारी, बुनाई और दस्तकारी का एक अनमोल खजाना है।

0: उस्ताद स्कीम के जरिए इन रिवायती कारीगरों के हुनर को न सिर्फ महफूज रखा जा रहा है बल्कि उन्हें नए जमाने के बाजार से भी जोड़ा जा रहा है। और कुछ स्कीम है शगुफ्ता, जरा हमारे सामईन को बताएं।
1: हुनर हाट यह एक ऐसा आलमी मकाम बन चुका है जहां हमारे दस्तकारों और शिल्पकारों को अपने फन का मुजाहिरा करने और उसे बराहे रास्त बेचने का मौका मिलता है। इसने हजारों कारीगरों को माशी तंगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी दी है। एक और भी स्कीम है जिसका नाम नई रोशनी है। यह स्कीम खास तौर पर अकलियती खवातीन के अंदर लीडरशिप और हुनर को बेदार करने के लिए है ताकि हमारी बहनें और बेटियां भी माली तौर पर खुद मुख्तार बन सके।
0: जरूरत इस बात को समझने की है सामईन कि हम इन सरकारी स्कीमों के कई बेदार हो, मालूमात हासिल करें और इनका पूरा फायदा उठाएं। इसी पैगाम के साथ आज के इस खास बातचीत में बस इतना ही। और जाने से पहले कुछ याद तो है ना शगुफ्ता?
1: बिल्कुल याद है और मुझे नगमा सुनने की शिद्दत हो रही है, तो राजदा प्लीज चलते चलते एक नगमा सुना दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
0: हमारे दोस्तों को भी नगमे का इंतजार है तो देर नहीं करते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा नगमा।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, सूत्रधार थे राजदा हुसैन और शगुफ्ता बानो, प्रस्तुति प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जुहार रांची में। और आज आपके साथ मैं हूँ आभा और
1: रेडू।
0: आप सभी को हमारा
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: नमस्कार। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से।
0: हाँ, तो कहते हैं सोना हीरे मोती ये सब दिखते हैं, चमकते हैं, पर समय के साथ इनकी चमक फीकी पड़ जाती है। लेकिन हमारी सही सोच ऐसा गहना है जो न टूटता है, न पुराना होता है और ना ही इसे कोई चुरा सकता है। जब आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आपका चेहरा अपने आप दमकता है, जिससे आपकी वाणी में और रिश्तों में मिठास आ जाती है।
1: सच में, जिससे जीवन हल्का और सुंदर लगने लगता है।
0: हाँ,
1: यही तो असली आभूषण है जो हमें हर पल सजाता है। और हाँ, इसको पहनने के लिए किसी ज्वेलरी बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती, बस हमें अपने मन को सजाना है। और जब आपका मन साफ होगा ना, तो किसी न किसी रूप में आपको ईश्वर जरूर मिलेंगे।

0: सच में नारायण किस रूप में आएंगे ना पता भी नहीं चलेगा। आवाज तो लोग क्या एकादशी का व्रत भी ये कर रहे हैं और सब तो उन्हीं का किया धरा है, सब देखते हैं और समझते भी हैं। जानती हूँ नाबा, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा मौसम पे चर्चा हो जाए क्योंकि आजकल ये जो मौसम है ना, बारिश की बौछार तो चल ही रही है, बीच बीच में मौसम सुहाना भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन उसकी हल्की हल्की बूंदे जो है ना हम लोगों को पूरा उत्साहित भी कर रही है। और ये मौसम विभाग का कहना भी है कि अभी जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश के ऊपर और आसपास से बना हुआ है, मानसून ट्रफ देश के पश्चिमी भाग स्थित अनूपगढ़, रोहतक, दक्षिण पश्चिम यूपी के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र से लेकर फुर्सतगंज, डेहरी, धनबाद, बांकुड़ा, दीघा होते हुए पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक कायम है। स्लो मौसम में मानसून आ रहा है, अगले दो तीन दिनों के बाद और काफी जोर से बारिश पड़ने का अलर्ट किया गया है। और इधर छह दिन में ना जो गेतल सुद का डैम का पानी है ना 3 फीट बढ़ गया है। 7 लाख से अधिक आबादी को पानी उपलब्ध कराने के गेतलसुद डैम का जलस्तर बढ़ गया है। हाल के दिनों में रांची और आसपास में हुई बारिश से ने 6 दिन में गेतलसुद डैम का जलस्तर जो है 3 फीट तक बढ़ा दिया है। और इसका जलस्तर काफी मतलब रिकॉर्ड किया गया, बहुत अच्छे से हो गया है। जुमार हो, पोर्टपैटो हो, सोनरेखा नदी से अच्छी मात्रा में पानी पहुंचा है, तो सबके लिए राहत की बात है ये। और इधर जो है रांची समेत राज्य में अगले 2-4 दिन में, आज 10 तारीख है ना,
1: हाँ बिल्कुल,
0: दो तीन दिन में अनुमान लगाया जाए,
1: अनुमान है कि 9 से 12 तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश भी होगी।
0: हाँ, जबकि 13 जुलाई से
1: मतलब मानसून जो है थोड़ा जोर पकड़ेगा
0: और 13 जुलाई से तो 2 दिनों के लिए मानसून सक्रिय होगा और पूरे राज्य में वर्षा होगी। और तापमान पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने के कारण तापमान सामान्य रहेगा। सबसे अधिक तापमान बोकारो का 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, रांची का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री रहा और ये सामान्य तापमान से करीब 4 डिग्री नीचे है, न्यूनतम पारा 23.6 डिग्री रहा। तो मतलब मौसम जो भी रहे, तापमान में जो भी उतार चढ़ाव होता रहे, हम लोग को तो गीत संगीत का आनंद लेते रहना है।
1: मौसम तो सुहाना ही रहेगा जैसा कि मानसून में हमेशा रहता है।
0: हाँ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: चलते हैं इतिहास की दुनिया में, पलटते हैं इतिहास के पन्ने, जानते हैं क्या क्या घटनाएं घटी, कौन महापुरुषों का जन्म हुआ, किसने हम लोगों से विदा लिया। तो पहले जानकारी हासिल करते हैं घटनाओं के बारे में।
2: बिल्कुल, तो आपको बता दें 1806 में आज ही के दिन 1857 की क्रांति से करीब 50 साल पहले तमिलनाडु के वेल्लोर किले में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला संगठित और सशस्त्र विद्रोह किया था और इसे वेल्लोर म्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है।
1: और 1966 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय वायुसेना के बेहतरीन लड़ाकू विमान मिग का महाराष्ट्र के नासिक में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 1965 की बात करें तो

0: 10 जुलाई को ग्वालियर में महिलाओं के लिए देश के पहले एनसीसी कॉलेज की स्थापना हुई थी और 1999 में आज के दिन जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत हुई थी।
1: और 10 जुलाई 1848 में न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच दुनिया की पहली लंबी दूरी की टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी, जिससे संचार क्रांति को बढ़ावा मिला। और आज के दिन वर्ष 1913 में कैलिफोर्निया की डेथ वैली में पृथ्वी का अब तक का सबसे अधिक तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
0: और 1962 में नासा द्वारा पहला सक्रिय संचार उपग्रह टेल स्टार 1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, जिसने टीवी और फोन सिग्नल्स को स्पेस के जरिए भेजने की शुरुआत की।
1: और आज ही के दिन 1973 में बहामास को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी, इसीलिए आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें, बहामास की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। 1624 में आज ही के दिन हॉलैंड और फ्रांस के बीच स्पेन विरोधी संधि पर हस्ताक्षर हुआ था।
0: और आज ही के दिन 2003 में नासा का मंगलयान रोवर लॉन्च हुआ। 2008 में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत स्पेस सेल की घोषणा की थी। और 10 जुलाई 2005 में भारत और श्रीलंका में शिक्षा एवं सामुदायिक विकास से संबद्ध दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

0: अब इतिहास का अगला पन्ना पलटते हैं, जानते हैं आज किन महापुरुषों का जन्म हुआ।
1: तो 10 जुलाई 1910 में कर्नल धर्मवीर सिंह का जन्म हुआ था, जो भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों में से एक थे। वर्ष 1921 की बात करें तो 10 जुलाई को असद भोपाली का जन्म हुआ था, जो प्रसिद्ध गीतकार और शायर थे।
0: और सैयद अली भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, इनका जन्म 10 जुलाई 1942 को हुआ। और 1949 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर का जन्म हुआ था। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज थे। इन्हें 1980 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और

0: 1951 में आज ही के दिन पूर्व बीजेपी अध्यक्ष यूपी के 19वें मुख्यमंत्री और हाल के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी जन्म हुआ था है।
1: और 10 जुलाई 1856 में आज ही के दिन पागल वैज्ञानिक के नाम से मशहूर अमेरिकी सर्बियाई वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का जन्म हुआ था। निकोला टेस्ला ने वायरलेस कम्युनिकेशन, एसी करंट, टेस्ला वेव्स, बिजली से चलने वाली मोटर, रोबोटिक्स, रिमोट कंट्रोल, राडार, एक्सरे रहित 300 से ज़्यादा आविष्कार किए। उन्होंने उम्र भर शादी नहीं की ताकि उनके काम में दखल न दे सके कोई। और 1950 में भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका परवीन सुल्ताना का जन्म हुआ। और 1983 में आज ही के दिन चित्रा के सोमन, जो भारतीय एथलीट हैं, इनका भी जन्म हुआ था।
0: और 10 जुलाई 1956 में आज ही के दिन बॉलीवुड के बाबूजी के नाम से मशहूर आलोक नाथ का जन्म हुआ था। आलोक नाथ एक प्रशंसित भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें फिल्म और टेलीविज़न में उनके यादगार चित्रण के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से ऐसी भूमिकाओं में जो गर्मजोशी, परंपरा और भावनात्मक गहराई का प्रतीक है।

0: इतिहास का आखिरी पन्ना पलटते हैं, जानते हैं आज किन महापुरुषों का निधन हुआ।
1: तो 10 जुलाई 1927 में प्रसिद्ध इंजीनियर, समाज सेवी और भारत में हरित क्रांति के नायक सर गंगाराम की मृत्यु हुई थी। भिखारी ठाकुर, जो भोजपुरी के समर्थक लोक कलाकार थे, उनका भी निधन 10 जुलाई 1971 को हुआ था।
0: और 2004 में अब्दुल गफूर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, इनका देहांत हुआ था। और 2006 में आज के दिन अहमद नदीम कासमी को, जो प्रसिद्ध शायर थे, इनकी मृत्यु हुई थी।
1: और 10 जुलाई 2014 में आज ही के दिन फिल्मों में अक्सर दादी का रोल करने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री जोहरा सहगल का 101 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। महज 7 साल की उम्र में मोतियाबिंद से उनकी बाई आंख की रोशनी चली गई थी। इन्हें 1998 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2010 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था।
0: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जोहरा सहगल आज भी अपनी फिल्मों और बेमिसाल शख्सियत के लिए याद की जाती हैं। 2007 में आई सांवरिया फिल्म जोहरा सहगल की आखिरी फिल्मों में से एक थी।

0: तो आभा, आज और भी लगता है कुछ विशेष दिवस है।
1: हर दिन अपना एक खास दिन होता है ना, और हर दिन मतलब मुझे लगता है कि कोई ना कोई दिवस हम जरूर मनाते हैं।
0: हाँ
1: तो
0: आप
1: आज है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, जो भारत में मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर उद्योग में लगे मछुआरों और वैज्ञानिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है।
0: और ये दिन 1957 में डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के एच अली कुन्ही द्वारा भारतीय मेजर कार्य मछली के सफल कृत्रिम प्रजनन की ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार में मछली पालकों और मछुआरों को योगदान को सम्मानित करना है।
1: और इसी दिन यानी कि आज वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस यानी कि ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे भी हम मनाते हैं, और यह दिन नवीकरण ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

0: अब हाँ बातचीत हो गई, इतिहास के पन्ने सारे समटा गए, तो अब चलते हैं स्वास्थ्य की ओर और
1: हाँ,
0: जानते हैं भाई
1: बिल्कुल।
0: इस वक्त मानसून जो चल रहा है उसमें काफी उतार चढ़ाव स्वास्थ्य में भी आ रहे हैं, कभी बुखार कभी कुछ ना कुछ आ रहे हैं।
1: हाँ, तो ऐसा है कि चिलचिलाती धूप के बाद मानसून की बारिश भले ही राहत लेकर आती है, लेकिन इसी राहत के बीच कई संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और बारिश के मौसम में बैक्टीरिया और मतलब बारिश के दौरान जमा पानी में मच्छरों के पनपने की आशंका जो है सबसे अधिक रहती है। और आपको बताएं कि साफ और गंदे दोनों तरह के जमा पानी में मच्छर पनपते हैं और यही मच्छर कई बार जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए हमें कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है।
0: हाँ, मच्छरों की नो एंट्री के लिए घर के भीतर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दे। सप्ताह में एक बार एक दिन तय कर ले कि जब कूलर, फ्रिज के पीछे की ट्रे, गमलों के नीचे रखी प्लेट और पालतू जानवरों के बर्तन को पूरी तरह खाली करके सुखाएं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें, चाहे आप दिन में सो रहे हों या रात में। डेंगू के मच्छर अमूमन दिन के समय ज्यादा सक्रिय होते हैं और कहीं भी अगर आराम भी कर रहे हो तो सूती कपड़े ढीला ढाला पहने और फुल बांह का पहने।
1: हाँ, और मच्छरों से बचाव के लिए आप घर के आसपास गेंदे का पौधा, तुलसी, लेमन ग्रास या पुदीना लगा सकते हैं। इनकी खुशबू से मच्छर दूर भागते हैं और शाम के समय बच्चों को बाहर खेलने भेजते समय पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहना कर भेजें और मॉस्क्यूटो रिपेलेंट क्रीम ज़रूर इस्तेमाल करें।
0: और यदि घर के आसपास कहीं पानी जमा है जिसे तुरंत हटाना मुमकिन नहीं है तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर या मिट्टी का तेल डाल दें। इससे मच्छर का लार्वा सांस नहीं ले पाता और वहीं दम तोड़ देता है। इसलिए बरसात में सावधानियाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि न जमा रहेगा पानी न पनपेंगे मच्छर। और एहतियात के तौर पर जो है इसका डेंगू अगर हो भी जाता है तो उसका जांच करवाते हैं पहले।
1: हाँ,
0: और उसके लिए उपचार बचाव ही सबसे बड़ा उसका
1: हाँ,
0: काम है। तो बचाव के लिए घर और आसपास पानी जमा ना होने दें, मच्छरों से बचे, वायरल फीवर से बचने के लिए हाथों की सफाई, संक्रमित व्यक्ति से दूरी, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम जरूरी है। कुछ भी हो आराम तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और जरूरत पड़ने पे डॉक्टर की भी सलाह आप ले सकते हैं।
0: हाँ, थोड़ा सा भी हो मतलब लगता है आदमी को कि बारिश में बुखार है, वायरल या डेंगू है, कुछ भी नजर आए अभी डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें और उपचार करें और आराम और पानी भरपूर मात्रा में लेते रहें।

0: और जानती हो आभा, ये 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते।
1: और रांची के नेपाल हाउस प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। और अनाय खलखो और विशाखा थापा ने स्वर्ण, वायु तिर्की ने रजत तथा कृपा राणा ने कांस्य पदक जीता है।
0: और लॉर्ड्स टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करने उतरेंगी हमारी भारतीय टीम। T20 विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय महिला टीम शुक्रवार से यहां पहले महिला टेस्ट में लॉर्ड्स पर इंग्लैंड का सामना करेंगी, तो उसका इरादा इस नाकामी से उबरने में का होगा। T20 विश्व कप से जल्दी बाहर होने के बाद भारत को टेस्ट मैच के लिए तैयारी का अधिक समय मिल गया है और ये मैच क्रिकेट का घर कहे जाने वाले लॉर्ड्स पर पहले पुरुष टेस्ट के 142 साल बाद होगा। अब भारतीय टीम ने इससे पहले जो है ना मार्च में ये टेस्ट यहाँ खेला था और

0: और यहाँ पर फिर उन लोग जाने की तैयारी में हैं, तो उस जो भारतीय टीम उतरेगी महिला क्रिकेट से, तो उन लोगों को देते हैं
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: हाँ,
1: और ये हमारे लिए काफी गौरव की भी बात है।
0: हाँ, तो बेसब्रिया हम लोग को है कि वो अच्छा से करे।

0: आभा, देखते देखते ना अब हम लोग को जाने का समय भी हो रहा है और दोस्तों के साथ अच्छा ही समय बीता। हमारे दोस्त भी काफी गाने भी सुने।
1: हाँ, और हमने बहुत सारी जानकारियां भी अपने
0: अब ऐसे मौसम में दोस्तों से ही कहना चाहेंगे ना कि ऐसे मौसम में अपना ख्याल रखने पर अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि मौसम जो है मानसून का है, तो ज्यादा सचेत रहना है। हाँ। सतर्क रहें और ज्यादा कुछ नहीं। और तो इसी के साथ कार्यक्रम जोहार रांची से रेणु
1: और आभा को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार, जोहार, जोहार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके सबसे पसंदीदा शो आपकी पसंद में। तो हो जाइए तैयार अपने मन पसंद के गाने को सुनने के लिए। लेते हैं पहली फरमाइश और शुरुआत कर

करते हैं लता मंगेशकर की आवाज से। फिल्म है दिल तुझको दिया, गीत और संगीत राजेश रोशन का, और इस गीत को सुनना चाहते हैं बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी, प्रतीक और प्रज्ञा।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद आप हक के साथ। अब बारी है हमारे उन प्यारे श्रोताओं की जो हमें लगातार चिट्ठियां और संदेश भेजते हैं, और ये है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, और रांची से हैं कोमल। और इनकी फरमाइश है एक बेहद ही खूबसूरत गीत की, जो है 1963 की फिल्म दिल एक मंदिर का, रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का, और इस सदाबहार गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटें।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आपकी पसंद में हमारे अगले श्रोता है इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सैयद नूरजहां, जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, और ये सुनना चाहते हैं अमाल मलिक और पलक मुश्किल की आवाजों में फिल्म सनम रे का ये गीत। गीतकार हैं मनोज यादव, संगीत अमाल मलिक का।

संगीत नदीम सैफी का, और इस गाने को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेक वीरक, मीका वीरक, मिहिर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवहानकर राही, सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर और शैलेश गवहानकर।

अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में नक्स लयाल पूरी की रचना है, संगीत खयाम का, फिल्म का नाम है खानदान। और इस गाने को सुनना चाहते हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश।

दोस्तों, हर गाने के पीछे एक कहानी होती है और आपकी कहानियां सोई ही तो यह आपकी पसंद खास बनती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले सफर में कुछ और फरमाइशी गीतों के साथ। कार्यक्रम से आभा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। मैं हूं आपकी सखी निधि और आज मेरे साथ है राखी। कहो राखी, कैसी हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ निधि। नमस्कार सखियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम दोनों, और आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगी अपने घर परिवार के साथ।
0: हाँ राखी, एक आशा और भी होती है कि हमारी जो बहनें हैं हमारे कार्यक्रम का भी इंतज़ार करती होंगी।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: और इसे नियमित रूप से सुनती भी होंगी, है ना? और इन्हें पसंद भी आता होगा, तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारी यही कोशिश भी रहती है बहनों कि हम नई नई बातें

0: कर आपके लिए आए और आपका मनोरंजन भी करवाएं।
1: हाँ, बहनों का स्नेह ही है जो हमें उत्साहित रखता है कि हम हर दिन उनके लिए कुछ नया लेकर आने का प्रयास करते हैं और उन्हें पसंद भी आता है। और नई बातें जिनसे हमारी बहनों को मदद मिले, ऐसी बातें हम उन्हें सुनाते हैं और उनका मार्गदर्शन हो, ये भी हम चाहते हैं। और साथ ही साथ भाई, मनोरंजन को भला हम कैसे भूल सकते हैं निधि, मनोरंजन तो होता ही है।
0: बिल्कुल,
1: जानकारी और गीत सब कुछ है हमारे कार्यक्रम में।
0: बहनों के पसंदीदा गीतों का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि कार्यक्रम की जो असली खुशबू है ना राखी, वो तो संगीत है।
1: बिल्कुल, ये तो है। और खुशबू की बात जब तुमने की निधि, तो मुझे ना बगीचे की याद आ गई।
0: अच्छा।
1: तो आज हम फूलों के बगीचे की बात करेंगे अपने कार्यक्रम में।
0: अच्छा, और आज हम बताएंगे कि किस तरह बागवानी करके हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, यानी कि बागवानी का मतलब है खुशी।
1: हाँ, है ना? बागवानी का मतलब, सच में तुमने कहा कि खुशी। बागवानी एक ऐसी चीज है जो हमारे तनाव को दूर करती है। बागवानी एक बहुत ही अच्छी हॉबी है जिसे हम कह सकते हैं। इसे अपनाने से हम प्रकृति के करीब आ जाते हैं, और जब हम प्रकृति के करीब आएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही सहज हो जाती हैं।
0: हाँ, और बागवानी से पेड़ पौधों के बारे में हमारी जानकारी भी तो बढ़ती है राखी, और साथ ही पेड़ पौधों के करीब रहने से हमारा मन शांत होता है, हमें मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है।
1: और सबसे बड़ी बात कि जब हम बागवानी करते हैं तो ये हमारा जो है ध्यान अपनी ओर खींचती है, वहाँ हम ध्यान केंद्रित करते हैं, पूरी तरह डूब जाते हैं फूल पौधों के बीच में। और इससे एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि अभी जो हम मोबाइल के बिल्कुल गुलाम हो गए एक तरह से कहो, स्क्रीन टाइम हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सारे अच्छे समय को हमारा वो ले लेता है, तो स्क्रीन टाइम कम होता है ना, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है।
0: हाँ राखी, और स्क्रीन टाइम कम होने से हमारी आंखों को आराम मिलता है, मानसिक थकान दूर होती है। पौधों को लगाने में, उन्हें पानी देने, मिट्टी को तैयार करने में, इसी क्रम में राखी ना हमारे शरीर का व्यायाम भी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो बहनों, पौधों की देखभाल करके, उन्हें फलता फूलता देखकर बेहद खुशी मिलती है। और इसका कारण है कि कॉर्टिसोल नामक जो हार्मोन है जो तनाव पैदा करता है वो कम हो जाता है, और एक और हार्मोन है एंडोर्फिन, यानी खुशी देने वाला जो हार्मोन है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तो है ना, ये बहुत फायदे वाली बात।
1: हाँ हाँ, बहुत फायदे वाली बात है। और निधि, हम बहुत सारे ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो छोटी जगह में भी उगाए जा सकते हैं, जैसे चेरी टोमेटो लगा दो, या फिर लेमन ग्रास जिसको हम लोग चाय में डाल के भी बनाते हैं, पीते हैं, बहुत सुगंधित चाय बनती है। शिमला मिर्च लगा सकते हैं, हल्दी, पुदीना, धनिया, या फिर अगर औषधीय पौधों की बात करें तो एलोवेरा भी लगा सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट के लिए और हमारे साथ साथ सौंदर्य के लिए, बालों के लिए और त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद।
0: हाँ, तो बहुत सारे लाभ हैं इसके। और बागवानी करने से हमें सुंदर फूल, फल और सब्जियां सभी ताजे रूप में मिल जाती हैं, है ना? हमें इंतजार नहीं करना पड़ता, बाजार नहीं जाना पड़ता, लेकिन इसमें मेहनत की जरूरत है राखी, और साथ ही इसके लिए बहनों आपको वक्त भी निकालना पड़ेगा।
1: हाँ हाँ, तो निधि, अगर हमें अपने वक्त को खूबसूरत बनाना है तो वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। और बहनों, आप अपने परिवार के साथ अन्य सदस्यों को लेकर भी, खासकर अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों को भी आप शामिल कर सकती हैं इसमें। वैसे बच्चों की जिज्ञासा खुद ब खुद बढ़ती है जब वो इन पौधों के समीप आते हैं, और धीरे धीरे आपकी बागवानी में वो भी शामिल हो जाएंगे।
0: हाँ, तो इस तरह से हम बहुत सारे फूलों के पौधे लगा सकते हैं, जैसे गेंदा है या गुलाब है, और छोटे छोटे जो जिसे मोगरा कहते हैं, और सनफ्लावर जो सूरजमुखी कहते हैं, ये सभी हम गमलों में उगा सकते हैं। और इसमें ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है।
1: हाँ।
0: तो ये आसानी से, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो बालकनी में ये सब आप लगा सकते हैं। और साथ ही आप इंडोर प्लांट्स भी घर में लगा सकती हैं, जैसे एरिका पाम, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, पीस लिली वगैरह। स्नेक प्लांट और एरिका पाम कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे घर का वातावरण शुद्ध होता है।
1: बिल्कुल, और बहनों, इंडोर प्लांट से घर की खूबसूरती भी बढ़ती है। घर के अंदर हरियाली देखने से हमें अच्छा महसूस होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि तनाव कम होता है, खुशी मिलती है। तो आप भी बागवानी अपनाएं, ये घर की शोभा बढ़ाने, ताजी फल और सब्जियां देने के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। और निधि, कार्यक्रम की शुरुआत में ही तुमने फूलों की बात की थी, है ना? तो पता है मुझे रजनीगंधा फूल बहुत पसंद है।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Hey girls,
4: hey, congratulations.
3: आज तो पार्टी चाहिए,
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है बहनों, आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में आपके साथ हैं हम दो सखियां राखी और निधि। और निधि, आगे बहनों के लिए कुछ जानकारियां लेकर आए हैं ना हम।
2: हाँ, तो बहनों प्रस्तुत है भेंट वार्ता। आज का विषय है किचन गार्डन, समय की मांग। भेंट वार्ताकार हैं आरती मिश्रा और इनसे बातें कर रही हैं राखी शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
3: बहनों, हरियाली केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारे लिए स्वास्थ्य और सुकून का उपहार भी लेकर आती है। साथ ही साथ हम आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ते हैं। घर की छोटी सी जगह में लगाई गई गृहवाटिका, या जिसे हम किचन गार्डन कहते हैं, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और ये हम सब जानते भी हैं। तो आइए आज अपने कार्यक्रम में हम इसी विषय पर जानकारी लेते हैं। और इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं आरती मिश्रा। आप एक कुशल गृहिणी हैं और अपने घर परिवार की बगिया को बड़े अच्छे से सहेज कर रखा है आपने।
4: जी मैम, धन्यवाद। सखियों को मेरा नमस्ते।
3: आरती जी, हम भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि किचन गार्डन क्या है और आज इसकी जरूरत क्यों है।
4: मैम, किचन गार्डन का मतलब है घर के आसपास छत, बालकनी या आंगन में अपनी जरूरत की सब्जियां, फल और हरी पत्तेदार पौधों को उगाना। यह केवल बागवानी नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के समय में बाजार में मिलने वाली सब्जियों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग होता है। ऐसे में घर पर उगाई गई ताजी, सुरक्षित और पौष्टिक सब्जियां हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। इसके अलावा बढ़ती महंगाई, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की भी दृष्टि से देखा जाए तो किचन गार्डन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है हमारे जीवन में। थोड़ी सी जगह और थोड़ी सी मेहनत में हम अपने घर के लिए ताजा भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। थोड़ा सा समय देके हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं।
3: बहुत अच्छी बात आपने वैसे तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी मेरा अगला प्रश्न यही होगा कि अगर हम घर में किचन गार्डन शुरू करते हैं तो उसमें और क्या फायदे हैं।
4: जी मैम, किचन गार्डन के कई लाभ हैं। सबसे पहले लाभ है कि हमें ताजी और रासायनिक सब्जियां मिलती हैं, जिससे परिवार का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। दूसरा, इससे घरेलू खर्च में भी बहुत कुछ हद तक बचत होती है। तीसरा, बागवानी करने से मानसिक तनाव कम होता है और प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। अब जैसे अगर हमारे पास कभी हम मार्केट नहीं जा पाए, सब्जियां नहीं है, तो अगर कि हमारे किचन में जो सब्जियां है हम उससे लेके अपना काम, उस दिन का काम चला सकते हैं। इसके अलावा घर का जैविक कचरा है, जैसे सब्जियां और फलों के छिलके, खाद बनाकर दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जिससे हमारा वातावरण भी साफ सुथरा रहता है, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। बच्चों को पौधों के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है। अपना मानसिक तनाव कम होता है समय देने से।
3: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई आरती जी। लेकिन आजकल क्या होता है कि अधिकतर शहरों में तो लोग फ्लैट में रहने लगे हैं और जगह बहुत कम रहती है ऐसे तो करें। तो इसमें हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कम जगह में किचन गार्डन बनाना हम चाहें तो कैसे बना सकते हैं।
4: मैम, किचन गार्डन के लिए नहीं है कि बहुत बड़ा जगह चाहिए या बहुत बड़ा ये होना ही चाहिए। कम जगह होना किचन गार्डन बनाने में कोई बाधा नहीं है। आजकल लोग बालकनी है, छत है, खिड़की के आसपास या छोटे से आंगन में भी सफलतापूर्वक किचन गार्डन तैयार कर रहे हैं। इसके लिए गमले हैं, ग्रो बैग है, प्लास्टिक की बाल्टियां हैं, पुराने डिब्बे या बेकार कंटेनरों का भी उपयोग किया जा सकता है। यदि जगह कम है तो वर्टिकल गार्डन जैसे दीवार पर पौधे लगाना एक अच्छा विकल्प है। सबसे जरूरी बात है कि पौधों को रोज 5 से 6 घंटे धूप मिले और पानी की उचित व्यवस्था हो। थोड़ी सी योजना और नियमित देखभाल से हम बहुत कम जगह में भी साल भर ताजी और पौष्टिक सब्जियां उगा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जगह कम है तो हम किचन गार्डन नहीं बना सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी से किया जाए तो थोड़ी सी जगह में भी किचन गार्डन आराम से विकसित किया जा सकता है।
1: जी, जब शुरुआत हम करते हैं तो आप ये बताएं कि शुरुआत में किन पौधों या सब्जियों को लगाया जाना बेहतर है?
4: ये सबसे जरूरी बात है। शुरुआत हमेशा ऐसे पौधों से करनी चाहिए जो आसानी से उग जाए और जिनकी देखभाल भी सरल हो, जैसे धनिया के हुआ, मेथी हुआ, पालक हुआ, पुदीना हुआ, हरी मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है। इसके अलावा करी पत्ता है, तुलसी और एलोवेरा जैसे उपयोगी पौधे भी लगाए जा सकते हैं। शुरुआत में कौन पौधे लगाएं ताकि उनकी देखभाल अच्छी तरह से कर सके, जो अनुभव बढ़ जाए तो मौसम के अनुसार अन्य सब्जियां, फलदार पौधे भी शामिल किए जा सकते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, किचन गार्डन का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है और कोशिश करने पर हमारा अनुभव भी बढ़ते जाता है।
1: हाँ, शुरुआत छोटे से की जाए और फिर धीरे धीरे जब अनुभव बढ़े तो और भी सब्जियां या फल लगाए जाए, है ना? और एक अपना ही आनंद होता है कि जब आप घर के पौधों से तोड़कर कुछ भी धनिया पत्ता तोड़ लेते हैं या मिर्ची तोड़ लेते हैं, टमाटर,
4: जैसे हमारे किचन में कुछ भी जरूरत है, मिर्च की जरूरत है, तोड़ लाए और काम किए अपना,
1: बहुत अच्छा, शुद्ध भी होता ही है। आरती जी, आप ये बताएं कि जैसे किचन गार्डन में पौधों की देखभाल करने के लिए क्या जरूरी सुझाव आप देंगे, क्या बात?
4: जी मैम, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कैसे उसका देखभाल किया जाए। किचन गार्डन को सफल बनाने के लिए नियमित देखभाल सबसे महत्वपूर्ण है। पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर पानी दें, लेकिन अधिक पानी देने से भी बचे क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। पौधों को पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए और समय समय पर खरपतवार हटाते रहनी चाहिए, यानी उसकी सफाई करते रहनी चाहिए। रसोई से निकलने वाले जैविक कचरे जैसे सब्जियां और फलों के छिलकों को बनी कंपोस्ट खाद का उपयोग करें। पौधों की पत्तियों पर कीट या रोग दिखाई दे तो तुरंत प्राकृतिक उपाय अपनाएं, जैसे नीम का घोल का छिड़काव, नियमित निरीक्षण, मतलब उनका देखभाल नियमित, थोड़ी सी मेहनत से पौधे स्वस्थ रहते हैं और अच्छी उपज भी देते हैं। समय समय पर उनकी उचित रख रखाव जरूरी है।
1: बहुत अच्छी बात। अब चलते चलते हमें आरती जी ये बताएं कि आप हमारी सखियों को जो हमें सुन रही हैं क्या संदेश देना चाहेंगे इस संबंध में?
4: जी मैम मैं अपने सखियों से यही कहना चाहूंगी कि यदि हमारे पास थोड़ा सा भी समय है, हम अपने काम से थोड़ा सा भी समय निकालते हैं, थोड़ी सी जगह है और एक छोटा सा किचन गार्डन जरूर शुरू करें। यह केवल सब्जियां उगाने का माध्यम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, आत्मनिर्भरता और प्रकृति से जुड़ने का एक सुंदर तरीका है। अपने बच्चों को भी इस कार्य में शामिल करें ताकि उनमें भी पर्यावरण के प्रति प्रेम और पौधों की देखभाल की आदत विकसित हो। याद रखिए, एक छोटा सा पौधा भी हमारे परिवार के स्वास्थ्य, घर की सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज एक गमले से शुरुआत कीजिए, कल यही छोटा सा प्रयास एक सुंदर हरा भरा और स्वर्ग जीवन का आधार बन सकता है। और जब आप इसको

0: शुरू करेंगी तो इनके फायदे आप खुद महसूस करेंगी और अच्छा अनुभव करेंगी। मैं यही कहूंगी कि इसको जरूर करें, जरूर लगा के देखें, एक बना के देखें।
1: जी आरती जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और मुझे लगता है सुनकर हमारी बहनें भी उत्साहित होंगी और जरूर अपने घर में किचन गार्डन लगाएंगी।
0: जी जी मैम जी।
1: आपका बहुत
2: बहनों, अभी आप सुन रही थीं भेंट वार्ता, किचन गार्डन, समय की मांग। हमारी आज की मेहमान थीं आरती मिश्रा और इनसे बातें कर रही थीं राखी शर्मा। तो अभी किचन गार्डन की बात हो गई राखी,
1: हाँ,
2: और
1: और मैं क्या
2: हम
1: कहना चाह
2: पौधों की
1: रही
2: ही
1: थी।
2: बात कर ही रहे हैं शुरू से।
1: हाँ, और बारिश का मौसम है तो बारिश में जब बादल काले काले घिरते हैं और मोर जब अपने पंख फैला के नाचता है तो दृश्य कितना सुहाना होता है। हालांकि देखने को कम मिलता है
2: हाँ,
1: जीवन में, कभी एक दो बार भी वो दृश्य इंसान देख ले तो बहुत बड़ी बात है,
2: सही
1: लेकिन
2: कह रही
1: उसकी
2: हो,
1: कल्पना तो हम लोग कर ही सकते
2: कर
1: हैं।
2: सकते हैं। और चलो अब ये गीत सुनते हैं, तो कल्पना भी अपने आप हम कर ही लेंगे, है ना?
1: हाँ, उस कल्पना में बहनों को भी डुबाते हैं।

0: और निधि, चलते चलते बहनों को हम बताना चाहेंगे किशोरी शक्ति योजना के विषय में, जो कि भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना है। और इसका मुख्य लक्ष्य जो है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों का सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य सुधार, पोषण स्तर को बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना है।
1: भाई बहुत अच्छी बात है राखी। और इस योजना के तहत कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण और आहार, और लड़कियों के लिए कौशल विकास और आत्मरक्षा और योग, इन सभी तकनीकों को सिखाया जाता है, और ताकि जैसा तुमने कहा कि बालिकाएं जो हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सके। और इसके लिए बालिकाओं का किशोरी कार्ड बनाया जाता है जिसमें उनके स्वास्थ्य का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। बालिका मंडलों का भी गठन किया जाता है जो स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो हम चाहेंगे कि बहनें अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें और इसका लाभ उठाएं।
0: हाँ, और इसी के साथ निधि, वक्त हो गया बहनों से विदा लेने का। चलते चलते बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी
1: और निधि को दे विदा।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आभा का नमस्कार। आकाशवाणी रांची से कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जीवन की भाग दौड़ में अक्सर हम उन छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं, और कहते हैं जहां रस है वहीं जीवन है, और जहां जीवन है वहीं राग और रंग भी है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत साल 1981 की सुपरहिट फिल्म लव स्टोरी से। आनंद बख्शी के शब्दों को संगीत दिया है RD बर्मन में, और सुरों में पिरोया है अमित कुमार और लता मंगेशकर ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में। अगला गाना जब वी मेट से, गीत को उस्ताद राशिद खान ने अपनी जादुई आवाज दी है और संगीत संदेश सैंडिल्ले का है और बोल है इरशाद कामिल के।

अगला गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, संगीत MM करीम का, गीतकार हैं इंदिवर, फिल्म है क्रिमिनल।

ये गाना है फिल्म महाराज से। इस गाने को अपनी मखमली आवाज दी है मोनाली ठाकुर ने और इसके बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

दोस्तों, संगीत के साथ साथ खुद को तरोताज़ा रखना भी बेहद ज़रूरी है। हर दिन ज़िंदगी हमें एक और मौका देती है हम अपनी किताबों में एक नया पन्ना जोड़ने का। हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने काम में अपना शत प्रतिशत दीजिए। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए आभा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण सुनिए दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 50% के प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि सांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
2: जी हां कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहां पे काफी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहां पे पहुंचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहां पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोराम अनिया ने यूनिसेफ की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग करने स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. The grand tour culminated in spectacular sports diplomacy at the iconic Melbourne Cricket Ground. Standing on the historic turf, the two leaders officially launched the India-Australia Sports Collaboration Roadmap. Prime Minister Narendra Modi will reach Auckland today on a two-day visit to New Zealand. On the third and last leg of his three-nation visit, Mr. Modi will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. India and New Zealand are celebrating 100 years of sporting ties in 2026. Hockey, which started this journey in 1926, continues to bring the two countries closer. The sporting relationship began in 1926 when the Indian Army hockey team became the first Indian sports team to tour New Zealand. Former Hockey New Zealand CEO and 1976 Olympic gold medalist Ramesh Patel says Prime Minister Narendra Modi's visit will further strengthen sports cooperation between the two countries. As India and New Zealand celebrate a century of sporting ties, hockey remains a strong bridge of friendship, connecting the people of both countries and inspiring future generations. New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said clean energy met over 50% of the country's electricity demand for the second time. In a social media post, Mr. Joshi said renewable sources contributed 50.2% of the power supply on the 6th of this month. The minister called this a testament to the growing strength and reliability of India's clean energy ecosystem. He said under the leadership of Prime Minister Modi, India continues to power sustainable growth with speed and determination. Niti Aayog member Dr. Joram Aniya held interaction with UNICEF India representative Cynthia McCaffrey and her delegation in New Delhi to strengthen collaboration on child-centric development, school education and human development. According to Niti Aayog, the discussions focused on safe and inclusive learning, foundational literacy and numeracy, teacher education, student well-being, cyber safety and digital security, particularly in aspirational districts and blocks. The India Meteorological Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall in Uttarakhand today, while in some parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Uttar Pradesh, heavy to very heavy rainfall is expected today. The Met Department has issued a yellow alert for light to moderate rainfall over the national capital today. Monsoon activity continues to remain active across several parts of Himachal Pradesh, with persistent rainfall affecting many areas. The Met Department has issued a yellow alert for heavy rainfall at isolated places today in five districts, Kangra, Mandi, Shimla, Solan and Sirmaur. In view of the weather warning, all educational institutions in Sirmaur and Solan districts have been closed for the day. Former Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been laid to rest at the Imam Reza Shrine in Mashhad as thousands of supporters gathered to pay their final farewell. His eldest son, Sayyid Mustafa Khamenei, performed the ritual prayers. Ayatollah Ali Khamenei was killed in U.S.-Israeli strikes on the 28th of February this year, triggering a widespread conflict across the West Asia region. Palestinian Authority President Mahmoud Abbas has announced that legislative elections will be held in late November this year, the first such polls since 2006. President Abbas issued a presidential decree fixing the 28th of November this year as the date for elections across all Palestinian territories, including Jerusalem, the West Bank and the Gaza Strip. The decree said the elections aim to strengthen democracy and complete the electoral process in Palestine. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% up in the afternoon session today. The Sensex advanced 747 points, to 77,488, while the Nifty added 223 points to 24,186 when reports last came in. On the sectoral front, IT, metal and banks emerged as the leading gainers. And with that, we end this news bulletin.
0: FM 103.3 MHz पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झिरी बायोगैस प्लांट का किया निरीक्षण, समय पर काम पूरा करने के निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस और नए मेडिकल रूम का किया उद्घाटन, कहा दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा टर्मिनल के चेकिंग क्षेत्र का विस्तार। रांची के इटकी में 50 एकड़ भूमि पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार, आयुष मंत्रालय की टीम ने किया जमीन का निरीक्षण। झारखंड की पकरी बरवाड़ी कोयला खदान लगातार दूसरे साल देश में पहले स्थान पर, कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दी 5-स्टार रेटिंग। और बोकारो को मिली नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी, 18 से 27 अगस्त तक जुटेंगे देश के 700 दिग्गज तीरंदाज और ओलंपियन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झिरी स्थित बायोगैस प्लांट और लिगेसी वेस्ट बायो माइनिंग परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कचरा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक मेडिकल रूम का उद्घाटन किया। आपात स्थिति के लिए एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर से लैस जीवन रक्षक एम्बुलेंस भी तैनाती रहेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी दिसंबर तक टर्मिनल के चेक-इन क्षेत्र का विस्तार पूरा कर लिया जाएगा।
5: ये मस्ट है, किसी भी यात्री को कहीं हेल्थ इश्यू आता है तो उसको तुरंत ही हम रिलीफ दें। मणिपाल इसके 49 हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश भर के। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो रांची एयरपोर्ट है बहुत सुविधाओं से युक्त हो रहा है।
4: रांची के इटकी टीबी सेनेटोरियम परिसर की 50 एकड़ भूमि पर एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और योग केंद्र विकसित होंगे। आयुष मंत्रालय की टीम ने भूमि

0: भूमि का निरीक्षण कर लिया है और जल्द ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राज्य सरकार के दिल्ली स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स को दिखावा करार दिया है। रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 7 वर्षों में राज्य में एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जाकर पीठ थपथपाने से झारखंड में कोई वास्तविक निवेश नहीं आने वाला है।
1: इन्वेस्टमेंट के नाम पर राज्य सरकार झारखंड की जनता को बेवकूफ लगातार बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें महारत हासिल है झारखंड के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता से कई सारे उद्योग लगाने का वादा तो जरूर किया, लेकिन पिछले 7 वर्ष की सरकार में एक भी बड़ा उद्योग जो है पूरे प्रदेश में लगाने में वो विफल रहे।
0: एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की झारखंड स्थित पकरी बरवा डीह कोयला खदान को देश में पहला स्थान मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोयला नियंत्रक कार्यालय ने पकरी बरवा डीह ओडिशा की दुलंगा और छत्तीसगढ़ की तलाई पल्ली खदानों को 5-स्टार रेटिंग दी है। कंपनी ने इसे सुरक्षित खनन और पर्यावरण संरक्षण की बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। धनबाद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिन्हित 3,000 बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। सिविल सर्जन के निर्देश पर आज और 13 जुलाई को जिले के सभी प्रखंडों में प्रथम चरण का उपचार किया जा रहा है। गंभीर बीमारी वाले बच्चों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस आज आर्यभट्ट सभागार में शुरू हुआ। 3 दिवसीय समारोह के उद्घाटन अवसर पर झारखंड स्टेट एजुकेशन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नरेंद्र भगत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कुलपति ने बताया कि कल सोहराय कला पर विमर्श और पेंटिंग प्रतियोगिता होगी। समापन वाले दिन पौधारोपण और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।
2: कल विद्यार्थी जो शिक्षा के नीति के अनुरूप उनका कला और संस्कृति दीर्घा और फाइन आर्ट्स का प्रदर्शन होगा और परसों जो हमारा अंतिम दिन होगा जो कि वास्तव में 12 तारीख स्थापना दिवस है उस दिन हम विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे।
0: पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने चक्रधरपुर में ब्राउन शुगर तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अलग अलग छापेमारी में 75 पुड़िया ब्राउन शुगर, मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त की। SDPO डॉक्टर सैयद मुस्तफा हाशमी ने बताया कि पुलिस इस बड़े सिंडिकेट की जांच कर रही है।
3: पुलिस के पूछताछ के क्रम में ये पाया गया है कि ये सभी लोग एक ड्रग पेडलिंग सिंडिकेट का हिस्सा, बाहर से ब्राउन शुगर लेकर आते थे चक्रधरपुर में, छोटी छोटी पुड़िया बना के बेचा करते थे। तो एक बड़े नेटवर्क को इसी तरह 2 बैक टू बैक छापामारी करते हुए ध्वस्त किया गया। इसमें और भी हमारे पास इनपुट्स हैं और लीड्स हैं जिस पर अभी अनुसंधान जारी है।
0: सरायकेला खरसावां में आगामी रथ यात्रा महोत्सव को लेकर पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने नगर क्षेत्र का पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान रथ यात्रा समिति के सदस्यों ने शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स लगभग 0.9% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 666 अंक चढ़कर 77,407 पर और निफ्टी

0: तो 98 अंक बढ़कर 24,161 पर पहुंच गया था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,32,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में सक्रिय मानसून के बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। 12 और 13 जुलाई को रांची, लातेहार, लोहरदगा और गुमला के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में गोड्डा में सबसे अधिक 44.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बोकारो में 18 से 27 अगस्त तक एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन होगा। भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करीब 700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तीरंदाजी संघ के जिला अध्यक्ष लंबोदर महतो ने बताया कि इसमें देश के बेहतरीन तीरंदाज, ओलंपियन और राष्ट्रीय कोच शिरकत करेंगे।
1: निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट को बहुत ही भव्य, शानदार और ऐतिहासिक बनाने का हम लोग काम करेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है जिसमें पूरे देश भर के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। सभी ग्रुप का मिलाकर लगभग 1,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झीरी बायोगैस प्लांट का किया निरीक्षण, समय पर काम पूरा करने के निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस और नए मेडिकल रूम का किया उद्घाटन, कहा दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा टर्मिनल के चेकिंग क्षेत्र का विस्तार। रांची के इटकी में 50 एकड़ भूमि पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार, आयुष मंत्रालय की टीम ने किया जमीन का निरीक्षण। झारखंड की पकरी बरवाड़ी कोयला खदान लगातार दूसरे साल देश में पहले स्थान पर, कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दी 5-स्टार रेटिंग। और बोकारो को मिली नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी, 18 से 27 अगस्त तक जुटेंगे देश के 700 दिग्गज तीरंदाज और ओलंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी। आज की कलाकार हैं सिप्रा बोस, इनसे सुनेंगे मिश्र खमाज में ठुमरी और दादरा।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे गजल हरिहरन की आवाज में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार का प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से।

0: also triggered landslides in different parts of the state, while power and drinking water supply have been disrupted at several places.
1: In the FIFA World Cup in the second quarterfinal tonight, Spain will face Belgium. India's women's cricket team will create history today when they play the first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England this evening. It will be the first ever women's test to be held at the Lord's. Led by Harmanpreet Kaur, India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive shortly in Auckland on two-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol-containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीणा, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि

0: का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा सीआरएसवी की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह की हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
2: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श

0: के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनाव का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
1: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को 2 दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 1 महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे NewsOn AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
2: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम 2 दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मुजफ्फरपुर, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
1: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के 2वें क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार 3री बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम जय भारती में, और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ आभा। आप सभी को मेरा नमस्कार। पहला गाना फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से, आवाजें हैं उदित नारायण, सोनू निगम, अलका याग्निक और कैलाश खेर की। संगीत अनु मलिक का है और गीतकार हैं समीर।

जी हाँ, हवाओं से नहीं, फौजियों की सांसों से लहराता है तिरंगा। वो तिरंगा जिसे हम त्योहारों में थामते हैं, वो रोज किसी फौजी के खून पसीने और अधूरी नींद से जिंदा रहता है। जब हम अपनों के साथ हंस रहे होते हैं, तब कोई सरहद पर खामोशी से खड़ा अपने घर, अपने माँ बाप, अपने बच्चों की तस्वीर जेब में रखकर पूरे देश का घर संभाल रहा होता है। उसे ठंड नहीं लगती क्योंकि वर्दी के नीचे वतन की आग जलती है। उसे डर नहीं लगता क्योंकि उसके दिल में तिरंगे का भरोसा बसता है। हर गोली से पहले उसकी एक ही दुआ होती है, मेरे बाद भी मेरा भारत सुरक्षित रहे। हमारे लिए आज़ादी एक एहसास है पर उनके लिए एक जिम्मेदारी। हमारे लिए तिरंगा एक पहचान है पर उनके लिए सांसों से बंधा हुआ वादा। सलाम है उन फौजियों को जो जीते भी देश के लिए हैं और अगर जरूरत पड़े तो मुस्कुराते हुए मिट जाते हैं भारत माँ के लिए। अगला गाना सुनिए 1997 की सुपरहिट देशभक्ति और रोमांटिक फिल्म बॉर्डर का मधुर गीत, जिसे रूप कुमार राठौर ने अपनी शानदार आवाज दी है, संगीत अनु मलिक ने तैयार किया है और इसके बोल मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: ओ चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: கல்படை கட்டணா ஸ்வயம் ஹி கட்படை பாரதிய சேனா.
1: आकाशवाणी रांची से फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती का आप प्रसारण सुन रहे हैं। अगला गाना फिल्म अभिलाषा से, संगीत आरडी बर्मन का है, रचना मजरू सुल्तानपुरी की, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

इसी के साथ फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाने को कहा। 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित होगी। बैठक में एएसडीडी सूची का सार्वजनिक वाचन भी किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र भरकर जमा करने और आवश्यकता पड़ने पर एआई वीडियो ट्यूटोरियल की सहायता लेने की अपील की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि केवल पात्र भारतीय नागरिक ही फॉर्म भर सकते हैं, गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने टीजीटी नियुक्ति परीक्षा 2016 में विलंब से नियुक्त शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने समान वरिष्ठता, अपग्रेड वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने अजय कुमार सहित 8 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में हो रहे बदलावों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। डॉ. अंसारी ने विशेष रूप से रिम्स 2 अस्पताल के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रिम्स 2 के शुरू होने से झारखंड के मरीजों को राज्य में ही आधुनिक और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। डीजीपी ने नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में अभियान तेज करने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम लोगों में सुरक्षा के प्रति विश्वास मजबूत करने और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। बैठक में कोल्हान प्रमंडल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ और एसटीएफ के अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची समाहरणालय में आम नागरिकों की सुविधा के लिए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 3 नई आधुनिक लिफ्टों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाहरणालय के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में संचालित लिफ्टों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। नई लिफ्टें सेल्फ रेस्क्यू प्रणाली सहित अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जिससे बिजली बाधित होने की स्थिति में भी यात्रियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित होगी। सिमडेगा जिले में ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोजन समिति के सदस्यों के अनुसार रथ यात्रा शुरू होने के बाद 9 दिनों तक विभिन्न बस्तियों के लोग बारी बारी से भगवान को महाप्रसाद का भोग अर्पित करते हैं।
1: खास बात है कि 9 दिनों तक लगातार रथ यात्रा के बाद महाप्रसाद भोग लगाया जाता है और वितरण कराया जाता है, जिसमें 100 से 150 केजी भोग लगाया जाता है। और यह व्यवस्था गांव के लोग करते हैं, सबका बस्ती बांटा हुआ है, किस दिन किस बस्ती को करना है। किसी दिन ब्राह्मण बस्ती को है, तो राउत बस्ती को है, तो नीचे बस्ती को है।
0: दुमका जिले में मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत विद्युत आपूर्ति प्रमंडल ने 190 चिन्हित गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 133 गांवों का कार्य पूरा हो चुका है। अब तक 1025 घरों में मीटर लगाकर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया में सीआईएससीई जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में करीब 800 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन समिति के अनुसार खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर अगले चरण के लिए किया जाएगा।
2: सीआईएससी सिस्टम में है और दिल्ली का जो सीआईएससी 2 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं खेल में। खेलो इंडिया एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, उसी हिसाब से इस साल हर एक बच्चे से 100 रुपया करके लोग कलेक्ट किए हैं।
0: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
0: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
0: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
0: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है। राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
0: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक AC की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओ, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओ, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
2: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ।
2: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
2: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
2: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओ, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: प्यारा भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्यकालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासनकाल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में यह घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदयभद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अरे भागो
1: भागो जाओगे अरे भागो रे अरे सिपाही आगे अरे अरे भागो जाओगे
2: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी सेना अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धन नंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर
4: बढ़े चलो, बढ़े चलो।
3: सिकंदर
4: बढ़े चलो, बढ़े चलो।
3: सिकंदर
4: बढ़े चलो, बढ़े चलो।
3: सिकंदर
4: बढ़े चलो, बढ़े चलो।
3: सिकंदर
4: बढ़े चलो, बढ़े चलो।
3: सिकंदर
4: बढ़े चलो, बढ़े।
2: सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
4: सिकंदर आ गए, सिकंदर आ गए।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
4: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
4: हमें कुछ नहीं चाहिए।
0: मैसिडोनिया चलो,
4: चलो
3: अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूँ।

0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
1: धन्य हो आचार्य,
2: धन्य हो आचार्य,
3: धन्य हो आचार्य,
2: धन्य हो
3: आचार्य,
2: धन्य हो।
4: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया, तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से। मेलोडीज गाने हम लेकर आएंगे प्रोग्राम रांची मेलोडीज में बस थोड़ी ही देर में, लेकिन पहले सुनिए भारतीय सेना को समर्पित ये गीत।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: सुनने वाले सभी श्रोताओं को आभा का नमस्कार। और रांची मेलोडीज कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हवाओं में इश्क और महफिल में संगीत का खुमार हो तो यकीनन वो संगीत की रात होती है। आज की शाम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वही जादू, शादी, मस्ती और ढेर सारे फिल्मी गानों के साथ। तो अपनी चाय की चुस्की लीजिए, या अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं गानों का सिलसिला। पहला गाना फिल्म मेहंदी रंग लाएगी से, आवाज है लता मंगेशकर की, रचना हरिराम आचार्य की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

वाह क्या बात है, ये गाना सुनते ही ऐसा लगता है जैसे घर में ढोलक और शहनाई बजने लगी है। तो चलिए, आप लोग भी थिरक रहे होंगे ये उम्मीद है, तो माहौल को और थोड़ा खुशनुमा बनाते हैं और सुनते हैं एक और सदाबहार गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। संगीत खयाम का है, बोल है साहिर लुधियानवी के फिल्म।

रांची मेलोडीज का अगला गाना है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का और फिल्म है साजन।

अगला गाना फिल्म बड़े दिलवाला से रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत आरडी बर्मन का, और इस गाने को अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

रांची मेलोडीज का आखिरी गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। योगेश के बोल हैं, संगीत सलील चौधरी का और फिल्म है आनंद।

ये था रांची मेलोडीज का एक छोटा सा सफर। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कुछ और नगमों के साथ। तब तक के लिए आप हमको दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने धीमी प्रगति वाले क्षेत्र

क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाने को कहा। 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित होगी। बैठक में एएसडीडी सूची का सार्वजनिक वाचन भी किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जल्द भरकर जमा करने और आवश्यकता पड़ने पर एआई वीडियो ट्यूटोरियल की सहायता लेने की भी अपील की। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झिरी स्थित बायोगैस प्लांट और लिगेसी वेस्ट बायोमाइनिंग परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कचरा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रांची समाहरणालय में आम नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए जिला दंडाधिकारी से उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 3 नई आधुनिक लिफ्टों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाहरणालय के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में संचालित लिफ्टों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के गुरतुर गांव में ओझागुड़ी के शक में 65 वर्षीय केशव राम की हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना के बाद मौके से आरोपी महिला सुनीता कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और सरायकेला खरसावां के गम्हरिया में सीआईएससीई जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में करीब 800 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची से सुनिए उर्दू प्रोग्राम, प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: आपको किसी बड़े शहर में जाकर महंगी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और सीखने का जज्बा है तो आप अपने गांव या कस्बे के छोटे से कमरे में बैठकर भी अमेरिका या यूरोप की किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। इसे ही हम आज की भाषा में वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांसिंग कहते हैं। डिजिटल दौर ने भौगोलिक दूरियों को मिटाकर पूरी दुनिया को एक बाजार बना दिया है, लेकिन याद रखिए, इस समुन्दर से मोती वही निकाल पाएगा जो तैरना सीखेगा। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे युवा रची रटाई एजुकेशन से आगे बढ़कर नए हुनर को सीखें, खुद को अपग्रेड करें। तो देर किस बात की राजदा, आज ही से एक नया हुनर सीखने की शुरुआत कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि डिजिटल दौर का मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है।
1: तो शगुफ्ता, बातें हम और करेंगे, कुछ और ऐसे टॉपिक्स है जिस पर बात करना बेहद जरूरी भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो उस पर बात करने से पहले आइए अपने दोस्तों को सुनाते हैं एक मकाला, साइंस में ख्वातीन, इल्म, सलाहियत और तरक्की की दास्तान। मकाला निगार है काजमीन फातिमा।
2: साइंस में ख्वातीन की इल्मी सलाहियत और तरक्की की एक ऐसी दास्तान है जो सदियों की मेहनत, जद्दोजहद, हिम्मत और कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। एक तवील जमाने तक हम ख्वातीन को खानादारी तक ही महदूद रखा गया था। हमारी तस्लीम को मायूब समझा जाता रहा था। तालीम नहीं होने की वजह से हम इस्तेहसाल और मजलूमियत के शिकार होते रहे, मगर वक्त ने करवट ली और काफी मेहनत और जद्दोजहद के बाद हमने अपने हक की आवाज उठाई। हमने दुनिया को ये दिखाया कि दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी धर्म में औरतों को तालीम से, तिजारत से, सियासत से, मुलाजमत से नहीं रोका गया है। यहाँ तक कि माँ का गोद बच्चों का प्राइमरी स्कूल होता है, इस बात को तस्लीम की गई है। हमारी आवाज को अहले इल्म, दानिश्वरान, इंटेलेक्चुअल्स की जमात ने गहराई से कबूल की और आज नतीजा दुनिया के सामने है। जिंदगी के हर शोबे में आज हम कामयाब हैं और अपने भाइयों के शाना बशाना खड़े होकर अपने मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे कारनामे सुनहरे अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि नोबल इनामात हासिल करने वालों में भी हमारा नाम दर्ज हो चुका है। साइंसी मैदान भी हमसे अछूता ना रहा। साइंस के मैदान में हम भारतीय ख्वातीन की हिस्सेदारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन आज भी तादाद व शुमार के एतबार से हम अपने भाइयों से कम हैं। हुकूमत के साथ साथ तालीमी इदारों, फलाही जमातों और तंजीमों को इस पर मजीद गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। साथ में ये कि हम ख्वातीन, महिलाओं, औरतों को भी अपनी तालीम और तरबियत को लेकर खास तवज्जो की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके बावजूद भी अदबी तहकीक यानी लिटरेचरली रिसर्च, जिसे आप साहित्यिक अनुसंधान कह सकते हैं, या साइंसी तहकीक, इन दोनों शोबों में हमारा नुमाया किरदार है। अपने मैंने साइंस में ख्वातीन की इल्मी सलाहियत पर रोशनी डालने की कामयाब कोशिश की है। चंद खास नाम जो अभी मेरे जहनो गुमान में आ रहा है वो ये है कि लारा बासी यूरोप की पहली खातून जो फिजिक्स की प्रोफेसर बनी, जिन्होंने बोलोनिया यूनिवर्सिटी में फलसफे की 6 मकाले लिखे। 19वीं सदी ख्वातीन के लिए बहुत ही अहम रहा, लेकिन ख्वातीन के लिए कॉलेज ने उन्हें तालीम और मुलाजमत के मौके दिए, जिसमें मारी क्यूरी जैसी साइंसदान ने तिब्बियाती यानी मेडिकल साइंस और केमिस्ट्री में नोबेल इनाम हासिल करके ये साबित कर दिया कि कुदरत ने जहानत में हमें अपने भाइयों से कमतर नहीं बनाया है। मेरे क्यूरे के बाद 2025 तक 66 ख्वातीन ने साइंस और अदब के मैदान में नोबेल इनाम हासिल किए हैं। अमन शांति में 18 लोगों ने नोबेल इनाम हासिल किए हैं। अदब साहित्य में 16 लोगों ने नोबेल इनाम हासिल किए हैं। फिजिक्स और मेडिकल साइंस में 12 लोगों ने नोबेल इनाम हासिल किए हैं। केमिस्ट्री में 8 लोगों ने नोबेल इनाम हासिल किए हैं। फिजिक्स में 5 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं और मायशियत में 1 ने नोबल इनाम हासिल किया। हाँ, यहाँ अफसोस का मकाम ये है कि भारत से बराह रास्त कोई भी खातून मेरे इल्म के मुताबिक नोबल इनाम याफ्ता नहीं है, लेकिन मदर टेरेसा 1979 में अमन इनाम के तहत नोबल प्राइज हासिल की है, जबकि उनकी पैदाइश अल्बानीन में हुई और इसके बावजूद उनको भारत की शहरियत हासिल है और कलकत्ता से उनकी गहरी लगाव रही। भारत के चंद नोबल प्राइज याफ्ता के नाम जो मेरे जहन में आ रहा है वो मैं पेश करना चाहूंगी और वो ये हैं। पहला रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में नोबल इनाम हासिल किए। सीबी रामन 1930 फिजिक्स में नोबल इनाम से नवाजे गए। तीसरा मदर टेरेसा 1979 अमन में नोबल इनाम हासिल किए। चौथा अमृत्या सेन ने 1998 मायशियत में नोबल इनाम हासिल किया। पांचवा वेंकट रामन रामेश्वरी 2009 केमिस्ट्री में नोबल इनाम हासिल किए। कैलाश सत्यार्थी 2014 अमन में नोबल इनाम हासिल किए। सातवां हरगोबिंद खुराना को 1968 मेडिकल साइंस में नोबल इनाम से नवाजा गया। नौवां अभिजीत बनर्जी को 2019 अर्थशास्त्र में नोबल इनाम से नवाजा गया। इनके अलावा दो नाम और हैं जिनकी पैदाइश भारत में हुई लेकिन वो ब्रिटिश नागरिक थे, और जैसा कि मैंने बताई कि हिंदुस्तानी खवातीन ने साइंस के मैदान में नुमाया किरदार अदा की है और अपनी कामयाबियों की शानदार दास्तान लिखे हैं। उन्होंने खलाई तहकीक में यानी अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस से लेकर एटमिक एनर्जी तक हर शोबे में संगमेल कायम किए हैं। अगर मैं अपने इस मकाले में उन ख्वातीन का नाम पेश ना करूं तो नाइंसाफी होगी। तीशा सारोखा इसरो की पहली खातून साइंसदान थी जिन्होंने 1971 में रोहिणी सैटेलाइट मिशन कलेदी किरदार अदा किया। 1971 में रोहिणी सैटेलाइट मिशन में कलीदी किरदार अदा किया। कल्पना चावला जो हिंदुस्तानी निजात अमरीकी थीं, नासा की पहली खातून अंतरिक्ष की पहली मुसाफिर थीं और 2003 में कोलंबिया मिशन में शरीक हुई। इसी तरह से अगर हम बात करें हुमायूं वहाबा शिरीर की, तो ये मोहतरमा इंडिया की न्यूक्लियर बम माँ कहलाती हैं, जिन्होंने 1960 से 1970 की दिहाई में भारतीय एटम प्रोग्राम को मजबूत बनाया। टीसु जासोधनी राजा निक्सु की मिसाइल वुमेन थी जिन्होंने अग्नि त्रिशूल और आकाश मिसाइल की तरक्की की। डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम के साथ मिसाइल की तख्लीकी अमल में नुमाया किरदार अदा किया। इसी तरह से अगर हम बात करें आरपी फिरहास की, तो वो बायोलॉजिकल साइंसदां थी जिसे उर्दू में हयातियाती साइंसदां कहा जाता है। उनकी तहकीक भी हमारे लिए काबिले कद्र हैं। उन्होंने टीबी और मलेरिया की तहकीक की। इसी तरह से प्रोफेसर कमीला सिंह की तहकीक की अगर हम बात करें, तो उन्होंने जेनेटिक और बायोकेमिस्ट्री में ग्लोबल लेवल पर खिदमात अंजाम दिए। डॉक्टर रितु कर्णाढल को रॉकेट वुमेन कहा जाता है जो मंगलयान चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहीं। कल्पना कलाहस्ती चंद्रयान 3 की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थीं, जो कि सैटेलाइट इमेजिंग में माहिर हैं। निगार साजी आदित्य L1 सूरज मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहीं, जिन्होंने इसरो में काम किया। रीमा घोष ने चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोरो की रोबोटिक्स डिजाइन की। निधि पोरवाल लैंडिंग मॉडल की माहिर थी। आदादो शुमारी के एतबार से अगर देखा जाए तो 16,000 मुलाजमीन में 20-25% खवातीन इसरो जैसी मिशनों में हैं। ये तरक्की मसावात खवातीन महिलाओं की तरफ अहम कदम है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आज के साइंसी दौर में दौरे जदीदियत में ہم خواتین زندگی کے ہر شعبے میں بہت ہی حساس اور کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ بس ضرورت آج

0: हमें समझने और जगह देने की हैं। जो औरतें घरेलू गृहस्थी को बखूबी अंजाम दे सकती हैं, वो मुल्क व मिल्लत के फलाह व बहबूदगी की भी बखूबी काम आ सकती हैं। अगर आज अपने मुल्क के सबसे आला तरीन मनसब पर एक औरत जलवा अफरोज हैं, तो ये यूं ही नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि कुदरत ने हम ख्वातीन के साथ नाइंसाफी नहीं किया है। मेरी मुराद राष्ट्रपति मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा से है। हम ख्वातीनों के साथ दूसरी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी खुशी की बात यह है कि हर तालीमी इदारों की कुर्सियां हमसे आज पूर हैं। तालीम की अहमियत और उसकी अफादियत से हमें वाकफियत हो चुकी है। ख़ासकर साइंसी तालीम की तरफ हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक खातून हैं और आज का ये तमाम सूरत हाल देखते हुए हमारा ये नज़रिया है कि आने वाले वक्त में इसरो जैसे आला साइंसी तालीमी इदारे में आज जो हम 20 या 25% हैं, हमारी फीसदी इंशाअल्लाह बढ़ेगी और कम से कम हम ख्वातीन 50% होंगी। तब जाकर साइंस के मैदान में ख्वातीन की इल्मी सलाहियत और तरक्की की दास्तान और अच्छे तरीके से लिखी जाएगी इंशाअल्लाह।
1: सामीन, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे मकाला साइंस में ख्वातीन, इल्म, सलाहियत और तरक्की की दास्तान। मकाला निगार थी काजमीन फातमा राजदा। इसके बाद एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक हमारे सामने है, उम्मीद जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत।
2: वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।
1: तो चलें इसके बारे में हम बातें करें।
2: जरूर। तो सामईन, जिंदगी नाम है एक मुसलसल जिद्दोजहद का, उतार चढ़ाव का, और इस सफर में कभी धूप मिलती है तो कभी घने साए, कभी खुशियों की बहार आती है तो कभी मुश्किलों और नाकामियों का अंधकार हमारे चारों तरफ से हमें घेर लेता है। ऐसे तारीख यानी कि अंधेरे लम्हों में जब इंसान का हौसला डगमगाने लगता है, तब एक शय ऐसी होती है जो उसे गिरने नहीं देती, उसे थाम लेती है, और उसे हम कहते हैं उम्मीद।
1: क्या बात कही है राजदा आपने। और इसी बात पे मुझे अल्लामा इकबाल का एक बड़ा ही प्यारा सा शेर याद आता है, क्या मैं सुनाऊं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंस्पिरेशन हमें मिलती है ऐसे शेर और शायरी से।
1: न हो मायूस, मायूसी जवाले इल्मो इरफा है। न हो मायूस, मायूसी जवाले इल्मो इरफा है। उम्मीदें मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। सामीन, उम्मीद महज एक लफ्ज नहीं है, बल्कि यह इंसानी वजूद की सबसे बड़ी ताकत है। यह वो रूहानी शमा है जो घने से घने अंधेरे में भी मुस्तकबिल का रास्ता रोशन रखती है। जरा सोचो राजदा, अगर दुनिया से उम्मीद का दामन छूट जाए तो जिंदगी ठहर जाएगी। एक किसान तपती धूप में इस उम्मीद पर बीज बोता है कि कल बहार आएगी। एक साइंटिस्ट बरसों की नाकामी के बाद भी इस उम्मीद पर तजुर्बा करता है कि एक दिन कामयाबी मिलेगी। और एक मरीज तमाम तकलीफों के बावजूद इस उम्मीद पर जीता है कि आने वाली सुबह सेहत और शिफा लेकर आएगी।
2: मायूसी इंसान को जिंदा लाश बना देती है, ये इंसान की सलाहियत को घुन की तरह खा जाती है। लेकिन जैसे ही दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी किरण फूटती है, इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकराने के लिए दोबारा खड़ा हो जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी तब्दीलियां आई हैं या इंसानों ने जिन अनाम मंजिलों को फतह किया है, उन सब की बुनियाद में उम्मीद ही कार फरमा थी।
1: मेरे अजीज दोस्तों, आज का दौर बड़ा पुरआशूब है। हर शख्स किसी न किसी कश्मकश में मुब्तिला है। किसी को करियर की फिक्र है तो कोई जाती जिंदगी के मसाइल से जूझ रहा है। लेकिन याद रखिए, रात कितनी भी तवील यानी कि लंबी क्यों न हो, सुबह का सूरज निकलने से उसे कोई रोक नहीं सकता। मुश्किलें आरजी होती हैं, लेकिन हमारा हौसला और हमारी उम्मीद मुस्तकिल होनी चाहिए। उम्मीद हमें सब्र सिखाती है, उम्मीद हमें दोबारा उठना सिखाती है। इसलिए अपने दिल में उम्मीद के इस चिराग को कभी बुझने न दें। जब तक सांस है तब तक आस है।
2: और इसी तरह दोस्तों, इसी उम्मीद पर हम हर साल 12 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ होप मनाते हैं, और इसका मकसद साफ है

0: कि हमें अपनी आशा, होप और उम्मीद नहीं खोनी चाहिए।
1: राजदा, इसी के साथ हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो भी बहुत अच्छा है, अक्लियतों के लिए सरकारी स्कीम यानी के हुनर से रोजगार।
0: भाई ये तो बहुत जरूरी टॉपिक है अपने दोस्तों को बताने के लिए कि सरकारी स्कीम क्या है हमारे दोस्तों के लिए।
1: सामिन, किसी भी समाज या मुल्क की हकीकी तरक्की तब तक मुमकिन नहीं है जब तक उसका हर तबका, खास तौर से अक्लियत, माशरती तौर पर मजबूत और खुद कफील न हो। आज हम बात कर रहे हैं सरकार की एक ऐसी अजीम पहल की जिसने अक्लियती तबकात के नौजवानों के मुस्तकबिल को एक नई रोशनी दी है और वो है हुनर से रोजगार का ख्वाब।
0: तालीम यकीनन बहुत जरूरी है, लेकिन आज के इस मुसाबती दौर में महज डिग्रियां रोजगार की जमानत नहीं देती, आज कद्र है हुनर की, आपके हाथों की महारत की। और इसी मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए वजारत अक्लियती उबूर की जानिब से कई ऐसे स्कीम चलाई जा रही है जो हमारे नौजवानों और ख्वातीनों को रोजगार के नए मौके फराम करा रही है। जैसे सीखो और कमाओ योजना, ये स्कीम अक्लियती नौजवानों के लिए एक बेहतरीन जरिया है। इसके तहत जदीद दौर की जरूरतों के मुताबिक जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी में मुफ्त तरबियत दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान वजीफा भी मिलता है और कोर्स के बाद रोजगार की यकीनी सहूलियत भी दी जाती है। उस्ताद, हमारे अक्लियती समाज में रिवायती फनून और कशीदा कारी, बुनाई और दस्तकारी का एक अनमोल खजाना है। उस्ताद स्कीम के जरिए इन रिवायती कारीगरों के हुनर को न सिर्फ महफूज रखा जा रहा है बल्कि उन्हें नए जमाने के बाजार से भी जोड़ा जा रहा है। और कुछ स्कीम है शगुफ्ता, जरा हमारे सामईन को बताएं।
1: हुनर हाट, यह एक ऐसा आलमी मकाम बन चुका है जहां हमारे दस्तकारों और शिल्पकारों को अपने फन का मुजाहिरा करने और उसे बराहे रास्त बेचने का मौका मिलता है। इसने हजारों कारीगरों को माशी तंगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी दी है। एक और भी स्कीम है जिसका नाम नई रोशनी है। यह स्कीम खास तौर पर अक्लियती ख्वातीन के अंदर लीडरशिप और हुनर को बेदार करने के लिए है ताकि हमारी बहनें और बेटियां भी माली तौर पर खुद मुख्तार बन सके।
0: जरूरत इस बात को समझने की है सामईन कि हम इन सरकारी स्कीमों के तई बेदार हों, मालूमात हासिल करें और इनका पूरा फायदा उठाएं। इसी पैगाम के साथ आज के इस खास बातचीत में बस इतना ही। और जाने से पहले कुछ याद तो है ना शगुफ्ता?
1: बिल्कुल याद है और मुझे नगमा सुनने की शिद्दत हो रही है, तो राजदा प्लीज चलते चलते एक नगमा सुना दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
0: हमारे दोस्तों को भी नगमे का इंतजार है तो देर नहीं करते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा नगमा।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, प्रस्तुति थी राजदा हुसैन और शगुफ्ता बानू की। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

मीडियम पे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते चले, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। ये कार्यक्रम होगा 4:35 पर। 5 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का।

5:02 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। चर्चा का विषय होगा पेरेंट्स के साथ समय बिताएं। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर खेती बाड़ी और हमारी दुनिया।

7 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। हो भाषा में आप कार्यक्रम सुनेंगे आदिवासी अखड़ा 7:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम सहिया का वक्त होगा 7:45 पर। फिल्म संगीत रजनीगंधा का वक्त है रात्रि 8 बजे।

का कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म कहो ना प्यार है से उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है।

कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुना रहे हैं फिल्म बलमा से। गाने के बोलों को लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ है।

कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म आदमी खिलौना है से। समीर के बोलों को संगीत बद्ध किया है नदीम श्रवण ने, गाने को गाया है अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम FM 103.3 MHz पर, ये आकाशवाणी रांची है। शाम के 5 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दूसरे दिन औद्योगिक संवर्धन और निवेश पर उच्च स्तरीय मंथन हुआ, जिसमें झारखंड को देश के अग्रणी औद्योगिक निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने की रणनीति पर चर्चा की गई। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के अनुकूल वातावरण, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और कुशल मानव संसाधन के माध्यम से औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान क्षेत्र में नक्सली विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति पर चिंता जताई है। पार्टी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची अद्यतन

करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। बोकारो जिले में नष्ट की जाने वाली करीब 1500 पेटी एक्सपायर्ड बियर को अवैध रूप से बाजार में बेचे जाने के मामले में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि विभाग ने डिपो मैनेजर और क्लर्क को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में आज भीखी तालाब में डूबने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य महिलाएं घायल हो गईं। खोरी महुआ के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार ने बताया कि तालाब में डूब रही एक युवती को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो दोस्तों, आज के युववाणी कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त आद्या
1: और मैं हूं स्नेहा।
0: हम करते हैं आप सभी का स्वागत आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम करेंगे आपसे ढेर सारी बातें और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम आपको देंगे और साथ ही सुनेंगे कुछ प्यारे प्यारे गीत।
1: आद्या, सबकी लाइफ आजकल कितनी फास्ट हो गई है ना। सुबह कॉलेज, जॉब की भागदौड़, कोचिंग, असाइनमेंट्स, दोस्तों के साथ हैंग आउट, और जो टाइम बच जाए उसमें हमारा फेवरेट काम सोशल मीडिया और बस रील स्क्रॉल करना।
0: बिल्कुल स्नेहा, हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं बस एक क्लिक पर। लेकिन कभी नोटिस किया है, जिस घर में हम रहते हैं वहाँ कई बार हम सबसे ज्यादा डिसकनेक्टेड महसूस करते हैं।
1: हम दोस्तों के साथ घंटों चिल कर सकते हैं, लेकिन जब मम्मी या पापा पास आकर बैठते हैं तो 5 मिनट में हम बोर होने लगते हैं या अपने फोन में डूब जाते हैं।
0: सही कहा दोस्तों, जिन पेरेंट्स ने हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, आज जब उन्हें हमारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है तो हमारे पास उनके लिए टाइम ही नहीं है।
1: अच्छा चलो, एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत लोग अभी क्या सोच रहे होंगे। आप कहेंगे, अरे हम बैठना तो चाहते हैं पेरेंट्स के साथ, पर बैठते ही बहस शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल स्नेहा, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बात पेरेंट्स नहीं समझते और पेरेंट्स की बात हम लोग नहीं समझ पाते।
1: वो हमारे करियर चॉइसेस, हमारे कपड़े, हमारे दोस्तों या हमारे लाइफस्टाइल को लेकर टोक देते हैं और हमें चिढ़ आ जाती है। हमें लगता है कि वो ओल्ड स्कूल है, हमें कंट्रोल कर रहे हैं।
0: और वहीं उन्हें लगता है कि हम हाथ से निकलते जा रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं कर रहे। पर यहाँ प्रॉब्लम सोच की नहीं, कम्युनिकेशन गैप की है। वो अपनी जगह सही है और आप अपनी जगह।
1: बिल्कुल। तो अब सवाल ये है आद्या कि इस सिचुएशन में तालमेल कैसे बिठाएं, पेरेंट्स के साथ एक ट्विनिंग कैसे सेट करें।
0: छोटे कदमों से शुरुआत करो। आपको उनके साथ बैठकर कोई बहुत सीरियस या फिलोसफिकल बातें नहीं करनी है। चाय की चुस्की के साथ बस इतना पूछ लो, पापा आज का दिन कैसा रहा, या मम्मी आज ऑफिस या घर में क्या क्या हुआ। आप देखोगे कि उनके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाएगी।
1: कॉमन इंटरेस्ट ढूंढना, कोई ऐसा काम ढूंढो जो आप दोनों को पसंद हो। साथ में कोई मूवी देख लो, उन्हें कोई नया गैजेट या ऐप चलाना सिखा दो, या शाम को बस 10 से 20 मिनट वॉक पर चले जाओ।
0: रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें। जब वो किसी बात पर डांटें या टोकें तो तुरंत पलटकर जवाब देने के बजाय थोड़ी देर शांत हो जाएं। बाद में जब उनका मूड ठीक हो जाए तब कूल होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं।
1: और इन सब के साथ साथ दिन भर में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखो जब आप और आपके पेरेंट्स साथ हो और सबके फोन साइलेंट पर हो।
0: दोस्तों, आखिर में मैं बस एक ही बात बोलूंगी कि हमें अनुभव का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमारी उम्र भले ही नई सोच और टेक्नोलॉजी की रेस में आगे हो, पर लाइफ को जीने का जो तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस हमारे पेरेंट्स

0: के पास है वो हमें किसी गूगल सर्च या एआई टूल से कभी नहीं मिल सकता।
1: बिल्कुल, उन्होंने दुनिया को हमसे ज्यादा करीब से देखा है। कई बार हमें उनकी बातें कड़वी या आउटडेटेड लग सकती है, लेकिन उनके हर फैसले के पीछे हमारे लिए फिक्र और निस्वार्थ प्यार होता है।
0: जब आप उनके अनुभवों की इज्जत करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तब आपको एहसास होगा कि वो आपके दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़े चीयर लीडर हैं।
1: पेरेंट्स के साथ बिताया गया समय कोई ड्यूटी नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है। दोस्तों, वक्त तेजी से भाग रहा है, जो भी बूढ़े वो भी बूढ़े हो रहे हैं और हम भी बिजी हो रहे हैं। इसीलिए आज से ही थोड़ी देर के लिए ही सही फोन को साइड रखिए, मम्मी पापा के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए और उन्हें समझिए, क्योंकि ये पल फिर लौट कर नहीं आएगा।
0: दोस्तों, हमारी बातें तो आपसे और भी होंगी, पर उससे पहले ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनते हैं एक गीत।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए दोस्तों, अब जानते हैं 10 जुलाई के दिन देश और दुनिया के इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।
4: सबसे पहले बात करते हैं साल 1806 की। 10 जुलाई को तमिलनाडु के वेल्लोर किले में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया, जिसे वेल्लोर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों का पहला बड़ा सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ ही घंटों में इस विद्रोह को दबा दिया था, लेकिन इसने आगे चलकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: साल 1925 में आज ही के दिन अमेरिका के टेनेसी राज्य में प्रसिद्ध स्कोप्स ट्रायल की सुनवाई शुरू हुई थी। इस मामले में शिक्षक जॉन स्कोप्स पर स्कूल में विकासवाद यानी इवोल्यूशन का सिद्धांत पढ़ाने का आरोप लगाया गया था। यह मुकदमा विज्ञान और धार्मिक मान्यताओं के बीच बहस का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था।
4: अब बात करते हैं विज्ञान और अंतरिक्ष की। 1962 को दुनिया के पहले सक्रिय संचार उपग्रह टेलस्टार 1 अंतरिक्ष में भेजा गया।

0: इस उपग्रह ने पहली बार यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच टेलीविजन प्रसारण, टेलीफोन कॉल और अन्य संचार संकेतों के सफल आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त किया। इस उपलब्धि ने आधुनिक सैटेलाइट संचार और वैश्विक प्रसारण के नए युग की शुरुआत की।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं जन्मदिन की। साल 1856 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आविष्कारक निकोला टेस्ला का जन्म हुआ था। उन्होंने प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके आविष्कारों ने आधुनिक बिजली व्यवस्था और संचार तकनीक के विकास में अहम भूमिका निभाई।
0: वहीं 10 जुलाई 1949 को भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर का जन्म हुआ था। वे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। उनकी शानदार बल्लेबाजी ने भारतीय क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई।
1: अब बात करते हैं साल 1973 की। 10 जुलाई को कैरेबियाई द्वीपीय देश बहामास ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। इसी दिन बहामास एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आज भी 10 जुलाई को बहामास में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है।
0: दोस्तों, अब समय है आपके दिमाग को थोड़ा सा वाव कहने पर मजबूर करने का। हम लेकर आए कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिसे सुनकर शायद आप भी सोचें, वाह, ऐसा भी होता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही फैक्ट्स।
1: दोस्तों, बर्फ अपने तरल रूप से हल्की होती है, इसलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। अगर ऐसा न होता तो झीलें और नदियां नीचे से जम जाती।
0: पेड़ पौधे जमीन के नीचे फंगस के नेटवर्क के जरिए एक दूसरे तक पोषक तत्व और संदेश भेज सकते हैं। इसे वुड वाइड वेब भी कहा जाता है।
1: हमारे दिमाग में हर सेकंड लाखों रासायनिक और विद्युत प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिनकी वजह से हम सोचते, याद रखते और फैसले लेते हैं।
0: डीनोकोकस रेडियोड्यूरेंस एक ऐसे बैक्टीरिया है जो इंसानों के लिए जानलेवा रेडिएशन भी आसानी से सह सकता है। इसकी खास बात यह है कि ये अपने टूटे हुए डीएनए को खुद ठीक कर लेता है, इसीलिए इसे दुनिया के सबसे मजबूत बैक्टीरिया में माना जाता है।
1: बिजली गिरने से हवा अचानक बहुत गर्म हो जाती है और यही तेज गर्मी हवा को तेजी से फैलाती है। इसी कारण हमें गरज यानी कि थंडर की आवाज सुनाई देती है।
0: कुछ कछुए सर्दियों में कई महीनों तक बिना सांस लिए पानी के नीचे रह सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा में भी काम कर सकता है। दोस्तों, आइए लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आगे की जानकारी हम गीत के बाद शेयर करेंगे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, कार्यक्रम में आगे हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति पेश की है, जिस

0: के तहत अगले 4 वर्षों में 15,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
1: इसके तहत 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल और सीएनजी दो पहिया वाहनों का पंजीकरण पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और केवल इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन ही पंजीकृत होंगे।
0: तेलंगाना पुलिस ने बाल शोषण और डिजिटल अपराधों के मामलों की डिजिटल जांच के लिए भारत का पहला सॉवरेन एआई प्लेटफॉर्म सी साइट लॉन्च किया है।
1: यह डेटा को सुरक्षित रखते हुए पूरी तरह पुलिस नेटवर्क के भीतर ऑफलाइन काम करता है।
0: दोस्तों, कहते हैं ना, अनुभव वह रोशनी है जो जीवन की हर मुश्किल राह को आसान बना देती है। आज की युवा पीढ़ी के पास जोश है, नए विचार हैं और तकनीक की ताकत है। वहीं हमारी पुरानी पीढ़ी के पास है वर्षों का अनुभव, धैर्य और जीवन की अनमोल सीख। इसी खूबसूरत सोच के साथ आज का हमारा अंतिम विषय है पीढ़ियों के अनुभव का लाभ उठाएं युवा।
1: आज का युवा नई सोच, नई तकनीक और बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि जीवन की कई सीख किताबें या इंटरनेट से नहीं बल्कि हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुभव से मिलती है। उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और उन्हीं अनुभवों से हमें सही फैसले लेने की प्रेरणा मिलती है।
0: बिल्कुल सही कहा। हमारे माता पिता, दादा दादी और परिवार के अन्य बड़े लोग अपने जीवन में संघर्ष, मेहनत और धैर्य की मिसाल रहे हैं। उनके अनुभव हमें बताते हैं कि कठिन समय में कैसे शांत रहना है, गलतियों से कैसे सीखना है और सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत क्यों जरूरी है।
1: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कई बार युवा बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। ऐसे समय में अगर वे अपने बड़ों की सलाह ले तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। जब दोनों पीढ़ी के लोग साथ आते हैं तब सफलता की राह और भी आसान हो जाती है। इसीलिए हमें अपने बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए।
0: बिल्कुल, याद रखिए दोस्तों, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जो सीख किसी ने वर्षों में हासिल की है वो हमें कुछ मिनटों की बातचीत में भी मिल सकती है। इसलिए अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, उनसे बातें कीजिए और उनके अनुभवों को अपनी ताकत बनाइए।
1: दोस्तों, जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वही सबसे ज्यादा फलता फूलता है। इसी के साथ हम यही संदेश देना चाहेंगे कि नई सोच और पुराने अनुभव का मेल ही एक उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। दोस्तों, हमें बातें तो आपसे और भी करनी थी, पर अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे आपसे बहुत सी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त स्नेहा
0: और आत्या
1: को इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत अभिनंदन। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम श्रमिक लोक, और इस सफर में मैं हूँ आपके साथ पूजा, और साथ है
1: आकांक्षा।
0: बिल्कुल, आकांक्षा और पूजा के साथ आज का सफर रहेगा, जहाँ होंगी ढेर सारी बातें। तो सफर की शुरुआत में ही हम आपको बता देते हैं कि आज हमारी जो ट्रेन है वो कहाँ कहाँ पर रुकने वाली है, यानी आज हम कौन कौन से विषय के साथ आपके साथ मुखातिब हुए हैं। आज हम सबसे पहले जो जानकारी लेकर आए हैं वो है बीमा योजनाएं श्रमिकों के लिए कितनी जरूरी है, इस पर चर्चा होंगी। साथ ही चर्चा होगी हमारा जो बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं, इस पर भी बातचीत होगी। और साथ ही बात होगी तकनीकी शिक्षा कौशल विकास में कितनी सहायक है, और चलते चलते बातचीत होगी ऊर्जा के संरक्षण के कुछ छोटे मोटे वो उपाय जो आप बहुत ही आसानी

0: आसानी से दिनचर्या में आजमा कर बहुत ऊर्जा बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल खुश रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज। सबसे पहले क्या बातचीत करेंगे हम?
1: बीमा योजनाएं जो कि श्रमिकों के लिए बहुत जरूरी है। सुबह की पहली किरण के साथ शुरू हो जाता है श्रमिक साथियों का सफर। घर का काम निपटाते हुए काम पर निकलना, धूप बारिश में मेहनत करना और महीने के अंत में तनख्वाह से घर चलाना, यही तो है हमारे श्रमिक भाई बहनों की जिंदगी। पर सोचिए अगर अचानक कोई हादसा हो जाए तो? भारत में हर साल हजारों श्रमिक काम के दौरान दुर्घटना का शिकार होते हैं। अस्पताल का खर्च, दवाइयां और काम बंद होने से आमदनी तक रुक जाती है।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है हम सब जो देखते हैं कि जो हमारे श्रमिक वर्ग हैं उसमें से जितने भी श्रमिक हैं उसके 10% ही है, मुझे लगता है वो संगठित श्रमिक होंगे, लेकिन 90% जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के पास कोई भी बीमा, सुरक्षित बीमा यानी जिसके लिए कोई भी कह सकते हैं वो ऐसे उपचार नहीं है जो अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उनकी देख रेख के लिए उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं, मानी बीमे के रूप में कोई साधन नहीं है। और जब बीमा ही नहीं है तो सोचिए अचानक अस्पताल का वो बड़ा वाला खर्चा का बिल और दिनचर्या बिल्कुल प्रभावित हो जाती है, काम ठप हो जाता है, ऐसे में आपकी जो कह सकते हैं जो जीवन शैली है वो भी बहुत मुश्किल में पड़ जाती है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप रोज काम आते हैं खाते हैं या फिर आपकी जो महीने की भी सैलरी है तो मैं समझने के लिए आपको समझा सकती हूँ कि रोजाना अगर हम अपने गुल्लक में 1 रुपए डालते हैं और उस गुल्लक को अगर हम 1 साल के बाद खोल कर देखते हैं उस गुल्लक को तो हमें 1 रुपए की जगह वो हर दिन की 1 रुपए उसमें जुड़ी हुई मिलती है, यानी 365 दिन के जो 1-1 रुपए होते हैं वो हमें उस मूल के रूप में मिलती है। वैसे ही बीमा भी उसी तरीके से है। आप साल भर में सिर्फ आपको 20 रुपए जमा करना है क्योंकि ये सरकार के द्वारा आप जुड़ते हैं तो बहुत कम पैसे में 20 रुपए आपको सालाना जमा करना है और आपको जो कवर मिलता है ना वो 20 रुपए नहीं बिल्कुल 2 लाख रुपए के तक का कवर प्राप्त करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने पूजा, इसलिए सरकार ने श्रमिकों के लिए खास योजनाएं भी चलाई है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें सिर्फ 20 रुपए सालाना में दुर्घटना में मृत्यु या फिर पूरी दिव्यांगता पर 2 लाख मिलेगा हमारे श्रमिक साथियों को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 436 रुपए सालाना में किसी भी कारण से मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे।
0: बिल्कुल, और अगर इतना भी आप नहीं करने वाले हैं, अगर नहीं मने तो आप सबसे जरूरी है कि आप खुद को निबंधित कीजिए, यानी ई श्रम कार्ड आप बनवा लीजिए। जो असंगठित क्षेत्र के जो भी श्रमिक हैं उन्हें मुफ्त में ये कार्ड बन जाएगी और 2 लाख रुपए तक की जो राशि है ना दुर्घटना की जो राशि है वो उन्हें मिल सकती है।
1: बिल्कुल, आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज पूरे परिवार के लिए भी मिलेगा साथियों। इन बीमाओं को लेना बहुत ही आसान है, अपने बैंक में जाइए जहां आपका खाता है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ले जाइए, साथ में एक फॉर्म मिलेगा उसे भरिए और बस पैसा हर साल खाते में खुद कट जाएगा। साथियों याद रखिए, हादसा पूछ कर नहीं आता, तो आज ही फैसला लीजिए, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के भविष्य के लिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि श्रमिक सुरक्षित तभी तो देश सुरक्षित। तो चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम एक पहले गाना सुना देते हैं, उसके बाद बहुत सारी जानकारियां हैं आपको देते हैं।

0: इस प्यारे से गाने के बाद साथियों आइए बातें करते हैं। अभी जैसा कि मौसम चल रहा है बरसात का, तो रिमझिम फुहारों, ठंडी हवाओं और भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू के साथ बरसात का मौसम सच में बहुत सुहावना लगता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली देखने को मिल रही है, लेकिन इन मनमोहक दृश्य को देखकर अपनी सेहत से बिल्कुल समझौता ना करें साथियों। इस बरसात के मौसम के दौरान अपनी सेहत और रहन सहन में विशेष ध्यान दें। हर मौसम का प्रभाव हमारे शरीर पर अलग अलग पड़ता है। बरसात के मौसम में हमारा पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है, साथ ही संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी इस मौसम में ज़्यादा ही देखने को मिलता है ना पूजा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें, ताज़ा और गर्म खाना खाएं, तले भुने और मसालेदार खाने से परहेज करें।
1: बिल्कुल, ये बात तुमने बिल्कुल सही है, तले भुने खाने से बिल्कुल परहेज करें। लेकिन जैसे ही बरसात आती है ना, सब लोगों को गर्मा गर्म पकौड़े तेल वाले आइटम बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं, लेकिन यहीं पे थोड़ी समझदारी करने की ज़रूरत है।
0: पकौड़े का कॉम्बिनेशन
1: बिल्कुल, पकौड़े खाएं लेकिन साफ सुथरे तरीके से खाएं, घर पर बनाकर खाएं। ऐसा भी नहीं कि हर दिन पकोड़े खाएं, क्योंकि तेली चीज थोड़े से आपको अवॉइड करनी चाहिए
0: बरसात के मौसम।
1: हाँ, तो आपको बस इतना ख्याल रखना है बरसात में, क्योंकि ऐसे तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है, हर जगह हरियाली दिखती है, बारिश दिखती है, और बिल्कुल कह सकते हैं जो हमारा पृथ्वी है ना, वो बिल्कुल क्लीन।

0: बारिश होती है तो बहुत ऐसे सूक्ष्म जो जीव हैं वो भी पनपने लगते हैं, और अनजाने में ही बाहर से बहुत सारे ऐसे जो कीटनाशक चीजें हैं वो आप के टच से ही आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और अब जब बाहर का आप खाना खाते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं होती है, खास करके पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो आपको हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, सर्दी जुकाम हो सकती है, और खास करके जब पेट में कह सकते हैं जब कुछ प्रॉब्लम आती है ना तो आप बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो थोड़ा ख्याल रखेंगे तो ये मौसम आपको कोई भी तकलीफ नहीं देगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने पूजा, और बाहर का खुले हुए खाने से तो बचना ही हमारे साथियों को, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि संक्रमण का खतरा या फिर फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है, तो साथियों आप अपने खाने में अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए और उसके लिए विटामिन सी जैसे कि नींबू संतरा अपने खाने में शामिल कीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और बीमारियों से बरसात के मौसम में खासकर बचाएगा।
0: बिल्कुल, और साथ ही आपके खाने में बहुत जरूरी है कि विटामिन सी की मात्रा हो। विटामिन सी क्या है ना, बहुत ही कह सकते हैं एनर्जेटिक आपको बनाए रहेगा। सी से बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो अगर आप इस मौसम में अगर विटामिन सी नहीं लेते हैं तो आपको परेशानियां हो सकती है, तो विटामिन सी भरे जो भोजन है वो खाएं और कोशिश करें वैसे खाने खाने को जो आसानी से पच जाए।
1: बिल्कुल, और साथ ही गर्म पानी का भी सेवन करना है क्योंकि बरसात के मौसम में देखा जाता है कि पानी के द्वारा भी बैक्टीरिया संक्रमण जो भी है वो फैलता है शरीर में, इसलिए साथियों इस बात का भी ध्यान रखें कि आप गर्म पानी या फिल्टर किया हुआ पानी ही
0: वो तो करें, और बारिश में जैसे पकौड़े की खुशबू आती है वैसे बहुत मन करता है कि इस बारिश में थोड़ा भीग लिया जाए। भीगने का मन तो बहुत होता है लेकिन उसके बाद की जो परेशानी होती है वो हमारे घर वालों को पता होती है, तो कोशिश कीजिए बरसात में जब भी आप बाहर निकले, ठीक है शौक से एक बार तो जरूर भींग लेते हैं हम, लेकिन रोजाना जब आप निकलते हैं तो अपने साथ छाता, रेनकोट, आपका खुद का पानी, ये सारी चीजें अगर आप लेकर निकलते हैं तो आप भीगने से तो बचते हैं, क्योंकि सिर्फ एक बार भीगना ही नहीं है, एक बार भीगने से आपको सर्दी जुकाम तो लगता ही है और आप उस संक्रमण को कह सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी दूसरों को भी दे देते हैं।
1: और साथ ही भीगने के बाद पूजा इस बात का भी ध्यान रखना है कि कपड़े बदल लेना है, क्योंकि कपड़े अगर आप नहीं बदलते हैं तो उससे त्वचा संबंधी जो भी है संक्रमण वो फैल सकता है साथियों।
0: कई बार बिल्कुल ऑफिस जाते समय मैं भी भीग गई थी और उसके बाद जब मैंने चेंज नहीं किया तो तबीयत तो खराब होनी है।
1: तो साथियों हम आगे और बातें करेंगे लेकिन उससे पहले पूजा मुझे लगता है कि एक और गाना हो जाना चाहिए।
0: गाना सुन लेते हैं। ओके ठीक है, फिर से एक बार गाना सुन लेते हैं हम लोग एक और।

0: यार क्या।
1: गाना तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन तकनीकी कुछ कारणों के चलते हम अभी आपको नहीं सुनाएंगे। पहले एक चर्चा है, हम उस पर भी थोड़ा बातचीत करें। जो हम आज आपको सुनाने वाले हैं, गाने से पहले एक भेंटवार्ता है आपको सुनाएंगे। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास में कैसे सहायक है? हमेशा हम बात करते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, हर किसी को पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन जब तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं हम, तो क्या समझते हैं इससे?
2: इससे हम समझते हैं कि जैसे कि कंप्यूटर हो गया या फिर उपकरण हो गया या जो भी मशीनें हैं उस पर काम करके हमें रोजगार अपना बनाना है और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है।
1: भाई एक बात में इसने सारी बातें बता दी कि तकनीकी शिक्षा क्या है, तो इसी पे हम आपको भेंटवार्ता भी सुनाएंगे। और जिस भेंटवार्ता को लेकर आई हैं सुबीर कुमार लेकर आए हैं, और इसे बातचीत की हमारी आकांक्षा सिन्हा ने।
3: नमस्कार श्रमिक साथियों, आज तकनीकी शिक्षा का महत्व काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ने एक अलग ही पहचान बना ली है। यानी कि जो टेक्निकल होते हैं, ये तकनीकी कौशल, वो आज हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। लोग तरह तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या किसी मशीन का उपयोग करके उस पर काम कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा किसी देश के विकास में अहम भूमिका भी निभा रही है और इस तकनीकी शिक्षा से लोगों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल भी मिल रहा है। ऐसे ही एक शख्स से हम लोग रूबरू होते हैं आज, और जिन्होंने तकनीकी शिक्षा का ज्ञान लिया है और वे बिजली विभाग में कार्यरत भी है, अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो नमस्कार।

0: तो ये जो आप काम करते हैं, ये आपको कैसे, मतलब इस आइडिया हुआ कि मुझे ये काम करना है, और इसके लिए आपने किन चीजों की पढ़ाई की?
1: पहले तो इस काम को सीखने के लिए पहले तो तकनीकी शिक्षा लेना जरूरी था, जिससे जिससे मैं आईटीआई में ज्वाइन किया सबसे पहले।
0: जी
1: उसमें तो मैं ऐसे तो मेरा ट्रेड फिटर था उस समय। अब मैं डिप्लोमा भी साथ में कर लिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो
0: जी
1: उसके लिए मैं एग्जाम का फॉर्म भरा जो JUVNL में आता है फॉर्म,
0: जी
1: उसमें मैं असिस्टेंट ऑपरेटर का पोस्ट में अप्लाई किया था, उसमें मेरे सिलेक्शन हुए। उसके बाद मैं अभी उस सब स्टेशन में, ग्रिड सब स्टेशन में कार्यरत हूँ।
0: जी तो आपने पहले इसके बारे में सोचा होगा कि मुझे ये करना है, मन में कुछ ख्याल आए होंगे कि मुझे ये कोर्स करना है?
1: हाँ, मतलब जो प्रशिक्षण था तकनीकी का, उसमें यह था कि अगर मान लीजिए मैं बीकॉम कर लिया चाहे बीए कर लिया, उसमें फिक्स गारंटी नहीं है कि उसमें भी रोजगार मिले। इसलिए
0: जी
1: मैं एक अपनी तकनीकी शिक्षा एक अपना ले लिया।
0: आपने इसकी ट्रेनिंग भी ली होगी, तो कहाँ से इसकी ट्रेनिंग आपने ली है?
1: मेरी ट्रेनिंग हुई है टाटा मोटर लिमिटेड से, जो जमशेदपुर में पड़ती है, ये कंपनी है।
0: जी और
1: उसके
0: एक
1: बाद मैंने JUVNL का फॉर्म भरा था असिस्टेंट ऑपरेटर का पोस्ट में। उसके बाद मेरा ये पोस्ट में सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट में अभी मैं कार्यरत हूँ।
0: तो इसके अलावा भी और भी कई जगह होंगे जहां ट्रेनिंग इसकी ली जा सकती है, तो वैसे कौन-कौन से जगह हैं?
1: हाँ, इसमें आपके इसके अलावा मेरे बहुत सारे सेक्टर सेक्टर है,
0: जी
1: जैसे कि आप टाटा मोटर में अप्लाई कर सकते हैं, टाटा स्टील में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप पावर ग्रिड में अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं, ONGC में अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं।
0: जी
1: बहुत सारे अभी सेक्टर है। नहीं, ऐसे तो तकनीकी शिक्षा के लिए बहुत सारा अभी है, जैसे सेल हो गया, NTPC हो गया, इस सब पे
0: जी
1: आप इस समय भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
0: जो आपने ये तकनीकी शिक्षा का जो ज्ञान लिया है, उसके आपको क्या फायदे हैं?
1: इससे यही फायदा है कि इससे आप सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। आपका हाथ में, आपको अभी तकनीकी शिक्षा है तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
0: जी
1: आप अपना इसके अलावा, आप जैसे मान लीजिए मेरा रोजगार नहीं लगता, तो आप सबसे पहली बात तो आप कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी शॉप खोल सकते हैं,
0: जी
1: मैकेनिकल शॉप खोल सकते हैं, शोरूम खोल सकते हैं, इत्यादि बहुत सारे। आप इससे आप पहली बात तो बेरोजगार नहीं रहेंगे।
0: बिल्कुल। और किस किस फील्ड में रोजगार के साधन हो सकते हैं? तकनीकी शिक्षा लेता है या इस तरह का कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उन्हें नौकरी मिल सकती है फील्ड में?
1: सबसे पहले बात, सबसे बड़ा सेक्टर तो सबसे बड़ा रेलवे है। उसमें आप ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है, असिस्टेंट लोको पायलट है, JE है, उस पोस्ट में तो सबसे पहले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद NTPC है, थर्मल पावर प्लांट जो पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आपका सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, फिर IOC हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया। उसके बाद आप बिजली बोर्ड हो गया, जैसे JUVNL हो गया, चाहे BVNL हो गया, अब
0: जी
1: कोई भी स्टेट का सब अलग अलग नाम आता है उसमें, JUVNL जो झारखंड के आते हैं।
0: मतलब कि आप ये जो कोर्स है, ये कोर्स करके आप बहुत सारे फील्ड में आपको नौकरी मिल सकती है, आप
1: मिल सकते हैं।
0: रोजगार कर सकते हैं, आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं,
1: हाँ,
0: है ना? बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो आप हमारे जो श्रमिक श्रोता हैं और जो युवा हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे तकनीकी शिक्षा को लेकर या तकनीकी कौशल को लेकर?
1: मेरा एक यही सलाह होगी कि कम से कम आप एक फील्ड का, कोई भी एक ट्रेड का, चाहे एक भी कोई भी सब्जेक्ट का तकनीशी शिक्षा लीजिए। उससे आप नॉलेज लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, प्रैक्टिकल भी मिलेंगे, थ्योरिकल भी मिलेंगे। उसमें आपके टूल्स के बारे जानिएगा, मशीन के बारे जान पाइएगा।
0: जी
1: उसके बाद आप कम से कम, सबसे बड़ी बात है कि आप बेरोजगार नहीं रहिएगा, कुछ ना कुछ अपना कोर्स

0: चल आप कौशल ले लीजिएगा तो कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में कर पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हमारे श्रोतागण को, श्रमिक लोग के जितने भी श्रोतागण हैं उन्हें बहुत अच्छी जानकारी दी, और वे भी इस जानकारी को दूसरे तक पहुंचाएंगे और अपने बच्चों को भी इस तरह का तकनीकी शिक्षा लेने के लिए जागरूक भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी
1: सुबीर जी।
0: जी धन्यवाद।
2: तकनीकी कौशल या तकनीकी शिक्षा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ये हमने जाना आज के दौर में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तकनीकी कौशल को समझ नहीं पाते हैं और अच्छे रोजगार से वंचित रह जाते हैं। हमारे श्रमिक साथियों को ज़रूरत है उन्हें समझने की और उसे अपनाने की, यानी कि तकनीकी कौशल या तकनीकी शिक्षा को हमारे श्रमिक जल्द से जल्द अपना लें और इसका ज्ञान ले लें। तो हमारे श्रमिक साथी इस बात पर ज़रूर अमल करेंगे। धन्यवाद।
3: तो अभी आप सुन रहे थे तकनीकी शिक्षा कौशल विकास में सहायक है। तो चलिए सफ़र में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही हम आपको बता दें कि आज जो हम स्विच ऑफ करते हैं, यानी हमारे घर की जो बिजलियां हैं, अगर उसके स्विच हम ऑफ करते हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं होती, तो ये हमेशा याद रखिए कि आज की जो बचत है वो कल की, कह सकते हैं कल की, अब कल कल को उजागर कर सकता है सही मायने में, क्योंकि जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन तक भी, जो आज हम लाइट ले रहे हैं तो उन तक भी ये लाइट जाएगी, यानी वो भी स्विच ऑन कर सकते हैं। अगर हम आज बचत करेंगे तो वो कल वो अच्छा कह सकते हैं, रोशनी देख सकते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो साथियों, भविष्य को संवारते हुए बिजली बचाइए, क्योंकि ये आपकी मजबूरी नहीं है साथियों, ये आपका एक समझदारी है, क्योंकि यही कल की रोशनी की गारंटी देता है।
3: बिल्कुल, ऊर्जा संरक्षण के उपाय यानी बिजली, ईंधन और पानी जैसी ऊर्जा को बचाकर खर्च करना, प्रदूषण और संसाधनों की कमी को कम करना, आपके द्वारा लिया गया एक छोटा कदम कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ा असरदार कदम हो
4: बिल्कुल,
3: सकता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए साथियों, घर में बिजली बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं पूजा,
3: हाँ, बिल्कुल,
4: जो कि हमें अपने साथियों से,
3: हाँ, उन्हें पता भी है, और कई दफा ये हो जाते हैं अनजाने में वो भूल जाते हैं, और अभी तो भाई बिजली की जो मीटर है वो इस तरह से भाग रही है, तो बचत तो ऐसे भी करनी है। तो अगर आप जिस कमरे में हैं और बाकी कमरों में भी अगर लाइट जल रही है, तो कोशिश कीजिए बाकी कमरों की लाइट ऑफ कर दें, जितनी जरूरत है बस खर्च उतना ही होना चाहिए।
4: बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जैसा कि चल रहा है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो हमारे श्रमिक साथियों को ये भी समझना होगा कि अब हमारा जो दौर है वो सौर ऊर्जा अपनाने का दौर आ गया है। साथियों, आप सौर ऊर्जा को अपनाइए और बिजली की बचत कीजिए। और सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है कि उसमें आपको क्या मिलेगा, एक सब्सिडी भी मिलेगा, इसलिए इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं और अपने घर के ऊपर सौर ऊर्जा के लिए सौर जो भी
3: सोलर
4: है, बिल्कुल
3: जो,
4: सोलर
3: बिल्कुल
4: प्लांट
3: लगा
4: वो
3: सकते
4: लगा
3: हैं।
4: सकते हैं।
3: और साथ ही अगर आप घर में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बिजली तो ऐसे ही बहुत कटती है, तो आप कोशिश कीजिए 24 से 26 डिग्री पर ही उसे चलाएं, जबकि बिजली की भी खपत ना हो और जो इन्वायरमेंट है हमारा
4: कि
3: वो
4: एसी
3: भी,
4: बदले आप अपने घरों के अगल अगल पेड़ लगाएं।
3: हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप एक एसी लेते हैं और उस जगह पे एक पेड़ लगाते हैं तो वो 10 एसी के बराबर काम करता है।
4: बिल्कुल।
3: तो सफर में अब हमें जाने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले आपसे बस इतना ही कहेंगे कि ऊर्जा के बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसे हम बेवजह खर्च किए जा रहे हैं, बिल्कुल समझदारी नहीं होने के कारण, या फिर समझदारी होने के बाद भी कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी आलस से कर ले रहे हैं कि हमें तो मिल रहा है आगे भी मिलेगा, नहीं,
4: नहीं
3: ये यहाँ पे थोड़ा खुद को बदलने की जरूरत है। जितने भी हमारे संसाधन है वो सीमित रूप में हमारे पास है, और उनको अगर हम इस तरह से उनको
4: खर्च
3: दोहन करेंगे तो वो हमारे पास बचेंगे ही नहीं, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे छोटे नन्हे बच्चे हैं, उन्हें वो चीज कभी नहीं मिल पाएगी।
4: तो मुझे लगता है पूजा, अब अंतिम सफर में हम पहुंच गए हैं, तो क्यों ना इस गाने के साथ ही हम अपना सफर को समाप्त करें, है ना।
3: बिल्कुल।

0: बिल्कुल, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही हमारे कार्यक्रम का जो अंत है वो यही है कि आप हमेशा इसी तरह हमारे कार्यक्रम का इंतजार करिए और हम आपके लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर आए हैं और लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी पूजा
1: और आकांक्षा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। विश्व प्रसिद्ध सरायकेला रथ महोत्सव की तैयारियों के तहत झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने श्री जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा की। डीजीपी ने अधिकारियों, मंदिर समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय अनुकंपा एवं स्क्रीनिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, उग्रवादी हिंसा से जुड़े मामलों, एमएसीपीएस सेवा संपुष्टि तथा विभिन्न विभागों के प्रोन्नति प्रस्तावों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामगढ़ के सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आज वार्षिक आषाढ़ी पूजा श्रद्धा और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। मंदिर न्यास समिति के प्रधान पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि योगिनी एकादशी पर होने वाली इस वार्षिक पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के जनबानी गांव में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर एक अवैध महुआ शराब भट्टी ध्वस्त कर दी। कार्रवाई के दौरान 800 किलोग्राम जावा महुआ और 30 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई। और खूंटी थाना क्षेत्र के घाघरा गांव स्थित तजना नदी किनारे आज एक युवती और एक युवक का शव मिला है। मृतकों की पहचान लोहरदगा जिले की नेहा कुमारी और अरुण कुमार राणा के रूप में की गई है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की सहायता से

0: मामले की जांच की जा रही है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीबाड़ी और हमारी दुनिया।

0: अन्न कर वृद्धि में देश कर समृद्धि।
1: कार्यक्रम सुनवाया सो भाई बहिन मन के सुषमा बहिन बटले जोहार और अरविंदा राउर के जोहार।
0: जोहार जोहार सुषमा बहिन और कार्यक्रम सुनवाया सो भाई बहिन मन के हमर बटले भी बहुत बहुत जोहार। सुषमा बहिन कैसन हाल समाचार?
1: सब नगदे है दा।
0: कैसन खेती बाड़ी कर तैयारी चलत है रोपा डोभा कर?
1: एकदम चले लायक है। ये तो हमरे कर का कहब साल भर कर खेती लगे तो तैयारी तो पहले से करे होवेला। साथे खन बरसात कर मौसम भी पहुंचा है और बरसात मन भी वैसे होवे लायक है तो हमरे किसान भाई बहन मन ले तो खुशी कर बात है। और देखो एखन जोर शोर से गाँव घर में
0: एकदम सही कहा थी। और बीड़ा मन कर ले है?
1: हाँ, कर ले
0: एकदम सही ताक के देखी। कारण है कि अखन जो बरखा हुआ थे सेकर से फायदा हमरे मन के उठाए चाहिए। अगर मैं लोग बीच में जिसन टलवासी कर रहे पानी के उसन अगर कोनो मौका लग जाते तो दिक्कत हुई जाए। इसलिए अखन जो पानी आवत है नी एक भरपूर हमरे मन के फायदा उठाए चाहिए और खेती बाड़ी में एकदम बढ़िया से जुट जाए चाहिए। और देखो सुषमा बहन ये तो कहली सुपर ट्रोली कि साल भर कर हमरे मन कर खेती है के तो हमरे मन अपन खाए जुगाड़ भी इकरे से करीला और बाच जाएला तो बेचबो करीला धान के हमरे मन। लेकिन इकर साथे साथे का है नी कि आज हमरे मन के कुछ ऐसा काम करे चाहिए जेकर से कुछ दो पैसा कर ज्यादा फायदा हमरे मन के होवे। तो कुछ व्यावसायिक खेती हमरे मन के देखे चाहिए?
1: एकदम देखे चाहिए। काले की हमरे मन खेती करवाया भाई बहन मन है की और हमरे मन ने सब चीज ले खेती पे निर्भर करेला। और ऐसा में हमरे के अपन फसल में कौन अनाज के लगाए है कैसन करे है और उकर का फायदा भेटाए ली मन कर ध्यान रखे भी हमरे के बहुत जरूरी है।
0: एकदम सही कहा थी रोरे। और देखो दोनों चीज है, पहले तो एकदम पाकिट में भी पैसा होवे के चाहिए और शरीर में भी रोर के जोरगरी होवे के चाहिए,
1: एकदम
0: बरियारी होवे के चाहिए। तो दोनों काम हो सकेला एक ठो काम से कि अगर हमरे मन मोटा अनाज कर अगर खेती करा थी तो पाकिट भी मजबूत रही और गतर काया भी मजबूत रही।
1: ये तो हमरे जैसन कि हमरे मन मोटा अनाज का उपज कराती तो हमरे के अपन पूंजी लगाए के दूसर जगह कीन के अपन शरीर के स्वस्थ करे कर दरकार नहीं पड़े। हमरे अपन घरे में उपजाल अनाज के खाए के और अपन शरीर के मजबूत बनाए सकेले।
0: हाँ हाँ। और संगे संगे का है कि जे मोट अनाज है नी ओकर आज देखो बाजार में बहुत ज्यादा मांग है। अब आदमी मन इकर फायदा जाने के शुरू कर दे है। अब देखो याद करू सुषमा बहन रोरे मन तो छोट रही हमीनो बहुत छोट रही पहले कर जमाना में हमरे मन कर बाप दादा मन खूब मोटा अनाज कर खेती करत रहे। मड़ुआ करत रहे तो बाजरा करत रहे मने जितना भी मूंग कहा थी रोरी तो दलहनी हो गलक जितना भी रोर कोदो हो गलक उकर बाद एक रंगेनी हो गलक ये सब कर बहुत ज्यादा खेती होत रहे पहले। अब कर मने बीच कर जे समय आए रहे सिकर में आदमी मन सोचत रहे कि यार ये के का करब तो धीरे धीरे मड़ुआ गोड़ा ये सब कर खेती धीरे धीरे कम होए शुरू हो गलक। और आदमी मन कर विचार पहले होत रहे नी कि यार ये तो गरीब का खाना है के कतना ये के उपजा आदमी मन पूछ तो नहीं रहे बाजारों में नहीं कोई पूछत रहे। लेकिन अब धीरे धीरे जब खास करके कोरोना अलग नी तो आदमी मन जान लें कि हमरे मन कर सेहत कैसे मजबूत रह सकेला तो हमरे मन

0: अपन जे रोग से लड़े कर क्षमता है से कि कैसे बरियारी कर सकेला हमरे बन तब जान ले मोट अनाज कर बारे में।
1: और इकर से भी होवेला अरविंदा कि देखो अनाज के खाए के आदमी के जे अपन शरीर में बीमारी होवेला ओकर वो बीमारी से लड़े कर भी क्षमता मिले और इकर से नाना बरन कर जे बीमारी सुने के में मिलेला वो भी पहले कर आदमी के देखे के लिए मिलत रहे कि एकदम होबे नहीं करत रहे
0: एकदम नहीं मजबूती रहे
1: एकदम मजबूती रहे। और देखा वो मन के कि कितने बुजुर्ग आदमी मर रहा है तो बिना उमन कर आंख में चश्मा रही नी उमन कर
0: का तो नहीं झड़त
1: तो रहे सब चीज का हब तो स्वस्थ रहे सब रहे पहले कर खा पिए के जे मोट अनाज में उकर पौष्टिकता जे रहे उमन कर से भरपूर भरल रहे और इमन से उमन के हर चीज में फायदा
0: होत रहे। अब देखो धीरे धीरे अब आदमी अब पुरना जे जमाना रहे से बटे घूरत है कहल जाए लनी कि माने समय अपने आप के दोहराए लनी माने इतिहास खुद के दोहराए ला तो हमरे मन भी अब धीरे धीरे पाछे बटे जाती एक दौर आवत रहे नी कि आदमी मन सोचत रहे कि अब हमरे मन पुरना दिन के याद नहीं करब लेकिन जब पहले कर आदमी बड़ा मजबूत रहत रहे तो हमरे मन भी अब पाछे देखे के लिए मजबूर हुआ थी तो अब धीरे धीरे मोट अनाज कर मांग बढ़त है जे मड़ुआ कर हमरे मन खेती नहीं करे खोजत रही आज देखो मड़ुआ आटा रोड के शहर इकारा में माने 60 से लेके 100 रुपया तक किलो में बेचा
1: था। हाँ, बेचा लगता
0: तो सोच लो कि मोटा अनाज कर कितना मांग है तरह तरह कर उत्पाद बने शुरू भेजा है। अब देखो रोड़े मड़ुआ करोर बिस्कुट बनत थे तो रोड मिठाई बनत थे लड्डू मन बनत थे तो आदमी जाना था धीरे धीरे कर फायदा के तो अब धीरे धीरे बाजार में मांग बढ़त थे तो हमरे मन के भी मोट अनाज कर खेती कर ले अब बगरा फायदा हाँ। है नहीं तो कैसन सुषमा बहिन बोलते बतियाते तो रहब लेकिन हाँ, अब हमरे मन के अपन कार्यक्रम बटे भी ध्यान देवे चाहिए
1: और हमरे मन चलो रेज रंग बटे बढ़ीला और नागपुरी लोकगीत सुनीला देवदास विश्वकर्मा और संगीमन कर गावल गीत।

0: बड़ा नगद गीत। और देखो सब किसान मन जब थाकल फेदाल अपन घर आवे ना नी, और जब ऐसा ऐसा गीत के सुने ना तो मन एकदम हरियर भेजा
1: हरियर भेजाएल और सब थकान के भुलाए जाए।
0: गीत गोविंद देखो ऐसा चीजें है सुषमा बहिन कि आदमी के एकदम नवा जोश से भर देवेला। और खास करके हमरे कर देखो गीत संगीत हमरे कर जितना भी झारखंड कर बोली भाषा है ना, हाँ। सब में मधुरता है, सब में कहल भी तो जाएला। यहाँ चले के नृत्य है तो बोले के बांसुरी कर धुन है। तो आगे का विचार है सुषमा बहिन?
1: विचार तो देखो हमरे मन जानकारी तो सब
0: जानबे करिला थोड़ा बहुत
1: मुदा हमरे के कोनो कोनो जानकारी के और भी जान बेच ले जाने कर दरकार।
0: हाँ, हाँ, एकदम एकदम सही कहते। देखो हमले खेती बाड़ी से जुड़ल ही और सब किसान मन नवा नवा कुछ न कुछ प्रयोग करते रहे ना। और देखो हमरे कर सीधे जुड़ाव अगर कहब नहीं तो माटी से होयला। हमरे मन अपन फसल के माटी में लगाईला, ओकर उपज बढ़िया होयला तो हमरे मन का पाकिट गरम होयला, मन हरियर होयला, घर परिवार बड़ा खुश रहे ना। तो माटी कर स्वास्थ्य बनाए के रखना बहुत जरूरी है। और देखो हमरे मन खाद नाना रकम कर डाली ला, नहीं रासायनिक खाद डाली ला तो जैविक खाद डाली ला, लेकिन बहुत ऐसा खाद है नहीं सुषमा बहिन। हाँ। हरियर भी खाद होयला साई तो रोरे मन कहियो लगात हम नहीं देखे।
1: हाँ देखो। हाँ, हाँ। देखिए हमरे खेती करी ला तो कखनो कखनो कर दरकार पड़े तो लगाएला।
0: तो हमरे मन के इकर बारे में जे किसान नहीं जाना है ना उमन के भी अगर जानकारी भेजाई तो बहुत बढ़िया है। हाँ। ताकि उमन के बढ़िया उपज भी मिले और उमन कर खेत कर जे माटी है उकर स्वास्थ्य भी बनल रही। नहीं
1: तो चलो हमरे मन जानकारी कर मिट्टी कर
0: जान हके हरी खाद एकदम।
1: विशेषज्ञ है डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह और इनकर से बातचीत कर हैं संजीव कुमार लाल।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे ताकि आपकी पैदावार अच्छी हो इसके लिए हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, गोबर खादों का हम प्रयोग करते हैं अपने खेतों में ताकि मिट्टी की पोषक तत्व बनी रहे। और यदि मिट्टी की पोषक तत्व स्वस्थ रहेगी, मृदा हमारा स्वस्थ रहेगा, तभी हम अच्छे तरीके से फसल की उम्र ले पाएंगे, अच्छे तरह से हम फसल को बढ़वार कर पाएंगे और बढ़िया मुनाफा कर पाएंगे। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि मिट्टी की जान है हरी खाद। हरी खाद के द्वारा भी हम मिट्टी की उर्वरक शक्ति को काफ़ी अच्छे तरीके से हम बढ़ा सकते हैं और बढ़िया फसल का हम चयन कर सकते हैं और बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। तो

0: हरी खाद हम अपने खेतों पर ही कैसे तैयार करें, क्या विधियां हैं और हरी खाद क्या है और हरी खाद की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है और कैसे हम हरी खाद अपने खेतों पर उगाएं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं हमारे साथ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, आप सहायक प्राध्यापक सहकनीय वैज्ञानिक हैं वर्षा कृषि विश्वविद्यालय रांची में। डॉक्टर साहब स्वागत है किसान वाणी कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, कहते हैं कि मिट्टी की जान हरी खाद है, हरी खाद की क्या उपयोगिता है और ये क्या है और मिट्टी के लिए क्यों जरूरी है?
1: देखिए ऐसा है कि आज का जो विषय है हरी खाद, ये बोलने में बड़ा छोटा शब्द है लेकिन हरी खाद वर्तमान समय की मांग है और हमारे देश की किसानों को यदि उनकी इनकम को बढ़ाना है और रसायन से मुक्त करना है तो इसके लिए हरी खाद का प्रयोग करना है। हरी खाद एक ऐसी खाद है जो किसी बाजार में नहीं मिलती है और न ही इसे किसी फैक्ट्री में बनाई जाती है। ये किसान के खेत में एक फसल उगाई जाती है जो दलहनी होती है और जिसे 40 से 45 दिन या 50 दिन के बाद उसी मिट्टी में दबा करके सड़ा करके खाद बना दी जाती है। और हरी खाद के बोलने का मतलब है कि जो हमारा मानसून का समय शुरू होता है उस समय दलहनी फसलों को लगाना है और उसी खेत में उसको मिट्टी में दबा देना है जिससे वो सड़ गल करके नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है और हरी खाद का काम करती है। इसमें हमें सावधानी ये रखना है कि वैसी फसलों का चयन करना है जो दलहनी हो, दूसरा वैसी फसल होनी चाहिए जिसकी बढ़वार ज़्यादा हो तथा वैसी फसल होनी चाहिए जिसकी तना शाखा या पत्ती की संख्या ज़्यादा हो तथा वैसी फसल होनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा गांठ बनाए और गांठ जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम या मिट्टी में नाइट्रोजन जमा करने का काम करता है। साथ ही ये फसल सूखा अवरोधी होना चाहिए ताकि यदि बारिश नहीं भी हो तो खेत में सूखे नहीं और उस स्थिति में भी अपने आप को खड़ा करके मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन बचाने का काम करे तथा एक कीट एवं बीमारी प्रतिरोधी भी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो हो ऐसे गुण होने चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे फसल को प्रभावित न करे या हानि नहीं पहुँचाए। इसके साथ ही हरी फसल जो दलहनी फसलें होती है इसकी बीज दर ज़्यादा होती है जिसके कारण ये क्या करते हैं कम से कम खरपतवार को जमने देते हैं या मिट्टी खाली नहीं होने के कारण या ढके होने के कारण वहाँ पे खरपतवार या हानिकारक जो होता है घास जर्मिनेट नहीं करते हैं, उगते नहीं हैं जिससे किसान भाइयों को आगे चल के खरपतवार से भी छुटकारा मिलता है।
0: जी अब हरी खाद का जब हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं और हरी खाद हम लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार इसके लिए हम फसल का चुनाव करें और बुआई का उपयुक्त समय कौन सा हो जाता है? डॉक्टर साहब
1: जैसा कि पहले भी हमने बताया कि हरी खाद का चयन करते समय मुख्यतः हमको ये ध्यान देना है कि यदि मेरा खेत वर्षा आधारित खेत है यानी कि हमेशा बरसात की खेती पर हम निर्भर करते हैं, बारिश पर निर्भर करते हैं, उस स्थिति में हमें जो है ढैंचा का प्रयोग करना है क्योंकि ढैंचा जो होता है बारिश सहन करने की क्षमता रखता है और साथ में ये हमारे झारखंड राज्य के लिए सबसे अच्छी हरी खाद मानी जाती है। इसके अलावा यदि ढैंचा नहीं करना है तो वहाँ पर मूंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, उड़द का प्रयोग कर सकते हैं या वहाँ पे जो होता है लोबिया का भी फसल का चयन कर सकते हैं। और जहाँ लगाने की बात है तो हरी खाद लगाने का सबसे उपयुक्त समय होता है अप्रैल का महीना और मई का महीना, या ये भी कह सकते हैं कि यदि अप्रैल में किसी कारणवश नमी खेत में नहीं थी तो नहीं लगा पाए हैं हरी खाद तो वहाँ पर आप मई में या मानसून आने के बाद जैसी मानसून आता है उस समय आप हरी खाद को लगा सकते हैं। हरी खाद यानी कि ढैंचा को खेत में आप लगा सकते हैं। इसके लिए क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले जो आपका खेत में नमी होना चाहिए, नमी यदि नहीं है सिंचाई की व्यवस्था है तो आप खेत को पटवन कर लें। पटवन करने के बाद उसमें क्या करना है कि भूमि को यानी मिट्टी को कम से कम 2 से 3 बार जुताई कर लें। जुताई करने के बाद उसमें जो है मिट्टी पट्टा लगा के बराबर कर लें और जो ढैंचा या सनई का जो बीज है उसको जो है खेत में मिला करके कवर्ड कर दें। उसके बाद जमने के बाद इसको जो है आगे हरी खाद के लिए प्रोसेस करनी होती है।
0: जी डॉक्टर साहब, हरी खाद का हमने फसलों का चयन कर लिया, लगा लिया और जब हम इसको खेत में दें तो कौन कौन सी विधियाँ हैं? और डॉक्टर साहब जो सबसे बड़ी बात है आपसे जानना

0: चाहते हैं किसानों के लिए कि हरी खाद से मिट्टी को किस प्रकार फायदा पहुंचता है।
1: देखिए, हरी खाद मिट्टी में देने की दो विधियां हैं। एक विधि होता है कि जिस खेत में हमको हरी खाद का प्रयोग करना है उसमें मूंग, ढैंचा, बरसीम, लोबिया के फसल को लगा देना है। लगाने के लिए क्या करना है कि जो हमारा खेत तैयार हो गया, तैयार होने के बाद जो होता है 60 से 80 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना है। उसके बाद वो जब जम जाएगा तो वहाँ पे 50 से 60 दिन में उस खड़ी फसल को रोटावेटर लगा करके या ट्रैक्टर लगा के उसी खेत में दबा देना है। दबाने के बाद उसमें मट्टी जब ऊपर नीचे हो जाएगा या मट्टी के साथ दब जाएगा, वहाँ पे बरसात हुआ पानी या सिंचाई के द्वारा पानी भर देना है। भरने के बाद वो जो होता है 7 से 10 दिन में सड़ना शुरू हो जाएगा और 20 दिन में पूरा सड़ करके खाद बन जाता है। और खाद जो बनेगा वो प्रकृति खाद है जिसमें किसी तरह का रसायन का अवशेषण नहीं है या रसायन मिक्सचर नहीं है। और वहाँ पे क्या होता है कि जब वो पूर्ण रूप से सड़ जाएगा तो कम से कम जो होता है कि 60 से 70 टन के बराबर जो होता है डिकम्पोज करने का काम, या 60 से 70 टन जो होता है जीवांश की मात्रा को बढ़ाता है। यानी कि कह सकते हैं कि रसायन की भाषा में कम से कम 5 से 7 बुरा यूरिया की बचत होती है एक हेक्टेयर में। इसके अलावा दूसरी विधि जो है कि यदि हमारा उस खेत में हरी खाद नहीं लगाना है तो जो हमारे हरी खाद के फसल होते हैं, जैसे आप बताए थे मूंग या लोबिया या सनई बताए, उसकी पत्ती को या उसके जो अवशेष हैं दूसरे खेत से ला करके वहाँ पे ढक देना है और मिट्टी के साथ पलट करके उस खेत में जो है इनकॉर्पोरेट करना है या सड़ा गला देना है।
0: जी, तो इसके बहुत आर्थिक लाभ भी है, आपको जो रासायनिक खाद है उसके प्रयोग से भी बच जाते हैं और जो अतिरिक्त रूप से जो आपको आर्थिक भार पड़ता है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। अपने खेतों में ही हरी खाद हम बनवा सकते हैं और खेतों में ही उसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई प्रायः रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं और जब रासायनिक खादों का हम उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसमें कमी आने लगती है।
1: बिल्कुल
0: जी, तो हमारे साथियों को क्या कहेंगे साहब कि हरी खाद का उपयोग करें, मिट्टी को सेहतमंद बनाएं, लागत घटाएं और अपना लाभ बढ़ाइए।
1: किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि हरी खाद एक प्राकृतिक खाद है, तो प्रकृति खाद होने के कारण इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला होता है कि जो हम खाद को मिट्टी में डाल रहे हैं वो सड़ेगा गलेगा तो वहाँ जीवांश की मात्रा बढ़ाएगा, यानी कार्बन की मात्रा बढ़ेगा। जब कार्बन की मात्रा बढ़ेगा उस खेत की उपज क्षमता बढ़ेगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगा, उसमें जो फसल लगाएंगे उसकी क्वालिटी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा उसमें किसी तरह का जो है खरपतवार का प्रकोप नहीं होगा। इसके अलावा मिट्टी की जब स्वास्थ्य सुधर जाएगी तो किसान की स्थिति भी सुधरेगी, क्योंकि मिट्टी से ही जो फसल का उत्पादन बढ़ता है। इसलिए हमारा सुझाव होगा किसान भाइयों, आप अपने खेत में हरी खाद का प्रयोग जरूर करें, इससे फायदे ही फायदे हैं, घाटा बहुत कम है।
0: जी किसान साथियों, हरी खाद के बहुत सारे फायदे हैं और हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि मिट्टी की जान है हरी खाद और मिट्टी को ये सेहतमंद बनाता है। आप रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी आते हैं और जो पैदावार होती है उसका भी उसमें प्रभाव दिखता है। और आजकल आप जान रहे हैं बीमारियाँ कितनी बढ़ रही हैं रासायनिक खादों का, हम रासायनिक दवाओं का हम उपयोग करते हैं और स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। तो अपने खेतों में ही हरी खाद आप लगाएं। कौन से फसलों का चयन करना है डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया, भूमि की तैयारी कर लीजिए और कम खर्च में आपको वहीं पर एक खाद मिल जाता है और आपको आर्थिक लाभ भी मिलती है, फसल भी बढ़िया आप लगाते हैं और खाद से, बाहर की खाद से आपसे उससे आपका बचाव हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि हरी खाद कैसे लगाएं और कैसे अपने खेतों में इसका उपयोग करें। आज आप इस कार्यक्रम में आप बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक वर्षा कृषि विश्वविद्यालय, किसानों से आप रूबरू हैं, आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: बहुत बढ़िया जानकारी दिलें कि माटी कर जान है हरा खाद और इनके बतात रहे डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह और इनकर से बतियात रहे
3: संजीव कुमार लाल।
2: तो जी बेरा बाचल है सुषमा बहन, हाँ, में कुछ गीत गोविंद
3: सुनाब और पंच प्रज्ञा लोकगीत सुनाब जेके गा है सुभाष कोयरी और साथी।

0: बड़ा मधुर गीत रहे और हमरे मन सुनलेखन पर पंच परगनिया लोकगीत जिके गायर हैं सुभाष कोइरी और संगीवन
1: और सुषमा बहिन देखो इगरे संगे खेती बारी कर बेरा सिरालक लेकिन बेरा हो गलक हमारी दुनिया और हाँ। युवा सभा कर तो ला एक फिर से सबका स्वागत करी ला
0: स्वागत करो
1: हाँ और देखो आज कर दिन में सुषमा बहिन हमरे मन युवा सभा करी ला और जितना भी नौजवान भाई बहिन मन है वो मन ले हमरे मन खास कार्यक्रम करी ला और एखन देखब कि सब बटे नजर उठाई के देखब नी कोनवे ठाव में हमरे कर युवा जे भाई बहिन मन है वो मन नजर आवे ना चाहे वो नौकरी चाकरी कर बात कहलो चाहे खेल कूद कर बात कहलो चाहे कोनवे ठी ना अच्छा लगे ला जब नौजवान भाई बहिन मन के देखी ला तो
0: एकदम और साथे में एखन कहब तो सब युवा मने कहीं ना कहीं अपन तौर तरीका से रोजगार ले
1: आगे बढ़ते जाते हैं। एकदम एकदम सही कहती बात की तो अब देखो पहले कर दौर रहे नहीं तो आदमी मन सोचत रहे कि पढ़ लिख के हमके खाली नौकरी करना है ये सोचत रहे लेकिन अब कर जो युवा है सिकर में बहुत कुछ बदलाव आ जाए है वो सोचेला कि पढ़ लिख के नौकरी मिल गलक तो बहुत बढ़िया और नहीं मिलक ते में हम अपन हाथ के जगरनाथ बना के रह है नी मजबूती राखब कोनो चीज के करके हम अपन दो पैसा कर आमदनी कर लो बल्कि दो पैसा दोसर के मन आमदनी करवात भी है तो नया सोच अच्छा लगेला सुषमा भाई
0: हाँ और देखो ऐसा सोच रख के आदमी मन बहुत आगे बढ़े लायक है और ये सोच रखे भी सबके बहुत जरूरी
1: है और

0: स्वरोजगार अपनाना बहुत जरूरी है सुषमा बहन, कारण है कि हमरे कर देश के विकसित देश बनाए के खाली एक आदमी कर कही देवल से विकसित देश नहीं बनी, एक एक आदमी के एक एक गोड़ के आगे बढ़ाए पड़ी
1: जरूर,
0: उकर ले सरकार भी बढ़ाई तो आदमी के भी बढ़ाए पड़ी।
1: हाँ देखो सरकार के साथे साथे ये है कि हमरे हमरे चाहे हमरे कर युवा साथी मने संगे सब बढ़वाए और कदम से कदम मिलाए के सबकर साथ देवाए तो जरूर एक दिन आगे बढ़वाए साथे देश के भी आगे
0: बढ़ावा। देखो मैराथन खेल कर बारे में रोरे भी सुन हुआ कि हुआ एक ठो नहीं भागे ला खिलाड़ी, उकर संगे संगे बहुत खिलाड़ी मन भागे ना तब जाए के मैराथन जीते ना, तो हमरे मन के मैराथन दौड़ दौड़े के है एकदम सरपट भागे के ना खेल। सरपट भागब तो हो सकेला कोनो ठीना ठेसाई के गिर जाए, तो भाई अपन से एकदम आगे बढ़े के स्वरोजगार हमरे मन के अपनाए के और नवा नवा तकनीक के अपनाए के, जिसे नवा तकनीक के देखिला कि आज कर नौजवान मन में कितना बढ़िया हम देखी ला कौन चीज के, जैसे बरसात कर पानी के हम देखी ला नहीं कि एक ठो हम देख रहे घर में कि छत में बहुत पानी आदमी का डबल जात रहे तो बरसात में जने तने पानी बोहा थे भागत थे नदी नाला में चल जाते हमरे कर भुया भीतरे कर पानी के रोज दिन हमरे में चूसते दाती पानी रिचार्ज होते न खे, तो देख ली कि पाइप कर जरिए वो बढ़िया एकदम पानी के भुइया भीतरे भेजा थे।
1: और इकर से ही है कि हमरे कर जे भुइया भीतरे कर पानी है उकर स्रोत बनल रहे
0: बनल रहे,
1: और जे जाने ताने पानी भी ने उन्हें बोहा चला थे वो परेशानी से भी आदमी मन बच जाते
0: एकदम एकदम। और खास करके हमरे मन ले बहुत जरूरी है सुषमा बहन कि हमरे मन जे जगह में रहिला खास करके छोटा नागपुर में ती पठारी क्षेत्र है और पानी कर बहुत ज्यादा कटमटी हमरे मन ठीना है, किसान मन कह धाम तो कटमटी कर कारण खेती बाड़ी बढ़िया से नहीं करे पा रहे ना, तो हमरे मन के जे भूमिगत जल है सीके हमरे मन के बचाना बहुत जरूरी है और उकर ले जरूरी है कि सोखता बनाए।
1: हाँ
0: सोखता बनाओ तो बढ़िया से बनाओ
1: जरूर। और देखो सोखता बनाए से ही भी होवेला कि हमरे मन जे एखन कर दौर में है कि गांव चाहे शहर हो सब जगह बिल्डिंग में बिल्डिंग बनते जाते और उकर चलते बढ़िया से कन्हो इंदिरा पोखरा नहीं भेटायला और पानी हमरे कर जाने तने नाली कर माध्यम से बाहरे चल जाते उसर नहीं होवी और सोखता अपने मन सोखता गढ़ा बना थी तो सो पानी सोखता में चल जाते जगह से भुया भितरे कर नमी और भुया भितरे
0: पानी जमा हुआ थे। और देखब नहीं अगर उड़े अपन घर में करके देखब एक साल और बरसात कर पानी के अगर भुइया भीतरे अगर उड़े भेजत थी तो देखब कि जे कुइया रोड सूख जात रहे गर्मी शुरू होवे से पहले सूखत रहे से पानी एकदम हरियर हो जाते और कुआं समझो कि जिंदा भे जाते। तो हमरे मन के जरूर अपनाए के चाहिए और इकर से फायदा हमरे कर खाली हमरे मन के नखे हमरे कर किसान भाई मन के मन मने फायदा हुई आवे वाला पीढ़ी के भी फायदा
1: जरूर हुई काले के हमरे कर करे देखवाए और हमरे जे उपयोग करा थी ओ मन कर करे देख के हमरे छोट छुआ मन भी सीखवाए तो जरूर है कि वो मने आवे वाला पीढ़ी में भी अपन पीढ़ी के सीखा साथ अपने मन सीख के चीज के आगे बढ़ा
0: एकदम एकदम। तो सुषमा बहन हमरे मन नौजवान ही हमरे कर सोच विचार नवा वाला सोच हुए चाहिए हमरे कर, तो ये सब जे भी हमरे मन बात हमरे मन कर मगज में आवे लानी से के धरातल में उतराए कर दरकार है, स्वरोजगार अपनाओ नवा नवा तकनीक के अपनाओ, देखिए हम देखो धीरे धीरे हमरे कर गाँव हमरे कर समाज हमरे कर जिला हमरे कर राज हमरे कर देश एकदम आगे बढ़ते
1: जाते। और इकर में है कि सरकार भी हमरे कर साथ देवे के लायक है और इकर हमरे मन हमरे मन तब सरकार से भरपूर अपन फायदा उठाए कर कोशिश कर
0: एकदम एकदम योजना के जाइन के है नहीं। और सुषमा बहन देखो बहुत दिन बाद रोज से भेंट होलक नहीं तो आई जे लगातार कोनो ना कोनो गोईठ हमरे कर बढ़ते जाते
1: और बातें नहीं सिराते
0: लेकिन अपन कार्यक्रम बटे हमरे के देखना जरूरी है
1: जरूरी है। तो चलो यह जानकारी के साथ है अब हमरे मन सुनेला नागपुरी लोकगीत जेके गा है बसीर अंसारी और साथी बन

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: सुषमा बहन कहाँ भेदाल हिरो रे, अरे मोबाइल में घुसल हिरो रे।
5: नहीं, नहीं, ऐसा बात।
4: अरे बाबा, अरे बाबा।

0: देखब नहीं कि आज तो जमाना इसने है जेके देखब से मोबाइले में घुसल है, और घर में अगर चार आदमी है नी सुषमा बहन तो चारों आदमी के देखब खाली मोबाइल में घुसल है। आज कर समय गजब हो जाए
1: एकदम। और का कहब केकरो से ना बेरा देवे क्या है आदमी मने ना छुआ पुता ले चाहे अपन संगी साथी ले सब जेके देखब के सब मोबाइले में भेदाल रहे।
0: और कहे दहा तो ऐसा होला नी कि एक ही घर में ही लेकिन गोठियाले एक सप्ताह हो जाए एक हफ्ता हो जाएला बातें नहीं हुआ थे तो आदमी का कहे ना कि अच्छा तोर इकर में सोशल मीडिया में कई ठो तोर दोस्त मन है तो कह कि 1,000 और भाई जे तो तोर एक दू ठो दोस्त है से कर तो गोठियात न खीस है तो ऐसा मोबाइल हो जाए है। तो देखो मोबाइल हमारे मन ले बहुत फायदा भी पहुँचाला सुषमा बहन तो हमारे मन के नुकसान भी पहुँचाते जाते।
1: हाँ उके मने हमरे घर जैसन अपन उपयोग में लाना वो उकर में निर्भर करेला।
0: एकदम बात सही है। तो कोई भी चीज देखो कहल भी जाएला कि विज्ञान हमरे मन ले वरदान भी है तो नुकसान भी पहुंचाएला नी तो उकर जैसन हमरे मन इस्तेमाल करू बेस में करब तो बेस भी है बेकार में करब तो बेकार भी है। तो कैसन इकरे बारे में कुछ विशेष जानकारी हो
1: जानकारी करब जी और मने नागपुरी मैं जानकारी करब इके जेके आज कर प्रदेश में मोबाइल फोन कर प्रभाव एकर जानकारी दे हैं निर्मला साहू।
2: इंसान के जीव जंतु कर श्रेणी में सबसे ऊपरे राखल जाए है इहेले कि इंसान में सोचे विचारे बोले बतियाए और सब समस्या ऊपरे सोचे कुछ करे ताकत है क्षमता है। दिमाग का उपयोग करते करते विज्ञान कर प्रगति संगे आज कर युग पहले से कतना बदल गेलक ये सब कोई जानत है। आज मशीनी युग में हमरे एकर अधीन हो जाए शहर कहब कि गांव सब जगन एके बात है। यदि 1 घंटा बिजली चल जाए तो आदमी सोचे नहीं पारेला कि काम का तैर होवे पानी कर मोटर गीजर फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन मिक्सी आयरन और बड़ थाव मन में लिफ्ट और इकर अलावे जतना चीज बिजली से चार्ज करल जाएला उ सब कर खातिर बिजली चाहिए। और सबले ऊपरे आए जाए मोबाइल जेके चार्ज करे ले सबसे पहले आदमी अकबकाएना काले की आज कर समय में बगरा से बगरा काम मोबाइले से होवेला। आज कर पीढ़ी तो ई जाने नहीं पारी कि पहले कर आदमी का तेर जियत रहे और का तेर काम करत रहे अपन जिंदगी चलाए खातिर। मोबाइल में एक से एक ऐप मन देवल है जेकर से घर बैठले नाना बरन कर काम मिनट में हुआ थे। आज कर युग में मोबाइल कर बिना कोनो काम नहीं हुए ऐसा बुझायला एगो संचार कर माध्यम भर ना लगे बल्कि शिक्षा व्यापार मनोरंजन बैंकिंग और सामाजिक संपर्क कर मुख्य साधन बन जाए। मोबाइल फोन कर मदद से दुनिया कर कोनवे ठाव में तुरथे जुड़ल जा सकेला और इकरे चलते कहाँ का हुआ थे एकर जानकारी तुरथे भेटायला कहू की जानकारी कर आदान प्रदान में क्रांति आ जाए। एकर चलते जिंदगी आसान हो जाए सुविधा नाना बरन कर भेटात है। इंटरनेट कर चलते कोनवे विषय कर जानकारी तुरथे भेटायला पढ़वैया छुआ मन खातिर भी मोबाइल एगो सशक्त माध्यम बन जाए। ऑनलाइन क्लास कहू अध्ययन सामग्री जुटाए है कि तो शोध कर काम में सहूलियत खोजेक है ये सबे मोबाइल कर माध्यम से भेटात है। कई किस्म कर काम स्मार्टफोन एप्लीकेशन कर चलते घर बैठले हुआ थे इकर से समय कर बचत भी हुआ थे परेशानी भी कम और भागे दौड़े भी नहीं पड़त है। कई किस्म कर व्यवसाय भी संभव है कतना किस्म कर शिक्षा जैसे खाना बनाए सिलाई कढ़ाई चित्रांकन क्राफ्ट रोजगार कर नाना बरन कर ज्ञान सब अपने ही सीखल जा सकेला। ज्ञानवर्धक बात देश विदेश कर रीति रिवाज खान पान काम धंधा कर जानकारी भी सेठिए भेटायला। अब बताओ कि सब काम जब मोबाइल कर माध्यम से हुई तो आदमी दिन सगर उकरे में नहीं लागल रहे नौकरी करवैया मन के लैपटॉप और मोबाइल धरेक पड़ेला। अब ये सब कर दुष्परिणाम ई हुआ थे कि एगो आदमी दूसर से दूर होते जाते सामाजिक दूरी बनते जाते एहो देखल जाते कि एक ही घर में रह के आदमी फोन से बतियात हैं चाहे तो मैसेज भेज के काम चलाते हैं। कतने किस्म कर शारीरिक और मानसिक बीमारी हुए लाइग है कतने छुआ मन पढ़ाई कर बहना मोबाइल में दूसर दूसर चीज में बाझल रहना सामान कर खरीदारी कई किस्म कर गेम चाहे वीडियो मन के देखत रहे।

0: के ना रोकल जाए तो पढ़ाई, व्यवहार और भविष्य में स्वास्थ्य उपरे इकर प्रभाव पड़ी। मोबाइल कर जे स्क्रीन है उकर में तेज रोशनी हुएला और इकर आँख उपरे असर हुएला, जेकर से आँख में दर्द, पानी आवेक लागेला और नजर भी कमजोर हुएक लागेला। ढेर घड़ी एक ठाव में बैठल से गर्दन, पीठ, रीढ़ कर हड्डी में दबाव पड़ेला और उकर चलते दर्द हुएला। एके जगन बैठल रहल से चलना फिरना खेलना कम हुएला तो उकर चलते मोटापा, रोग रोधक क्षमता जैसन समस्या हुएक लागेला। कतने धाव अपन काम में बाझल माए बाप छोट छुआ मन के मोबाइल धराए देवेना कोनो गेम चाहे कार्टून मन देखेले, जेकर से उमन तंग ना करें चाहे ना कांदे। बाद में छुआ मन के नींद कर कमी, ध्यान कर कमी, दिमागी विकास में कमी जैसन समस्या भी आवेक लागेला। एहो देखल जाते कि 2-3 साल कर छुआ मन भाषा सीखे नि पारत है, सोचे समझे ताकत घटत है। यदि लत लग जाते तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, मोबाइल नहीं भेटाले बेचैनी ऐसा समस्या भी आवत है। गेम, वीडियो चाहे सोशल मीडिया में फंसल छुआ मन धीरे धीरे किताब और अपन दोसर रुचि के भुलाए जाते हैं और उकर चलते पढ़ाई भी खराब होते जाते। मोबाइल में डूबल रहले छुआ मन कहब कि तो बड़ मन सबे एक दूसर से बातचीत कम करत हैं, आपस कर बात व्यवहार छूटते जाते, केकर से कैसे बतियाएक है एहो भुलाए जाते हैं। बाहरे खेले कूदे कम होल से संगे मिलजुल के रहेक नहीं जानत हैं, एकले रहेक आदत हो जाते और इकर चलते सामाजिक दूरी बनते जाते। कल्पना कर दुनिया में रहल से असली जिंदगी कर समस्या के निपटाएक नहीं पारत हैं, उकर से समझौता करेक नहीं पारत हैं, दूसर के सुख दुख के जानेक नहीं पारत हैं। तो इस समस्या मन से बाँचे खातिर उपाय तो निकलाहेक हुए। 12-13 साल से कम उम्र कर छुआ मन के अपन निजी स्मार्टफोन ना देवल जाए। कुछ तो सीखेक है तो समय सीमा निर्धारित करल जाए, मतलब कि कुछ समय खातिर देवल जाए, सुतेक से 1-2 घंटा पहले तो देहेक नखे। घर में नियम बनेक चाही कि कुछ समय बाहरे खेलेक जाएक है, आपस में बतियाएक है, किताब मन के पढ़ेक है। इकर ले बड़ मन के भी अपन आदत के सुधराएक हुई। अपने मोबाइल में लागल रहबें और छुआ मन के रोकबें तो इकर असर दोहरा खराब होएला। फिर तब लुक छिप के खराब रास्ता धरवैया मन बढ़ते जाएना। कोरोना काल कर बादे से भारी परिवर्तन होलक है, जबकि ऑफिस कर काम लैपटॉप मोबाइल से घरे में होएक लागलक। छुआ तो यह देखत है कि सब अपन अपन काम में लागल हैं, ई पता नहीं लागत है कि का करत हैं। यह जरूरी है ईसन उमन बुझत हैं। छोट छुआ मन के चुप कराए के ले चाहे खाना खियाए के ले मोबाइल के धरुआ देवेना। उकर से बढ़िया कहानी बताएक है, दिमागी खेल कर सामान देवेक है, चित्रकारी कलाकारी सिखाएक है और मानसिक विकास खातिर जोन खिलौना मन भेटाएला उ सबके देवेक है। इकर अलावे भी समस्या कतने हैं, साइबर अपराध, धोखाधड़ी कम नहीं देखल जाते। सोशल मीडिया से दोस्ती करेक, शादी ब्याह करेक और ई समस्या कर चलते ठकाएक सब परेशानी देखल जाते। संगे ई कचरा भी पसरत है, बेसी उत्पादन कर चलते पर्यावरण प्रदूषण भी पसरत है। गाड़ी मन चलाएक बेरा ध्यान बटाल से दुर्घटना भी होत है। नाना बरन कर समस्या है जेके जानेक चाही, उकर निदान भी करेक चाही। मोबाइल जरूर एगो शक्तिशाली उपकरण है जेकि जिंदगी के सेवा बनाए दे है, मुदा बेसी उपयोग एगो चुनौती भी है। दरकार है सही इस्तेमाल करेक, संतुलित उपयोग करेक, जेकर से इकर नकारात्मक प्रभाव जिंदगी में ना पड़े। डिजिटल साक्षरता जरूरी तो है, काले की जानकारी कर ई भंडार है, कई किस्म से आगे बढ़े एक साधन है। यदि ई देखब कि मोबाइल कर का फायदा है और का नुकसान है, एहो ज्ञान तो मोबाइले से भेटात है, तो इकर से भागल तो नहीं जा सकेला। ध्यान एह देवेक है अति सर्वत्र वर्जित, अत्यधिक उपयोग हानिकारक।
1: बड़ा नगद बात की यार, एकदम फोड़ के बता लें कि देखो भाई मोबाइल हमरे मन ले कितना नुकसान दे है, फायदा तो

0: है ऐसे देखो कि हाथ में गोटा संसार है रोर नहीं, पूरा दुनिया का खबर और हाथ में है, तो
1: जरूर।
0: बैंक है और हाथे में है, हरा सारा चीज रोर हाथ में है, लेकिन भाई अपन हाथ के बगड़ाई के नखे अपन हाथ के मजबूत
1: मजबूत
0: करे
1: करे
0: है,
1: थे
0: तो मोबाइल कर सही से इस्तेमाल करे है, दुरुपयोग करे के नखे।
1: जरूर।
0: बढ़िया जानकारी हमारे मन के दिले।
1: हाँ, और एकन हमरे मन जानकारी करत रही आज कर प्रदेश में मोबाइल फोन कर प्रभाव, एके जानकारी देवत रहे निर्मला साहू।
0: एकदम भाई, तो आज कर बेरा में मोबाइल कर सीमित और उपयोगी हमरे मन कर इस्तेमाल करे के चाहिए। और सुषमा बहिन, हम तो सब नौजवान भाई बहिन मन के कहब कि देखो सबके भगवान 24 घंटा दे है, यह 24 घंटा में कोई काम करके देश का राष्ट्रपति बन जाते, तो
1: हाँ
0: यह काम करके कोई गलत काम करे के लायक है, तो
1: जरूर
0: यह समय हमरे मन के मिल है, अपन सही समय कर सदुपयोग हमरे मन के करे के है।
1: हाँ। और साथ साथ यही समय से समय निकला कि अपन घर परिवार ले भी समय देवे के है।
0: हाँ एकदम जरूरी है भाई, हमरे मन कर घर में बूढ़ा बुजुर्ग छुआ मन सब कोई रहे ना, तो सब कर ख्याल रखे है, बल्कि हम तो कहब कि धीरे धीरे छोड़े है, अब तो आदत बन जाए
1: हाँ,
0: आदमी के, तो
1: आज के
0: कोनो
1: नहीं
0: एक
1: छोड़
0: दिन में का करे है नहीं कि मोबाइल के किनारे रख दो और सब घर या मिल के खाली गोठियाओ है नहीं,
1: ऐसा
0: तो
1: करे भी संभावना के।
0: हाँ लेकिन धीरे धीरे कौन वे चीज के
1: हाँ
0: शुरुआत कर ले होला सुषमा बहन। अब
1: जरूर।
0: देखो हमरे मन कर विदा लेवे कर बेरा हुई जात है,
1: हाँ,
0: सब भाई बहन मन से हमरे मन विदा लेव, लेकिन ऊकर से पहले बता थी
1: ये कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण।
0: आप चले के चाहिए सुषमा बहन,
1: एकदम
0: लगे
1: चले
0: तब
1: चाहिए।
0: जोहार।
1: जुहार।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी और हमारी दुनिया मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दौरान झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर हुआ मंथन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांग्रेस ने अभियान के लिए 15 दिन का मांगा अतिरिक्त समय। कोल्हान दौरे पर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रांची में एसीबी ने म्यूटेशन की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में बुढ़मो के अंचल अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक सहित 3 को किया गिरफ्तार। और जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की अंडर 18 बालक टीम पहुंची हैदराबाद। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दूसरे दिन झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा हुई। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार निवेशक अनुकूल वातावरण, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और कुशल मानव संसाधन के माध्यम से औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार ने पर्यटन नीति 2026 और होमस्टे नीति के माध्यम से धार्मिक, इको, साहसिक और जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना प्रस्तुत की। उन्होंने निवेशकों से झारखंड के पर्यटन क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए राज्य को पूर्वी भारत का प्रमुख पर्यटन और रोजगार सृजन केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए2 की संयुक्त बैठक आयोजित करने को कहा। उन्होंने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जल्द भरकर जमा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति पर चिंता जताई है। पार्टी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय देने की मांग की है।

0: रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों के विरुद्ध निलंबन सहित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन में तेजी लाने तथा 14 जुलाई को सभी बूथों पर बीएलओ बीएलए2 बैठक और चुनाव पाठशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि समीक्षा के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान तेज करने, सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
1: डीजी मैडम की अध्यक्षता में आज सभी जिले का जो परफॉर्मेंस है क्राइम और नक्सल सिनेरियो पे, उसपे विविध रूप से चर्चा की गई और जो नक्सल अभियान तथा आने वाले फेस्टिवल्स और क्राइम रिलेटेड जो सिनेरियो है उसको लेकर के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। और विगत कुछ महीनों में काफी सारे ऑपरेशन उन लोगों ने यहाँ पे किया है जिसके वजह से नक्सल का स्ट्रेंथ अभी काफी कम हो गया है और आने वाले समय में जो बचे हुए ग्रुप्स के ऊपर हम लोगों की तरफ से प्रभावी कार्रवाई की जाए।
0: बोकारो जिले में नष्ट की जाने वाली करीब 1500 पेटी एक्सपायर्ड बियर को अवैध रूप से बाजार में बेचे जाने के मामले में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि विभाग ने डिपो मैनेजर और क्लर्क को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
2: जितने संबंधित पदाधिकारी या कर्मी हैं, उन सबको सौकौज पूछा गया है और सौकौज पूछने के उपरांत अगर उनका संतोषजनक जवाब नहीं पाया गया तो उस पर अग्रतर कार्रवाई होगी। अभी देखते चलते आगे आगे और भी कार्रवाई होगी। आप आश्वस्त रहें, विभाग गंभीर है और गंभीरता के साथ दोषियों पर कार्रवाई करेगी।
0: धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में 15 वर्ष बाद अदालत ने पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक सहित 30 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी दोषियों को 3-3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2011 में बीसीसीएल आवासों से अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी रांची की टीम ने बुढ़मू अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा, राजस्व उप निरीक्षक राजेश किशोर रवि और उनके भाई गौतम किशोर रवि को म्यूटेशन की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। परिवादी सुबोध कुमार ने एसीबी से रिश्वत लिए जाने की शिकायत की थी। जांच में यह मामला सही पाया गया। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ताराटांड थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि आरोपी कस्टमर सपोर्ट के नाम पर और एपीके फाइल भेजकर लोगों से ठगी करते थे।
3: साइबर क्रिमिनल सेट टीम है और इसको लेकर के टीम बनाया गया था और उस टीम ने छापामारी की और उसमें उन 5 लोग थे। लोग के पास से 10 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, 8 लैपटॉप और 4 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। कई एपीके फाइल भेज रखे हैं, इनके द्वारा लोगों से साइबर

0: आरोपी राहुल दुबे ने आज बिष्टुपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है।
1: पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, इनका जो एक मिलजुल के सहयोगपूर्ण कार्य करना, स्पीडी ट्रायल करना और उनके माध्यम से उन लोगों पर इतना दबाव बन गया है कि वो अब ये प्रयास करते हैं कि वो या तो यहाँ से चले जाना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से संदेश है सभी लोगों को कि अपराध से दूर रहें। अभी तक जो घटनाएं हो गई है उनमें तो हम जरूर पकड़ेंगे लोगों को और सजा दिलवाएंगे।
0: गिरिडीह की विशेष एनडीपीएस अदालत ने वर्ष 2010 में दर्ज अवैध अफीम की खेती और तस्करी से जुड़े मामले में 27 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। यह मामला लुकैया नयनपुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था, जिसमें 29 लोगों पर अवैध रूप से अफीम की खेती और कारोबार करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध नहीं कर सका। रामगढ़ के सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आज वार्षिक आषाढ़ी पूजा श्रद्धा और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर मां को 56 प्रकार के व्यंजन और ऋतु फल अर्पित कर राज्य तथा देश की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की गई। मंदिर न्यास समिति के प्रधान पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि योगिनी एकादशी पर होने वाले इस वार्षिक पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है।
2: आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है, बहुत ही तिथि महत्वपूर्ण है और गर्मी का समय खत्म हो गया, बरसात ऋतु चालू हो चुका है ताकि आसपास क्षेत्र में अच्छी से फसल हो, खेती हो, भरपूर रहे, आनंद रहे। और ये तो जागृत देवी है कि माँ हर मनोकामना भक्त को पूरा करती है।
0: झारखंड की अंडर 18 बालक रग्बी टीम जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गई है। यह प्रतियोगिता गच्ची बावली स्टेडियम में आयोजित हो रही है। टीम की कप्तानी अजीत नाग कर रहे हैं, जबकि सालमन भेंगरा कोच और किशन उराव टीम मैनेजर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दौरान झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर हुआ मंथन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांग्रेस ने अभियान के लिए 15 दिनों का मांगा अतिरिक्त समय। कोल्हान दौरे पर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रांची में एसीबी ने म्यूटेशन की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में बुढ़मो के अंचल अधिकारी, राजस्व उपनिरीक्षक सहित 3 को किया गिरफ्तार। और जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की अंडर 18 बालक टीम पहुंची हैदराबाद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: गिरिडीह जिले में SIR का काम तेजी से चल रहा है। गिरिडीह DC रामनिवास यादव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद बताया कि 60% फॉर्म वितरित कर दिया गया है और BLO घर घर जाकर लोगों को फॉर्म पहुंचा रहे हैं। DC ने गांडे क्षेत्र के कई बूथों पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उसका निदान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ धरातल पर दिखने लगा है। गरीब लोग पक्का मकान पाकर बेहद खुश हैं।
2: परेशानी था, अब अपने बाल बच्चों के साथ में अभी हम बहुत खुश हैं। वे सरकार का धन्यवाद करते हैं, अब हमको पक्का का घर मिल गया है।
1: गिरिडीह जिले के पंचायतों के रख रखाव के लिए मिली राशि को मुख्य

0: द्वारा खर्च नहीं किए जाने पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी तेज कुमार हस्सा ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष का 3,14,00,000 रुपया खर्च नहीं हुआ है और इस वित्तीय वर्ष में भी 1,55,00,000 रुपये का आवंटन प्राप्त हो गया है।
1: गिरिडीह जिला के 344 पंचायतों के 6 पंचायत सचिवों को खर्च करने के लिए सूत्रीकरण की राशि पिछले वित्तीय वर्ष में दी गई थी, लेकिन मुखियाओं के द्वारा अभी तक 3,14,00,000 रुपया अभी तक खर्च नहीं किए हैं, जबकि इस वित्तीय वर्ष में भी उनके लिए सुदृढ़ीकरण मद में राशि आ गई है। उनको उपयोगिता प्रमाण पत्र देना था, हम लोगों ने मांग की थी, अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र उनके द्वारा जमा नहीं की गई है। वर्तमान में जो राशि आई है इस वित्तीय वर्ष की, उस राशि को हम लोग तभी उन मुखियाओं को देंगे जो मुखिया पिछले वित्तीय वर्ष की सुदृढ़ीकरण मद में जो राशि आई थी उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे, और साथ ही जो मुखिया खर्च नहीं किए हैं उनके विरुद्ध कारण पीछा भी करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि किस कारण से किस परिस्थिति में उस राशि को उन्होंने खर्च नहीं की।
0: मनरेगा योजना से किसानों ने आम बागवानी लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। गिरिडीह जिले के पीलटाड़ के किसान कहते हैं कि उन्हें आम बेचकर अच्छा फायदा हुआ है।
2: शेखर महतो है, पीलटाड़ प्रखंड ग्राम बांध का ये हमारा गांव है। प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग को पता चला कि नरेगा से सरकार मुफ्त में आपको 3-4 लाख रुपया पैसा भी एक एकड़ में देती है, और मैंने आपका मैंने एक स्वामित्व भी हो जाता है बागवानी में, आप खुद उसका ओनर भी हो गए बागवानी का। तो इस जानकारी मिला और किसी माध्यम से हमको 2-2.5 एकड़ में मैंने को बागवानी करने का मौका मिला, और मैंने जो एकदम बंजर भूमि था, जो कृषि योग्य बिल्कुल नहीं था, उस सब भूमि में हम बागवानी शुरू किए, और बागवानी मेरा मैंने इतना शानदार रहा कि हम लोग तो लगभग 50,000 का अभी तक आम बेच चुके हैं, और कम से कम 2,25,000 तक और आम बेचेंगे।
0: जिला कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने किसानों से आग्रह किया है कि बरसापात के अभाव में मोटे अनाज के साथ साथ दलहन एवं तेलहन की खेती करें। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
3: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: लिंग पैते अरदास मीना ची सबिन आदिवासी समाज रेन हो को मीट किनाईते समाज चिलकेते उनतरिया होरारेबु शेसेना उन्डो सबिन को आ दायित्व मीना बुगिले कते जागार जपार जपागार किया ते समाज रेया उत्थान होवान का दायित्व को उबु पुरे का उन्डो मीडो जागार कलिंग जागार मस्कल किडा एना जागार आबुए तलामलारे तालमेल को बनो आबुरे एरेल एप्रेल एसु पुराते मीना आबुए नेन उड़ू को बदलेते लगातींगे मान लो मिडो परिवार हतुरे मेहनत केते एसु पुरे तकिन उन्नति किरा ओल पड़ाव रियो चास पाइटे रियो बगान पाइटे रियो कजीतिया मतलब मीनाची सबिन क्षेत्र रे किन उन्नति किरा मेन दो आबु तलामलारे इनकान हो को मीना को ची एन हो कुआ उन्नति काबू नेल सातिंगिया उन्डो इनको चिकेतबु परेशानी परेशान कुआबु एना होरा कोरेबु उड़ुए ने नेलेकन उड़ू तेगे अबुए समाज रे तपम गोपोय को होबंतना एसु खराबा एन हो को ताईते होनांग अबु मान को बुद्धि इडीतिया ची चिलिकेते निमिन उन्नति किडा ची चिलिकेते आया होन को पढ़ाओ ची केट को आया होन को चिलिके आंधी केट को आया होन को चिलिते के नौकरी को नाम किडा ओआ दुएर बुगिते को बाई किडा नेन उन्नति रिया होरा को एन होता आई ते इडीतिया दोरकार मिना नेलेकन पाइटी को गे सिया पाइटी को तो को मिता इनामेंते आलिंगे कजीतिया मतलब मिनाची आबु सबिन मिट किनाईते सबिन क्षेत्र रे मिट किनाईते मेल प्रेम ते जालिकन पाइटेरियो आबु पाइटी दयेबु उंडो नेलकन उड़ूगे तुरंग आबुए समाज रे एकता हुजुए उंडो सबिन पाइटी को होबना उंडो आबु आदिवासी समाज ची आबुए समाज जरूर मुसिंग बनो मुसिंग नेलका मिट किनाईते जदिबु पाइटी ये मेल प्रेम तेबु टायुए निश्चित तौर पर अबुए आदिवासी समाज आयर तुब बढ़ावना उन्डो इटा समाज को लिखा गे अबुए आदिवासी समाजो उत्थान रिया होरा तुब बढ़ावना उन्डो मजबूती के साथ निमिन गे अलिंगे जगर जनगर मीना अलिंग विजय कुमार मेलगंडी हतु दो चकरदरपुर सबिन कुमार अलिंग पेते हागा उन्डो मिसी को इकीर जीवनते सबिन कुमार जोहार
1: Ayarpa kurudurure miyet durang ba ayumia durang tanakin malanti hesa ondo akinge juriko.

0: दुल्हा ढाका उंडा मिच को तिसिंगे उंडा मुंडा टुटकर जगा कर तना अनुभव से संवरती जिंदगी नहीं हम ये इनकन सारी का जितना ओकना अब वो सार्थक उंडा परिपक्व है भाई बुआ जीवन रिया अनुभव अब वो गलती पेटी को कबू पेटी कमेंटे ऐतो एमा बुआ उंडो परिस्थिति रे उड़ो दिटेतिया पे एमा बुआ जान पेटे जुदी का पुरे वा बंदर दो करा बुआ इन रे पार्टी चिल्के वो पार्टी रे बुगिने इन रिया इतो नमो जान बुगिन उंडो इटकन रिया पर का दो अनुभव तेगे हो जुए चिल्के चिल्के हो मरंग डुआ इनका गे इटकन बुगिन पार्टी उंडो जगर आए ते सलाह ची उड़ उड़ी है
1: हागा मिसी को आयर पान इन तबिडो दुरंग बुआ युम लिया दुरंग तन किंदो सुकमती बारी उंडो अकिंगे जुड़ी को

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा हो भाषा में। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम सहिया।
1: प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार है।

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सह रेडियो कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोता भाई बहन को चंपा मुनि का जोहार। जन स्वास्थ्य से जुड़े इस अंक में आज हम चर्चा करेंगे किशोरावस्था में आम तौर पर होने वाले तनाव, उसके निदान, स्वस्थ व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में। आपके साथ जानकारियां साझा करने में हमारा साथ दे रही हैं हमारी पूर्णिमा बहन। तो जोहार पूर्णिमा बहन।
1: आपको भी जोहार चंपा मुनि दीदी। किशोरों से जुड़ी चर्चा का विषय बहुत खास है क्योंकि आज के किशोर कल के युवा होंगे और उन पर अपने परिवार, समाज और देश की जिम्मेदारी होगी। इसलिए किशोरों में शारीरिक एवं बौद्धिक विकास, स्वास्थ्य व्यवहार और मजबूत मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। यही वो अवस्था है जब किशोर किशोरियों में नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पहचानने की क्षमता विकसित होती है।
0: सही बात है पूर्णिमा बहन, पर किशोरावस्था में मानसिक दबाव, तनाव, गुस्सा जैसे

हॉबी कई कारणों से उभर सकते हैं जो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका सही समय पर निराकरण जरूरी होता है। वहीं संतुलित और नियमित जीवन शैली के अभाव में कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से किशोरों

0: रिफत दीदी। आओ पूर्णिमा, इतने दिनों बाद मेरी याद कैसी आई? सब खैरियत तो है ना?
1: सब ठीक है रफत दीदी। असल में किशोरावस्था में कई कारणों से होने वाले तनाव, उसके निदान और किशोर किशोरियों की मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली को लेकर आपसे कुछ जरूरी जानकारी लेने आए हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जो भी जानना है निसंकोच पूछ सकती हो पूर्णिमा।
1: पहले तो ये बताएं कि किशोरावस्था में गुस्सा, तनाव और चिड़चिड़ापन जैसी आम समस्याएं किन कारणों से होती है और निदान क्या हो सकता है?
0: ये बिल्कुल आम समस्या है। किशोरावस्था में हम मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं तथा हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। इस उम्र में किशोर किशोरी अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं, वो लोकप्रिय होना चाहते हैं तथा अपने दोस्तों की अपेक्षाओं पर यथासंभव खरा उतरना चाहते हैं। कई बार किशोर किशोरियों का व्यवहार अपने आप अपने मूल्यों और विचारों के साथ संघर्ष की स्थिति में होता है। इन्हीं सब कारणों से किशोरावस्था के दौरान किशोर किशोरियों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आदि हो जाते हैं। ये बिल्कुल ही सामान्य समस्या है और इसका निदान भी बिल्कुल आसान है। इसके निदान के लिए किशोर किशोरियों को किशोरावस्था के दौरान सभी परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। उन्हें छोटी छोटी बातों में ज्यादा प्रतिक्रिया ना कर रचनात्मक रूप से बिना अपने आप को क्षति पहुंचाए सुरक्षित व्यवहार के अभ्यास द्वारा प्रबंधन करना चाहिए, जिससे उनका गुस्सा, चिड़चिड़ापन आदि दूर हो सके।
1: शरीर और मस्तिष्क को किस तरह सक्रिय बनाए रखा जा सकता है ताकि किशोर गलत विचारों या आदतों में ना उलझे?
0: शरीर को, मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखने हेतु जीवन शैली में बदलाव बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ किशोर किशोरियों को खेल कूद में भी भाग लेना बहुत जरूरी है। अच्छे विचारों के लिए उन्हें अच्छी पुस्तकों का अध्ययन किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा भी कई पहल किए जाते हैं जिससे किशोर किशोरी इसका लाभ उठा सकते हैं, वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। वर्तमान में अभी स्कूल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम राज्य के 19 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 तक चलाया जा रहा है, जिसमें विद्यालय जाने वाले सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। गलत आदतों से बचने के लिए स्वयं पर संयम तथा गलत दोस्तों से दूरी बनाना बहुत ही आवश्यक है। गलत बातों के लिए उन्हें ना कहना बहुत जरूरी है।
1: अस्वास्थ्यकर आहार क्या है और सेहत को कितना प्रभावित करता है?
0: हमारा भोजन इस प्रकार होना चाहिए जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व, जो पोषक आहार होते हैं, चाहे वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, खनिज पदार्थ, सभी का एक बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी है। सभी की अपनी मात्राएं होती है। प्रायः देखा जाता है कि किशोर किशोरी इस अवस्था में घर के भोजन के बजाय बाहर के भोजन को ज्यादा महत्व देते हैं। उन्हें बाहर के रोड में जो बिकने वाले हैं, चाउमीन, चाट, पकौड़े, ये ज्यादा पसंद आते हैं, तो ये स्वस्थ आहार की श्रेणी में नहीं आता है और इससे सेहत पे बहुत बुरा असर भी पड़ता है, जिससे हम देख रहे हैं कि आज जो हमारे किशोरियां हैं, पेट संबंधी समस्याएं भी उनमें काफी ज्यादा हो रही है। उन्हें गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर इससे उन्हें जो है जो फुर्तीला रहना चाहिए वो फुर्तीला वो नहीं रह पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उनके पढ़ाई में ही भी पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि इस अवस्था में घर का बना हुआ ताजा और स्वस्थ भोजन ही करना चाहिए।
1: अनियमित जीवन शैली से स्वास्थ्य के लिए कितने जोखिम है? क्या शारीरिक कार्यकलाप और खेलकूद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचने में मदद करते हैं?
0: जीवन शैली का स्वास्थ्य पे बहुत ही असर पड़ता है। स्वस्थ जीवन शैली एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जीवन शैली से तात्पर्य है कि हमारे जो दिनचर्या होती है वो किस प्रकार होती है, हम किस तरह से हमारे जो उठने का समय क्या होता है, हमारा खान पान किस तरह से होता है, हम किस तरह से अपने

0: जो किशोर किशोरी जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई का समय क्या होता है, किस तरह से उनकी खेल कूद की आदतें कैसी है, या फिर वो सिर्फ निष्क्रिय रूप से सोए रहते हैं, तो ये सारी आदतें जो हैं वो एक जीवन शैली की ओर इंगित करता है। अनियमित जीवन शैली वैसे जीवन शैली है जिसमें कोई एक कह सकते हैं हम कि बिना रूटीन का काम कर रहे हैं, तो इससे स्वास्थ्य पे और शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि किशोर किशोरी अपने एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, उनके जितने भी क्रियाकलाप हैं उन्हें वो रूटीन वाइज जो है रूटीन के आधार पे करें, चाहे वो खाने का समय हो, पढ़ने का समय हो, खेलकूद का समय हो, दोस्तों के साथ उन्हें खेलने का समय हो, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है कि समय के अनुसार हो। और इन सब का प्रभाव शारीरिक कार्यकलाप का, खेलकूद का, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचने में भी पड़ता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे किशोर किशोरियों में भी हृदय संबंधी विकार, मोटापा, या फिर उन्हें हाइपरटेंशन, हाई बीपी की समस्याएं हो रही है, और ये सभी गलत जीवन शैली से ही हो रही है। तो मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश रहेगा कि हमारे किशोर किशोरी एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, खेलकूद को बढ़ावा दे, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और एक स्वस्थ भोजन लेना बहुत ही जरूरी है।
1: अब ये बताएं कि नशा वृत्ति किशोरों के मन मस्तिष्क को कितना प्रभावित कर सकती है और इन स्थितियों में किशोरों को कैसे बचाया जा सकता है।
0: किशोरावस्था आयु एक ऐसा चरण है जब अल्कोहल, सिगरेट और नशीली दवाओं जैसे पदार्थों का प्रयोग करने की शुरुआत होती है और शीघ्र ही वह कई के लिए लत बन जाती है। शुरू में तो वो ऐसा अपने दोस्तों के बहकावे में आके या फिर एक नया प्रयोग के रूप में करते हैं, लेकिन बाद में ये उनके जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन जाता है और लत के रूप में हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जैसे कि नए प्रयोग करने से अपराध वृत्ति, वो कई तरह के गलत संगत में पड़ जाते हैं, नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, असुरक्षित यौन व्यवहार, लापरवाही से गाड़ी चलाना, और ये गतिविधियां आमतौर पर किशोरावस्था में ही होता है। इस स्थिति से किशोर किशोरियों के बचाव के लिए उन्हें सही गलत की पहचान बहुत जरूरी है। किशोर किशोरियों को एक जिम्मेदार किशोर की तरह व्यवहार करना चाहिए और दोस्तों के दबाव का सामना भी करना चाहिए, क्योंकि कई बार दोस्तों के बहकावे में आकर ही वो गलत काम करते हैं, तो अपने वैसे दोस्तों को ना कहने की आदत डालनी होगी और सही का चयन करना होगा।
1: रफत फरजाना जी, आपने किशोरावस्था में तनाव, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ निदान के उपायों को लेकर जो उपयोगी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: पूर्णिमा बहन, हमें और हमारे श्रोताओं को रफत जी से बहुत अच्छी जानकारियां मिल गई जो श्रोताओं के बहुत काम आएगी, आएगी ना?
1: हाँ चंपा मुनि दीदी, एक अच्छी बात हमारी सहिया बहनों के लिए भी है। डेंगू और चिकनगुनिया के केस का पता लगाने और उपचार में सहायता के लिए सहियाओं को प्रति केस 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है।
0: ये तो सच में बहुत बढ़िया बात है पूर्णिमा बहन, प्रोत्साहन राशि से सहियाओं का मनोबल भी बढ़ रहा है।
1: अब श्रोता भाई बहन को याद दिला दें कि आप जन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर फोन कर सकते हैं।
0: हाँ तो प्यारे श्रोता भाई बहन, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में स्वास्थ्य संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए हमें इजाजत।
1: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सहिया। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। इस कार्यक्रम में हम आपको चंद फिल्मी नगमे सुनाएंगे, लेकिन लेते हैं उससे पहले कुछ संदेश।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म खुदगर्ज से। शब्द रचना है इंदिवर व फरूख कुरैसी की। संगीत दिया है राजेश रोशन ने। आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम के स्वर में ये गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर

0: हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: करके मैं आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं नितिन मुकेश व विठल भाई पटेल के युगल स्वर में बोलो को लिखा है इंदिवर और विठल भाई पटेल ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है दरिया दिल।

अगला ट्रैक है दिलवाले फिल्म से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज है। समीर के बोलों को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, तकनीकी कारणों से हम आपको कार्यक्रम सुर्खियों में नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है। आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे।

पत्थर के सनम, इस फिल्म से अभी आप ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, स्वर था मोहम्मद रफी के। और आइए अब सुनते हैं फिल्म गजल से, बोल लिखे हैं साहिर ने, संगीत दिया है मदन मोहन ने, और एक बार फिर सुनते हैं मोहम्मद रफी के स्वर में ये खूबसूरत सा गीत।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इस मंत्री कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने

0: सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा

0: चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा।
1: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में कहा कि कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: फोर्थ एडिशन ऑफ द पाइनएप्पल फेस्टिवल हैज बीन रिमार्केबल।
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और देशों तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 पैसे पर बंद हुआ।
1: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमी 2-6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से और रक्षा सहयोग के मुद्दे राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए

0: giant in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany, storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने तीन मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हममनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उमानी हममनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तआवुन के मामलों पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़राए ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे ने सेफ्टी और ऑपरेशनल कारकर्दगी में रूट किलोमीटर्स पर कवच डिप्लॉयमेंट की मंजूरी दी है। फुटबॉल में आज रात फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड पहुंचने पर पुरजोर उनके दो रोजा तारीखी दौरे का आगाज है। उनका यह दौरा तकरीबन चार दहाइयों में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है। यह उनके तीन मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है। आज ऑकलैंड पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लेक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां बड़ी तादाद में भारतीय कम्युनिटी के अफराद मौजूद थे। माहौल जोशोखरोश से भारतीय तिरंगा लहरा रहे थे और किया ओरा मोदी के नारे लगा रहे थे। जनाब मोदी ने आज शाम ऑकलैंड में कम्युनिटी के खैर मकदम के दौरान भारत की मालामाल सकाफती विरसे की शानदार तकरीब देखी। सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज में वजीर आजम ने कहा कि पंजाब और तमिलनाडु की सकाफत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिक की मौसीकी और वंदे मातरंग की मशहूर कुन पेशकश की परफॉर्मेंस काबिले दीद थी। जनाब मोदी ने नस्लों और बर्र आजमों में भारत की सकाफती विरासत को जिंदा रखने और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आवाम से आवाम के राब्तों को मुस्तहकम करने के लिए भारत निजात कम्युनिटी की सताइश की। अपने दौरे के दौरान तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी और आवाम से आवाम के राब्तों में तआवुन को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल कर सकते हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी की अक्कासी करता है। न्यूजीलैंड में भारत की हाई कमिश्नर मुआन पुई साईवी ने उम्मीद जाहिर की है कि यह दौरा बाहमी ताल्लुकात में कि ये तिजारत और कॉमर्स, समंदरी सिक्योरिटी, आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात, सकाफती, सियाहती और इंसदादे दहशतगर्दी के मामलों में तआवुन में मजीद तौसी फराहम करेगा। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का एक तारीखी और इंतहाई अहम दौरा मुकम्मल किया, जो भारत ऑस्ट्रेलिया जामे और मुकम्मल शराकतदारी के लिए मुस्तकबिल महफूज ब्लूप्रिंट फराहम करता है। आला इख्तियारी मीटिंगों से लेकर नुमाया संग मील तक इस दौरे ने दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान सिफारती, इक्तसादी और तहफुजाती ताल्लुकात में इजाफा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज का अपने दौरे है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत मुल्क की साहिली सिक्योरिटी को मजबूत और नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म है। जनाब शाह ने आज बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल के हमराह ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के क्याम में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। जनाब शाह ने कहा कि बंदरगाहों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को दी जानी चाहिए और उन प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाना फोर्स से ट्रेनिंग

हासिल की हो। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मस्कत में उम्मान के अपने हममनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जयशंकर ने कहा कि बातचीत तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी, दिफा और साइबर नीज मस्नूई जहानत के शोबों पर मरकूज रही। दोनों लीडरों ने खलीज में जारी हालात और खित्ते में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की काविशों पर जामे तबादला ख्याल किया। उम्मान के वजीर खारजा ने कहा कि भारत और उम्मान के दरमियान तवील मुद्दती समंदरी ताल्लुकात ने सदियों से उनके आवाम को एक दूसरे से जोड़कर रखा है और ये दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करने के लिए जारी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब बद्र अल बुसैदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुस में आजादी के साथ आमदोरफ्त को बरकरार रखने की गरज से बड़े पैमाने पर सिफारतकारी पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल वजीर खारजा ने उमान में भारतीय निषाद कम्युनिटी के अराकीन के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उमान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में उनका जोशोखरोश काबिल तारीफ है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन कल बिहार के शहर गया का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान नायब सदर वहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और देही तरक्की के बिहार इंस्टीट्यूट में कानून साज असेंबली के अराकीन के लिए तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामानी उमूर के वज़राए मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन ने आज पार्लियामेंट हाउस के कॉम्प्लेक्स में आइंदा मानसून इजलास के लिए तैयारियों का जायजा लिया। पार्लियामेंट का यह इजलास इस महीने की 20 तारीख शुरू होगा और अगस्त की 13 तारीख तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मेघवाल ने कहा कि आने वाले इजलास के लिए कानून साजी के उमूर के प्रोग्राम का जामे जायजा लिया गया और जरूरी रहनुमा खतूत जारी किए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय रेल ने 680 किलोमीटर तवील शिमाली रेलवे के रास्ते पर हिफाजत और कामकाज में बेहतरी लाने की गरज से 206 करोड़ रुपए लागत के कवच निजाम को तैनात करने को मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे का मकसद मकामी हिफाजती निजाम को मसरूफ तरीन और कलीदी तौर पर अहम रास्तों पर फैलाना है। रेल की वजारत ने कहा कि कवच विजन 4.0 को दिल्ली डिवीजन के रेवाड़ी दिल्ली और शकूर बस्ती भटिंडा सेक्शन पर लागू किया जाएगा। इस निजाम को खतरनाक वाकयात और ट्रेनों के तसादुम के वक्त सिग्नल को रोककर रेलवे की हिफाजत को नुमाया तौर पर बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। वजारत ने कहा कि यह निजाम ट्रेनों की नकलो हरकत पर मुसलसल नजर रखता है, जरूरत पड़ने पर खुद ब खुद ब्रेक लगाता है और ट्रेनों को हिफाजत के साथ ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तक चलने की इजाजत देता है। ये मनफी मौसमी हालात जैसे घने धुंध के दौरान काबिले एतमाद ट्रेन ऑपरेशन को भी तकवीयत देता है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आज मिशन स्ट्रिंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान यह बात उभर कर सामने आई कि आयुष्मान भारत ऐसे एक बनकर उभरा है जिसमें तकरीबन 94 करोड़ की तादाद में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट वजह किए गए और 105 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स मुंसली किए गए हैं। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ABDM के तहत एक शानदार डिजिटल सेहत देखभाल का बुनियादी ढांचा वजह किया गया है और अगले मरहले में मुल्क भर में इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाने और इस्तेफादा करने पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। तिजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कौमी पैदावारियत काउंसिल NPC सनअत और अंदरूनी तिजारत के फरोग का महकमा और कॉमर्स के महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि जायजा मीटिंग के दौरान बैन इदारा जाती तआवुन को बेहतर बनाने, इदारा जाती सलाहियतों को फरोग देने और पैदावारियत और खिदमात की फराहमी के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार अपनाने पर तवज्जो दी गई। वजीर मौसूफ ने उन इकदामात का भी जायजा लिया जिनका मकसद ज्यादा मरबूत, मौसर और मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग इंतजामी निजाम कायम करना है।
भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड

0: मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जिले हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाज मकामात पर मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात हमारे नामा निगार से।
1: आईएमडी के मुताबिक 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, गंगा के मैदानी मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, मगरबी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी भारत के बाज इलाकों में गरज चमक, आसमानी बिजली और तेज झक्कड़ों के साथ बारिश की भी पेशगोई की है। इधर दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में आज दिन भर अब्र आलूद मौसम के साथ ज्यादा नमी का एहसास बरकरार रहा। नई दिल्ली से सौम्या शरण और ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
0: कैलाश मानसरोवर यात्रा के तहत आज यात्रियों का पहला जत्था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के जरिए चीन में दाखिल हो गया। तमाम जरूरी इमिग्रेशन और सरहदी दस्तावेजी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद भारत तिब्बत सरहदी पुलिस ITBP ने यात्रियों के जत्थे को सरहद पर तैनात चीनी इंतजामिया की सरपरस्ती में दे दिया। इस जत्थे में कुल 52 मेंबरान हैं, जिनमें एक तिब्बी कारकुन और 3 खाना पकाने से मुंसलिक मेंबरान समेत 48 यात्री शामिल हैं। भारत के जर मुबादला के जखायर में 30 जुलाई को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 7.2 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 674 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए। भारत के रिजर्व बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक इन जखायर के सबसे बड़े उनसुर गैर मुल्की करेंसी के असासों में हफ्ते के दौरान 4.5 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 545 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए हैं। सोने के जखायर में तकरीबन 2.7 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ, जो 105 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज बहुत सी उजरदारियों की समाअत करेगी, जिनमें अयोध्या के राम मंदिर में अतियात की मुबैना हेराफेरी के मामले में एक शफाफ और मुकर्रा वक्ती तहकीकात कराने की दरख्वास्त की गई है। 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में अतियात की मुबैना चोरी से मुतालिक गिरफ्तार शुदा 8 मुलजमान में से 3 को एक महीने की 29 तारीख को तमाम 8 मुलजमान को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया था। पिछले महीने की 13 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में मौसूल होने वाले अतियात में हेराफेरी के इल्जामात के बाद मंदिर के ट्रस्ट की जानिब से एक दरख्वास्त पर एक SIT की तश्कील की थी। आज BJP ने बिहार में बांकीपुर असेंबली हलके के जिमनी इंतखाब के लिए नीरज कुमार सिन्हा के नाम का अपने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में दातिया असेंबली हलके के जिमनी इंतखाबात के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दातिया और गुजरात की मंजलपुर असेंबली सीट के लिए इस इनेकाद किया, जिसमें भारत के मुमताज शिपयार्ड्स और डिजाइन हाउसेस ने शिरकत की, ताकि मुस्तकबिल के साहिली गार्ड्स प्लेटफॉर्म्स पर गौर खौस किया जा सके। फुटबॉल में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। फ्रांस बोस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2 के मुकाबले 0 से हराकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। विंबलडन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बर्तानिया के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी को सीधे सेटों में जबरदस्त शिकस्त दी है। दूसरे सीट के ज्वेरेव ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए फेरी को 7-6, 6-2 और 6-4 से हराया। इस कामयाबी के साथ ज्वेरेव विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि आर्थर फेरी की शानदार मुहिम खत्म हो गई, जो बरतानवी खिलाड़ी की यादगार तरीन कारकर्दगियों में से एक है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد القسیری سے ملاقات کی. انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا.

मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुनहरी यादें। इसमें हम आपको कुछ प्यारे प्यारे से चंद नगमे सुनाएंगे। सबसे पहला गाना हम आपको सुनाते हैं दिल एक मंदिर फिल्म से, स्वर लता मंगेशकर के।

श्रोताओं, संगीत वह भाषा है जिसे बिना शब्दों के ही हर दिल समझ लेता है। संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को शांति देने वाली एक अनमोल कला है। हर सुर में एक भावना है, हर ताल में एक कहानी और हर धुन में एक नया एहसास छिपा होता है। तो संगीत वह शक्ति है जो उदास मन में भी मुस्कान जगा देती है। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की ही आवाज में एक और गीत,

दोस्तों आप सुन रहे हैं सुनहरी यादें। फिल्मी गीत केवल धुनों का संगम नहीं होते, बल्कि वे कवियों और गीतकारों की भावनाओं, शब्दों और कल्पना का रूप देते हैं। यही वजह है कि कई पुराने गीत आज भी उतने ही ताजा और दिल के करीब लगते हैं जितने अपने समय में थे। तो आइए यादों के इस खूबसूरत

सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और एक और सदाबहार नगमे सुनते हैं जो शायद आपकी प्यारी याद से जुड़ा हो या आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ले आए। आइए सुनते हैं दो बदन से ये खूबसूरत सा गीत। मोहम्मद रफ़ी के स्वर हैं, शब्द शकील बदायूनी के, संगीत रवि का।

यादें कभी पुरानी नहीं होती, वे बस समय के साथ और भी अनमोल होती चली जाती हैं। हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है और हर कहानी किसी न किसी दिल में अपनी एक खास जगह बना लेती है। संगीत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है, यह बीते हुए पलों को भी आज जैसे जीवंत बना लेती है। आइए इन सुरों के साथ कुछ पल अपने उन मीठी यादों को भी फिर से जी लेते हैं। तो चलिए एक और सदाबहार गीत के साथ इस सुनहरे सफर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सुनहरी यादों का कारवां भी जारी है।

कहते हैं अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते, वे हर बार सुनने पर एक नया एहसास, एक नई कहानी दे जाते हैं। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में

यादों की महफिल में हर गीत एक नया एहसास जगाता है। कुछ गीत हमें मुस्कुराना सिखाते हैं तो कुछ बीते हुए खूबसूरत लम्हों से फिर से मिला देते हैं। यही तो है संगीत का जादू। तो आइए अब यादों की महफिल, सुनहरी यादों का विराम देने का वक्त आ गया है। एक और गाना सुनते हैं सुनहरी यादों में।

इसी के साथ सुनहरी यादें अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज का हमारा ये सफर आपको पसंद आया होगा। आइए सुनते हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के आज के आयोजन में आइए सुनते हैं राग नंद में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, बोल द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। कलाकार हैं सविता रॉय।

अभी आप सुन रहे थे सविता राय से राग नंद में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थी, द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार, फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी दर्शाती। विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly four decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. During his visit, Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Muan Poi Sayuri, expressed hope that the visit will provide fresh momentum to bilateral ties. She also pointed to the India-New Zealand Free Trade Agreement signed in April this year, saying it would further expand cooperation in trade and commerce.